0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लूटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का?
1: हो आमचा रेडिओ पुणेरी. करदर्शन.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा कि हम देखते हैं शरीर की सुंदरता पर लोग उसकी खूबसूरती के आधार पर उसके आंतरिक भी गुणों का पता करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुंदर है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर होते हैं कर्म में। तो एक दिन हम देखते हैं कि गुब्बारे वाला लाल पीले हरे गुब्बारे काले गुब्बारे बेच रहा था। कभी कभार वह एक दो गुब्बारे हवा में छोड़ देता था ताकि बच्चे आकर्षित हो। एक सांवरे रंग का छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अपने सांवरे रंग की वजह से उस बच्चे को कई बार अवमानना का सामना करना पड़ता था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो वह भी आसमान में उड़ जाएगा। गुब्बारे वाला सोच में पड़ गया। उसकी नजर बच्चे पर गई तो दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसने बड़े प्यार से बच्चे को जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो गैस है उसकी वजह से आसमान की ओर जाता है। हम भी बाहरी दिखावे या बाहरी संपत्ति के कारण नहीं, अपितु अपने दिव्य गुणों, श्रेष्ठ व्यवहार, उत्तम विचार, मीठे बोल, दया और करुणा आदि के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर होते हैं कर्म। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र, जिसके जीवन में ये सुंदरताएं हैं वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जमाना भी उसी का दीवाना है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। सुंदर मन के बिना सुंदर चेहरा कांच की उस आंख जैसा होता है जो चमक तो सकती है लेकिन किसी चीज को देख नहीं सकती। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, परंतु चरित्र की सुंदरता मृत्यु के बाद भी स्मरण रखी जाती है। अतः हम देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कर्म करे तो जीवन सुंदर बन जाएगा। अच्छी सोच जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जिंदगी में उन लोगों की जो पसंद है उन्हीं लोगों को आप पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। जिस शरीर को आप सुंदर कहते हो जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखाई देगी कि इसके अंदर क्या है। भीतर तो बस रक्त, मल, रोग और कचरा भरा पड़ा है। जिस शरीर को की अदाओं पर हम मर मिटते हैं, रात रात करवटे बदलते हैं, मृत्यु के बाद वह आकर्षण कहाँ चला जाता है? लोग इसी सुंदर शरीर की मृत्यु के बाद उसे जितना जल्दी हो सके घर से निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं सड़ने न लगे। यह शरीर मिट्टी बन जाता है, फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? सुंदरता शरीर में नहीं होती, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा में है, जो न मरती है, न जलती है, न कटती है और न ही गलती है। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं, आत्मा में है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसे कि हम देखते हैं हमें क्या चाहिए जिंदगी में, साधन नहीं, साधना सुंदर हो, चित्र नहीं चरित्र सुंदर हो, भवन नहीं भावना सुंदर हो, साधन नहीं साधना ही सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, परंतु अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। संकल्प शब्द और कर्म में पवित्रता जीवन की सुंदरता है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। एक सुंदर मन हमारे सुंदर चेहरे से कई गुना अच्छा है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। रंग रूप और कद काठी को लेकर जब किसी प्रकार की भावनाएं मन और मस्तिष्क पर हावी होते हैं, तब व्यवहार में ईर्ष्या क्रोध नफरत चिड़चिड़ापन नजर आने लगता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, आत्मनिर्भरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, असुरक्षा की भावना जागृत होती है और निराशा हताशा के कारण इंसान कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। हमें अपनी कमियों को भी ताकत बनाना है, अपनी कमी को ताकत बनाए, प्रेरणा ली और आगे बढ़े। खुद की छवि की तुलना दूसरों से करने से पहले यह भी जानना है कि सूरत से कहीं ज्यादा सीरत मायने रखती है। अच्छा व्यवहार और सद्गुण हमें दूसरों से अलग और बेहतर बनाएंगे। ऐसे लोगों के बीच रहें जिनके लिए रंग रूप और शारीरिक खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, जो केवल व्यवहार और गुणों की वजह से ही हमसे जुड़े हैं। याद रखें, जीवन की कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे छोटे कद की लंबा या ज्यादा लंबे को छोटा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सांवरे रंग और गोरा नहीं बनाया जा सकता, और यदि कोई समस्या आनुवंशिक है तो उसे भी बदला नहीं जा सकता। लिहाजा इन्हें स्वीकारें और श्रेष्ठ गुणों से स्वयं को भरपूर बनाने की कोशिश करें। बहुत से अन्य लोग भी हमारे जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्होंने कैसे अपनी कमियों को ताकत बनाया, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। व्यक्ति के गुण सर्वोपरि होते हैं, इसलिए अगर हम लगातार किसी नए हुनर को हासिल करने से खुद को
जोड़े रखते हैं तो दिखने दिखाने की तरफ हमारा भी ध्यान नहीं जाएगा। हुनर की कद्र करने वालों और देह के पार मन को समझने वालों के साथ रहें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और इसी तरह हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा हम देखते हैं कि हीन भावना अक्सर लोगों पर हावी होने लगती है, ध्यान रहे अपने ऊपर हीन भावना का विचार हावी न होने दें। अक्सर हम सामान्य से कुछ कम दिखने या प्राप्त होने की स्थिति में हीनता के विचार में डूब जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं के नकारात्मक विचारों का समर्थन न करें और सकारात्मक पहलू पर ध्यान देकर स्थिति चाहे जैसी है उसे स्वीकार करें। आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं, शरीर जिनके सुंदर है

भी सुंदर बनाता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे भीतर एक अपूर्व सौंदर्य लहराने लगेगा। दया भावना से हमें देखना है हम अधिक युवा कैसे बने रहेंगे। आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। वर्तमान समय युवा पीढ़ी आकर्षण बने रहने के लिए आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का अधिक उपयोग कर रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती यह असली खूबसूरती नहीं है। दूसरों के लिए सदा दया की भावना रखने से हम अधिक युवा और आकर्षक बने रहेंगे। ब्रेन भी सदा एक्टिव रहेगी, क्योंकि आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है, और यही सुखी जीवन जीने का भी सबसे शक्तिशाली उपकरण है। दूसरों से सदा सहानुभूति रखेंगे तो उदासीनता या नापसंद को भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दयालुता का भाव बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। मेडिटेशन से दया की भावनाएं चारों तरफ फैलती है। तो देखा आपने कैसे हमें मेडिटेशन से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो इसे हम आगे अपने जीवन में जारी रखें, इसकी हम सब कोशिश करेंगे और आप सभी कोशिश करें कि मेडिटेशन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसे बनाना है, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बना रहे और हमारी आंतरिक खूबसूरती जो है वो भी बनी रहे। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। तो ओम शांति, नमस्कार।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी। एक बार आगे बढ़े और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है।
2: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम व्हेन वी गो टू वर्क, एंड नाउडेज इन द ऑफिसेज इट इज सेड ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क। क्योंकि एक समय था जब कहा जाता है कि ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, सिर्फ यू नो कि यहाँ पर है इंटेलिजेंस, हम सारे आइडियाज देंगे, टॉप मैनेजमेंट सारे आइडियाज देगी, जिसको हम पिरामिड स्ट्रक्चर कहते थे कि जो टॉप के लोग हैं आइडिया सिर्फ उन्हीं के होंगे और जो लोअर लेवल पर आएंगे उनको सिर्फ उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क। फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क। बट देन वॉट हैपन, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स and head to work. Earlier, we were bringing only hand to work. It was very simple. एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
1: कई सारे हाथ काम करने वाले,
2: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो करते
1: गए। और उस बात की जरूरत भी शायद वही थी।
2: अब जब so many heads started coming to work, you know, क्योंकि हम एक horizontal structure पे आ गए कि सब लोग एक ही level पर हैं as far as giving the idea is concerned, तो जहाँ इतने सारे heads came to work, तो that means head अर्थात ego, इतने सारे egos came to work also, my idea is better than your idea, या आपका आइडिया क्यों लिया गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया गया, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है। तो जहाँ सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ईगो प्रॉब्लम कम थी क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आईक्यूज थी, ईगोस थी, वो सारी क्लैश होने लग गई। और जहां इतनी सारी ईगोस क्लैश होने लग गई तब प्रॉब्लम्स आने लग गई और फिर हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो, हेड्स hands and heart to work. क्योंकि heart to work से क्या होगा, you're not just bringing your ideas, आपकी ego सिर्फ नहीं लेकिन belongingness. Heart जहाँ है अर्थात क्या, कि belongingness है.
1: This is your office.
2: हम एक possible है ये कि हम अगर चाहें तो अपने office को अपना घर बना सकते हैं.
1: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए.
2: जहाँ तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए. ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में. बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस बट अटैचमेंट इज टू माई इमेज, अटैचमेंट इज टू माई आइडिया. आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है. क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है. आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजिशन से ना, अपने आइडिया से तो है. मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर. आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज. तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई. अगेन, अटैचमेंट वो जहाँ दर्द है और बिलोंगिंगनेस वो जहाँ प्यार है लेकिन दर्द
1: नहीं है. और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वो मुझसे ही रिलेटेड.
2: बिकॉज अटैचमेंट है क्या? फिजिकली तो अटैचमेंट ही है ना. यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा. इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे? सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे. अटैचमेंट्स. और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए? क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ. लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है. बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है वैसे ये भी मेरा परिवार है. है तो परिवार ही ना. और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं. अब के समय पर जो हम चल रहे हैं तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने ही जाते हैं. यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8:30 बजे हम निकल जाते हैं. तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है. तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं. तो वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना.
1: वहाँ तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ. वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है. अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे.
2: तो ये डर यहाँ है. ये डर हमें है. क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है. अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते जाइए. ऑफिस और घर में क्या फर्क है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है. बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए. ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है, मेरे कंपैरिजन में मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता है, व्हाट विल आई डू?
1: सारी जगह फैलाया जाए.
2: दैट इज द डिफरेंस. क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है. तो देयर द एटीट्यूड विल बी, उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हर एक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो. ये सब किस लिए? बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, ही वॉज माई फैमिली मेंबर. डिफरेंस. यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की. इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन, ये गलती की. तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी. तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर? a younger brother or a younger sister or even same age, whatever, galti ki, help the person out and just keep it between the two people. Kya hoga us relationship mein? This is cooperation. वो था कंपटीशन. अब ये जो अगर हमने कर लिया एक बार कि किसी ने गलती की और हमने उसको किसी को नहीं बताया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, जहां तक जरूरत नहीं है, रिपोर्ट नहीं की उसकी और उसको सिखाकर समझाकर सॉर्ट आउट करके बिल्कुल उसको भी हल्का कर दिया. व्हाट यू हैव अ फैमिली मेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट टिल यू आर ओनली इन दैट ऑफिस, यू हैव अ फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. But we don't want to build these relationships because we are in that belief system कि सबको पीछे गिराना है और खुद आगे भागता जाना है. तो अगर ऑफिस में वो जो लोग हैं उनको भी परिवार की तरह भी नहीं, परिवार ही, दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय ऑफिस, दिस इज माय होम, तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे,
1: दूसरे परिवार
2: दूसरे घर में पहुंच जाएंगे. एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं. एंड मंडे मॉर्निंग यू विल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम अगेन. इट इज पॉसिबल एंड फॉर दैट आई डोंट हैव टू वेट कि पूरा ऑफिस कब ऐसा बन जाएगा. नो, क्योंकि वो होने नहीं वाला. इट्स अगेन लाइक वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू चेंज. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. जस्ट माई वे ऑफ लुकिंग एट द पीपल एंड दैट पर्सन हु कैन डू दिस इज अ लीडर. वो चाहे जूनियर मोस्ट व्यक्ति हो उस ऑफिस का, दैट पर्सन इज अ लीडर इन द ऑफिस हु कैन डू दैट. इट्स पॉसिबल एंड देन आई वुड लव टू गो टू वर्क.
1: एक्चुअली आई कैन फील द यू नो वाइब्रेशंस. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा एटीट्यूड, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने ऑफिस में एंटर करेंगे.
2: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं. यू नो दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं. कोई भी चीज अगर आप इंजॉय करते हैं, कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो हल्का कितना लगता है. क्योंकि आप
1: घर में भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
2: बिल्कुल नहीं लगता. तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है? ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है, जब तक वो पिया, चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन. हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा? तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं. लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें, हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है. ना, इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट. नाउ माय चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ. तो टुमारो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बाय दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली.
1: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
2: इट्स ओके. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
1: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम.
2: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी, तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है. सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड. एक ऑरा तो है हर एक का. तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है. तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं. अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए. नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
1: मुझ तक नहीं पहुंच.
2: आई एम स्टेबल. आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए. मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ. अब आप मुझे ओवर पावर नहीं कर सकते. तो आप यहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी. ये सेकंड स्टेज थी. फर्स्ट स्टेज थी, मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपकी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया. सेकंड स्टेज, आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल. नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ, लीकेज नहीं होने दू सारा दिन. थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी?
1: मेरी आप तक पहुंचेगी. I'll overpower you.
2: Absolutely. My positivity आपको ओवर पावर करेगी और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है. दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर. क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है. नाउ व्हाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी. इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी.
1: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं internally or outer, both should be same in sync.
2: Haan, here we are talking only of inner.
1: You know, हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा आस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चलता
2: है. हम एक ऑफिस के ग्रुप में, कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन्स जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए. So everybody looked at each other like that, and then they said, "Fir hum sab ek room mein nahi baith sakenge." You know, and bahar se dekhen to everybody is perfectly fine, but jo hum ek dusre ke prati soch sakte hain, uski to level.
1: Wahi, I think that becomes very important.
2: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है. लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे. इफ आई चेंज
1: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली,
2: ओनली इंटरनली, क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए. वो कैसे निकलेगा, यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर. अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए. तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली. लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा, तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत के बारे में सोचना पड़ेगा.
1: वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. यू नो, ये माइंड सेट दिमाग में आते हैं कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा, यू नो, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी. अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी. तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं. यू नो, हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हेयर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता. घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती.
2: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना. देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में, गुस्से में, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है, कोई नहीं जाता. अगले दिन वापस वही, उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा. वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल लेती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस. व्हाई, इट्स ओके. सी, कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर. लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है. लेकिन यहाँ बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है. और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत ईजी हो जाता है.
1: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव.
2: क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना, तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत ईजी है.
1: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माई रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माई रिलेशनशिप टू द ऑफिस, यू नो, माई बिलोंगिंग फीलिंग की आई बिलोंग टू दैट ऑफिस. अगर ये माइंड सेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट है थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सॉल्यूशंस उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
2: अगेन आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज नॉट द be all and end all of everything. एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए, मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता तो हम मोटिवेट कैसे होंगे. तो वर्तमान समय, एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे. तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन, ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे. उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है. लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं है. लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड, ओके। अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मे भी मेरे पापा किसी बात से परेशान है, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूंगा। Why can a junior not think the same thing about his senior? कि maybe he is upset about something, वो किसी और conflict में है, क्या बात है जो उन्होंने recognize ही नहीं किया मैंने ये किया, क्या होगा उससे? Immediately आपके यहाँ से एक positive vibration जाएगी। अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जान के खींचने चाहिए ये, हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
1: खुद डर गए हैं। सबसे बड़ी इनसिक्योर, खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ, तो हो सकता है आप ज्यादा
2: हो। दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट, लेकिन ऑफ कोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए। मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है, कई बार तो वो अपनी घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब्ड है, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबियत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर है, और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है। तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा, डू यू थिंक इट वॉज ओके, आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था। वेन विल आई डू दिस, इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू। लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट। तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विथड्रॉ हो जाते हैं। अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, व्हाट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है, और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर, आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या होना चाहिए।
1: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
2: पर अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी। आई हैव टू रियली रियली टेक केयर, सी दिस इज वॉट इट इज, वॉट इज हैपनिंग, कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है, ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए, इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई, एंड नाउ ही सिक्योर, अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई, तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी, एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया, किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा, आई गेव इन, आई यू नो आई गेव इन टू दैट पावर, दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया, अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है, तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा,
1: मैं खुद,
2: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन, व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट, जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एम आई हैप्पी विद इट?
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
2: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है. जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं. आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे करते जाएंगे. इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे. एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब. लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ maintaining that, learning, working hard, going on, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा. लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता. ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ. तो उसको गिव अप नहीं करे. इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं. लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं. सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, मैं कितना अच्छा. सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है. सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड.
1: वंडरफुल. आई थिंक इट गिव्स अ न्यू रियल न्यू डायमेंशन. शिवानी, अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर. हम ये सोच रहे थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए. लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है, तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में. अब इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
2: ओम शांति.
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान ले कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी. जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज. अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए, एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09999933555, 09999933666, 08736666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी,

0: स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस. अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई, आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे इस सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की, क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन, क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है। किसी ना किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, अ वेरी वार्म वेलकम।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या,
2: यह शब्द में ही वह क्या है समाया। डिप्रेस्ड नहीं, किसी को दबाना, नीचा करना, तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि सचमुच डिप्रेस्ड है।
1: जी बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
3: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है।

0: यू नो कंपैरिजन. सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इनेट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर इन, आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट.
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नजर आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट. अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं या वहां से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी है वो स्टेजेस.
2: सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं. वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो. सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज्यादा नहीं हो रही है. फिर भी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा सा एक दो घंटा अच्छा लगता है, फिर से दो घंटा में निराश हो रहा हूं या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. बाद की स्टेज है कि भाई वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी स्टेज वो लंबी चलती है कि दिन में देखो 8 घंटा वैसी स्टेज चली, 3-4 घंटे आपको अच्छा लगा. और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील कर रहा है सदा के लिए, अच्छा नहीं लगा. जो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहाँ होता है, साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो, नहीं तो जो आगे के स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है.
0: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है?
2: नहीं, शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि भी थर्ड स्टेज,
1: कभी खुशी कभी गम वाला
2: वाली स्टेज, तब शुरुआत हो गई आपके केमिकल इम्बैलेंस.
0: तो मेजोरिटी इसका मतलब देन
1: दिस इज अगेन अ मिथ ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं, ये स्टेज तो हमारे कभी हो ही नहीं सकती. ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं,
2: सचमुच हो सकती है. आज राजयोग भी यही सिखा.
1: नहीं बिल्कुल, ये एक इतनी बड़ी गलत फहमी है जिसे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं. तो क्या ये स्थित प्रज्ञ की जो बात की जाती है, टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज या फिर ये कोई और स्टेज?
2: नहीं, वो स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञ होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरल भी आएगी. अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख, मैं जो आत्मा हूं वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूं, नहीं वो एक मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरा एक स्वभाव है,
0: इनहेरेंट कुछ चीज है जो इनहेरेंट है. अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे.
2: हाँ जी,
0: अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ. सो इट इज इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी. अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनहेरेंट है, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए, लेकिन वो भूल गई है. जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए, माई नेचुरल नेचर कैन नॉट गेट अफेक्टेड. इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई एम इम्यून या आई डोंट कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं,
1: मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीजों को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं. हमने उस टाइम एंजॉयमेंट और सुख की बात की, एक्साइटमेंट की बात की थी और कहीं ना कहीं इधर यू नो इनर्ट जो है
0: और हर्ट और कंपैशन,
1: या
0: दोनों एक है, हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं,
1: उसकी ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकल
0: और ज्यादा अच्छी तरह से.
2: एक बात बहुत अच्छी हाल है, जब कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है, तो नहीं कंप्लेन मेरी सास ऐसी ये है ये कर रही है, तो मैं उनको सब हमेशा ये कहता हूँ दो काम करो, देखो एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय अदर थिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग आल्सो व्हाट शी इज डूइंग,
1: एंजॉय द म्यूजिक ऑफ व्हाट शी इज सेइंग,
2: व्हाट टिक टिक करती है ना, कहते हैं आके सारा दिन टिक टिक करती रहती है,
0: इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं?
2: दोनों सही है.
1: ओके.
2: अधिकतर तो ये कहेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है. अभी दूसरा ये भी है कि जहां पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है फिर भी अचानक डाउन फील कर रहा है, अचानक डिप्रेस्ड हो जा रहा है, तो वहां कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बैलेंस का रोल है.
1: ओके.
0: और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
2: या तो उसके लिए मुश्किल होगा उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने, लेकिन ज्यादा मेहनत करना. जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना.
1: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, यू नो द नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद. उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया है?
2: हाँ जी, नहीं, बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ. कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही पड़ा रहो, कोई बीमारी नहीं है. और एक जो बात देखी गई कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा. ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है.
1: लेकिन एक दिन करें तो चलेगा ना? अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब. एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी.
2: एक दिन ठीक है वो तो भी, इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते हैं कि भी आराम से भले 9:30 बजे
0: रूटीन से ब्रेक करने के.
1: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार?
2: वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे. एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वांट टू जस्ट लेट गो थिंग्स. परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है. और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता. नहीं, अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है.
1: कहीं ना कहीं सोना भी जुड़ा हुआ होता है. नींद
2: है ना, पिक्यूलियर है डिप्रेशन में. जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है. बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी. और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4 साढ़े 4 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का. और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है. और साथ में और भी सिम्टम्स है, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट. और यहाँ और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा. और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप.
1: अच्छा, ज्यादा सोना.
2: ज्यादा सोना भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं. दैट एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ. और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना. कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, पहले खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है. दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है. उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं. अगर प्लानिंग की शुरुआत हो गई तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन. एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड, they are really acutely depressed.
1: यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी. और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात?
2: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ही देखना चाहिए. कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं उसको, ब्लेम करते हैं कि भी आलसी हो गया.
1: एक ईमेल भी हमारे पास आया है सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज कि शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
2: काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ,
1: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज हो जाना,
2: अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन एक मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
1: नहीं, शी सेज कि 10th में शी वाज अ टॉपर बट 11th तक आते हैं तो शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट,
2: इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, की जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
1: तो ऐसे
2: में थोड़ा स्टडी करना चाहिए,
1: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती है अपनी बेटी की।
2: एक तो अभी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कहीं बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जिसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो सोच भी ड्रग्स लेने लगे, नहीं सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो ये जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
1: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं, स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
0: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर, मदर अगर बात करती है, एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: रोल। एक्चुअली पर किस एज की बात करें उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है, मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही, तो वो
2: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन डेफिनेटली, शुड बी रियली प्रोफेशनल इनफैक्ट, ना आज ना काउंसिलर, एनीबॉडी कैन बी अ काउंसिलर।
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
2: इस प्रकार के स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना।
1: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है,
0: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं यूथ, ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज, स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन।
1: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है, क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है? या
0: होता ही है नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही है, एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहां हम अपने डिसीशन खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते, ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं, दिस इज दैट पीरियड जहां आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन जस्ट स्वे यू अवे एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है।
2: शिवानी बहन, मैं के बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि भी सब कुछ दे देते, पैसा दे दिया,
0: बहुत ज्यादा
2: गिव टाइम,
1: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए, बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें, दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उनके कहते ही तो मिल जाती है
2: चीज़। हाँ, वो चीजें मिल जाती
0: है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने
2: बता रहा हूँ, और मेरी एक सचमुच राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम एक घंटा रोज दो,
0: और अपने लिए भी,
2: अपने लिए तो देना ही है, अपने लिए देना है, लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है।
1: एक्चुअली ये पूरा सफर जब हम तय कर रहे हैं, उसमें एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, यू नो आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा,
0: हाँ, क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए, यू नो बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए।
2: जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते, इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी।
1: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा है आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है। तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहां भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहां का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहां जा रही है, तो इसका क्या आगे एस्पेक्ट नजर आ रहा है?
2: आपने कहा तो ये बात मुझे याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है कि भले पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है।
1: बहुत इम्पोर्टेंट
2: तो
1: है,
2: सभी को यह देखना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर जो रूलर्स है वही यह सोचे कि भी पर कैपिटा हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना,
1: लेकिन है। अगर हम वहां देखें तो वहां अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी या इस तरह का पूरा का पूरा आस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है। क्यों?
2: पर फिर भी है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है, सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो, परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है, लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए।
1: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, की डिप्रेशन के उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे।
2: हाँ जी।
1: हर वर्ग में, हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है। केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाले स्टेज पर थे, कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे, लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है, स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी। आज उस सिवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम, अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, कई बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पे उतर आते हैं। सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
2: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए। भारत सूरत में ही हुआ था कि वे थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर, सारा परिवार खत्म हो गया।
1: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है, पूरी तरह से बात
0: होपलेसनेस आ गई है ना। तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया, और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
2: इसमें। तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकता है शुरू में, जैसे नहीं बढ़ आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको। अमेरिका में कुछ समय पहले मैं देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया, दे वर डिप्रेस्ड। हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ कि माँ ने बच्चों को मार दिया,
3: वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली.
1: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी. तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त.
0: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है. वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं. लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें. अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकाले. एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
1: और ये भी कि दूसरों का भी हम ले ले.
0: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन. आई थिंक स्टॉप एंड पॉज. आई एम आई, दिस इज वॉट आई वॉन्ट. क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए, तो वो हो जाएगा. लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी, तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है. आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वील बी एबल टू चेंज इट. वील डेफिनेटली.
1: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम. एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को, कि चार घंटे अगर मैं खुश हूं तो चार घंटे दुखी हो भी जाता हूं, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूं, तरीका ढूंढ लेता हूं.
0: क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को. लेकिन जहां वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो चार घंटे नहीं, चार मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज. अगर वो बाहर तक था तो वो चार घंटे आ जाएगा, कल आठ घंटे आएगा. When it's inside, then I can change faster.
1: बिल्कुल. और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को, अगर हम समझ लें इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो चार घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि व्हाट आई वांट, यू नो, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी. एक वो स्टेज जब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, वो एक किसी की बात, आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता.
3: तो दो चीजें हैं जो शिवानी बेन ने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी. पर भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी है, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई. कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस. दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज भी उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी. इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी.
1: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है?
3: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में. सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की. उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे युंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई. ऐसे ही दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी. परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ. और इस पर अमरीका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है. और ये देखा गया कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है, कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है. एंड दैट्स एन पावरफुल रिसर्च.
1: तो बिल्कुल. अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में जरूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी. हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं. और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है, किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नटशेल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि

0: कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवास 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा
3: जीवन में जब भी
2: विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं,
3: अपने प्रियजनों में अपनी माँ को सबसे ज्यादा याद करता है, क्योंकि माँ के पास उसके दुख के जख्मों पर मरहम लगाने की ताकत होती है। हमारे शरीर में कितनी ही बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों का इलाज हम जनरली डॉक्टर्स के पास एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी आदि सब चेक कर चुके होते हैं। कई बार इनका इलाज माँ प्रकृति की गोद में सहज रूप में प्राप्त होता है, सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते और उसका उपयोग नहीं कर पाते। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आरजे शांतनु, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके साथ हूं आज एक और नए गेस्ट के साथ। रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं साथियों, और आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे बीच में हैं, उन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।

0: औषधीय पौधों को अपने घर के पीछे आंगन में जगह दी है, और उनमें से कितने ऐसे पौधे हैं जो कि भारत सरकार के लिस्ट में एंडेंजर्ड है, मतलब जो खत्म होने की कगार पर है, ऐसे स्पीशीज को आपने जगह दी है, ऐसे जैव विविधताओं को जगह दिया है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? आपके जीवन का थोड़ा हमको परिचय कराएं तो बड़ा अच्छा होगा।
1: जी, मैं प्रताप कुमार साहू, स्टेट ओडिशा, स्टेट कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, गांव नांदुल, हमारा जूनागढ़ ब्लॉक। तो हम जो मेडिसिन पौधा के बारे में आपको कुछ पूछेंगे, तो अभी तक जो केमिस्ट्री के बारे में तो बहुत क्षति भी हुआ। तो हमारा जो खेती में जो केमिकल फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया और जो पेस्टिसाइड मेडिसिन के लिए जो हमारा मनुष्य का, प्राणी जगत का जो उपकार किया, जो कीट पतंग तो जिया, वो तो हमारा उपकारी किसान का उपकारी प्राणी है ना, वो तो वो जो केमिकल संपर्क में आने से तो वो पूरा खत्म हो गया। तो हमारा इसीलिए हमको याद आया कि हमारा दादी एक पारंपरिक चिकित्सक थे, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल हीलर, इसीलिए हमको मेरे डैडी को बोला।
0: तो साथियों, पटेल साहू जी जो हैं उड़ीसा के एक बहुत छोटे से गांव कालाहांडी से आते हैं, और कालाहांडी में उन्होंने जो अपने घर के पीछे एक जादुई दुनिया बसा रखी है मेडिसिनल प्लांट्स की या औषधीय पेड़ पौधों की, वो देखने लायक है। आज उस जादुई दुनिया में हम जाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और पटेल साहू जी से उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। पटेल साहू जी हमसे उड़िया में बात करेंगे और मैं आपके साथ हिंदी में उसका सार समझाऊंगा। और इसलिए पहला सवाल
1: जी
0: पटेल
1: जी
0: जी
1: जी
0: आपसे
1: जी
0: यही है कि आपके जीवन की शुरुआत ये पेड़ पौधों के साथ कैसे हुई? माँ प्रकृति के प्रति आपका ये जो प्यार है, ये कैसे शुरुआत हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: मोर ओजा स्वर्गत गोवर्धन साहू से जो पारंपरिक चिकित्सक थे, तो सहित प्राय मु सबुबेले माने से मते बेसी भल पाउथिले, से मु केमती से पारंपरिक चिकित्सा शिखिबी ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦିନେ କଣ ହେଲା, ତ ଏଠି ଆମର ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 5-7 ଦିନ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପଢାପଢି କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ ସେ ହିମଦସ୍ତାରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ କୁଣ୍ଡିକି ଡୁଗୁଡ଼ା ଫଗୁଆ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଥାଏ। ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଚିତା ଚେତନ ମାନେ ଭାଗବତ ଫାଗବତ ପାଠ କରି ଚିତା ଚେତନ କାଟୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଏ ଚିତା ଚେତନ କାଟିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଏ ବହି ଗୁଡାକ ରଖିକି ଆମକୁ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ଆମକୁ ପଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ କରି ଏ ବହିକୁ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କା ଭଲ ଭଲ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଉଠିଲି ଆଉ ବହିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି। ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଏ ବହି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାଷିକାରେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ସିନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ କି ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ କି ପୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ଆଉ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକ ସାରା ବିଶ୍ୱର ତୁ କଣ ତାକୁ ପଢେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ସେଇଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଆହ୍ଲାଦ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫିଓ ସୃଷ୍ଟି।
0: तो दोस्तों पटेल जी जो कह रहे हैं वो ये कि बचपन से ही उन्होंने अपने दादाजी को देखा था, दादाजी या पिताजी गोवर्धन साहू जी को देखा था जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक थे, और उन्होंने ट्रेडिशनल हीलर जिसे कहते हैं जो कि पारंपरिक चिकित्सक होते हैं जो कई ऐसे पद्धतियों से बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी समस्या का समाधान या इलाज करते हैं। तो उनको देख करके इनके मन में बहुत प्रेरणा जगी कि ये क्या है जो मैं भी सीख सकता हूँ। उस समय वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच उनको लगा कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जागा, लेकिन जो ये पारंपरिक चिकित्सा का जो भी ज्ञान है वो हर भाषा में अवेलेबल नहीं है। और जहां तक मैंने पटेल जी के बारे में जाना है या पढ़ा है, आपके परिवार वाले चाहते थे कि आप पढ़ाई लिखाई करके कोई दूसरा जॉब या कोई दूसरे प्रकार के व्यवसाय में खुद को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई की लेकिन आपने अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा के बीच में ही रखा। पटेल साहू जी आज भी अपने घर के बाहर एक

0: लंबी कतार लोगों की होती है जिनकी वो चिकित्सा करते हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिना मूल्य करते हैं वो। ये जो चिकित्सा करते हैं, पारंपरिक चिकित्सा प्रकृति के जड़ी बूटियों के द्वारा, उसका वो कोई भी पैसा नहीं लेते। लोग प्यार से जो भी उनके लिए लेकर के आते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं। कोई कुछ नहीं लेकर के आए वो तो भी उन्हें उतने ही प्यार और सम्मान से उनकी चिकित्सा करते हैं। ऐसे महान पंडित साहू जी आज हमारे बीच में हैं। तो साहू जी, आपसे अगला प्रश्न यही है कि जब लोग कोई काम करते हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी काम करे, एक अपेक्षा रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं कि कुछ पैसा कमाएं। आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा पैसा मैं भी कमाऊं, थोड़ा धन मैं भी कमाऊं?
1: ପଇସା ବି ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ଦୌଡ଼ିନି ତ କେମିତି ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ବଞ୍ଚି ରହିବ ତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେନ୍ତା ଯେମିତିକି ମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇବେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅହର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ବସିଛି ସେ ରିୟାର ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡାକ ରଖାଯାଇଛି ସେଠି କୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତଳେ ଲଗାଇଛି ପଲିଥିନ୍ ସେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବଟନିକ୍ କଲେଜର ଯୋଉ ବଟନିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାଏ ଗଛର ତା ସ୍ଥିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ
0: तो पटेल साहू जी जो कह रहे थे दोस्तों, वो ये कि ये सारा कुछ जो है वो एक उपकार की भावना से करते हैं, पैसे कमाने की भावना से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी या जो भी है, वो बहुत महंगा है, और वो चिकित्सा जो है वो बहुत कम लोग ही उसके पास तक पहुंच पाते हैं या उसको अपने लिए यूज कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। उस गरीब है, जो आदिवासी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गांव के एकदम अंतराल में रहते हैं, जिनके पास इतना धन नहीं होता, वो कैसे अपने बीमारियों का इलाज कराएं? तो प्रकृति जो है वो सभी संसाधन हमें फ्री में उपलब्ध कराती है। वो हवा भी फ्री में देती है, वो जड़ी बूटियां भी हमें फ्री में देती है। तो उन जड़ी बूटियों से इलाज का वो कैसे पैसा ले सकते हैं? इस भावना से उन्होंने ये परंपरा को आगे बढ़ाया अपने दादा गुरु का। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, देखा कि आसपास में वो जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधीय पेड़ पौधे हैं, उनका धीरे धीरे अब विनाश हो रहा है। लोग जानते नहीं हैं, कई लोग उनको मिटा देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनको संग्रह करना शुरू किया। अपने घर के पीछे 1.5 एकड़ जमीन को उन्होंने संग्रहालय की तरह तैयार किया। उसमें उन्होंने लगभग 3,000 ऐसी प्रजातियों को जगह दी है, जिनको स्टडी करने के लिए, जिनके बारे में जानने के लिए बॉटनी या ये पेड़ पौधों का जो स्ट्रीम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बॉटनी की, वो तक आते हैं। वो आकर के भी जानते हैं, सीखते हैं। तो ये एक तरीका है समाज की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, प्रकृति की सेवा करने का, जो पटेल साहू जी और उनके दोस्त, उनके परिवारजन इसमें जुड़े हुए हैं। पटेल जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया, तो आपको कैसा फील हुआ? क्या अनुभव था? कैसा लग रहा था आपको?
1: ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ହର୍ବାଲ ଫେୟାର ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର 2017 ଆଉ 2019ରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଭବାନୀପାଟଣା ହର୍ବାଲ ଫେୟାର ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ରିୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 750 ଭେରାଇଟି 2017ରେ। ତ ସେଇଠି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେସନ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତା ପରିବାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଔଷଧ କୋଉ ସେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷଟା କୋଉ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହବ, ତାପରେ କେତେ ପରିମାଣ ଦିଆଯିବ, କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, ତାର ଔଷଧ ଗୁଣ ଯେମିତି ଭରପୁର ଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେ ଔଷଧ ଗୁଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇଥିଲେ। 2019ରେ ଆମେ ସେଠୁ 800 ଭେରାଇଟି ପଲିଥିନ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ହର୍ବାଲ ଫେୟାର ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁକୋଣରୁ ଗୁଡାଏ ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡାକ ନେଇକରି ଗୁଡାଏ ଔଷଧ ନିଜ ତିଆରି ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଔଷଧ ଗୁଡା ତିଆରି କରି ଆମର ଭଜମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଗଛ ଗୁଡାକ କୋଉ ସିଜନରେ କଲେକ୍ସନ କରାହବ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ କେତେ ଦୂରିଆ ହବ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, କୋଉ ପରିବାରର ଗଛ, କୋଉ ସିଜନରେ ତାର ଛେଳି କଲେକ୍ସନ କରାହବ, ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡାକ ମୋ ନାଁଟା ଏଠି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୋପାଳ ଭୋପାଳ 2008 ଆମେ ତାଙ୍କର ହର୍ବାଲ ଫେୟାର ଦେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ 200 ଭେରାଇଟି ରିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଲିସିନ ସେଟ୍ ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ ସେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଏମିତି କାମ ଗୁଡାକ କଲେ ହିଁ
0: साथियों, पटेल जी जो अभी हमसे कह रहे हैं वो ये कि वो सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ना केवल उनको परिचय, उनको पहचाना, उनके काबिलियत को पहचाना, लेकिन उनके कार्यक्रम मन की बात में भी उन्होंने उनका जिक्र किया है, पटेल साहू जी के परिश्रम का जिक्र किया है और साथ ही पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन पटेल साहू जी इस कार्य को आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2008 में उन्होंने बताया कि वो भोपाल में गए थे जहां पर उन्होंने हर्बल फेस्टिवल में लगभग 200 वैरायटी पौधे लेकर के वो वहां पहुंचे थे। फिर ऐसे ही उन्होंने बताया ओडिशा में प्रतिवर्ष हर्बल फेस्टिवल होता है और 2019 में हुए फेस्टिवल में सरकार ने देखा कि पटेल जी ने कितने सारे पेड़ पौधों को संरक्षण दी है और उसके द्वारा किस प्रकार से वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के सतत प्रयास की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर बहुत कठिनाइयां हैं, पेड़ पौधों को पालना, उनको बड़ा करना, उन्हें संरक्षण देना बहुत मेहनत का काम होता है। ऐसे एक सतत प्रयास में जुटे हुए एक, मैं तो कहूंगा तपस्वी है, जो कि सतत प्रयास के द्वारा इन पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, इनके द्वारा लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हैं। तो ऐसे पटेल जी को फिर सरकार ने हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। पटेल जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप, आपके पूर्वज, इन सबको इन जड़ी बूटियों का ज्ञान था, पेड़ पौधों का ज्ञान था, तो वो इसका सही उपयोग जीवन में कर पाते थे। सिर्फ उपयोग ही नहीं, इन पेड़ पौधों का सम्मान भी करते थे। लेकिन आज की पीढ़ी में, या मैं खुद की भी बात करूं तो मुझे पेड़ पौधों के बारे में शायद इतना नहीं पता। मुझे कोई पौधा देख करके लगता होगा कि ये तो घास है और मैं शायद उसको उखाड़ के फेंक देता हूँ, या ये तो जंगली लगता है, इसमें क्या ही है। हो सकता है कि कई ऐसे पेड़ पौधे जो हैं वो जंगली भले हैं लेकिन वो औषधीय गुण होंगे उसमें, इसका हमको ज्ञान नहीं होता। तो आप वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप युवाओं को, यंग लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବିଷାକ୍ତ ମୟ ହେଇକି ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯୋଉ ରୋଗ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଆଧୁନିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବନି, ଏ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ମାନେ ସୂତ୍ର। ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ପଢିଛି, ଦେଶ କା ମିଟି ଦେଶ କା ହବା, ଦେଶ କା ପାନି ଦେଶ କା ଦବା। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶର ଜଳବାୟୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଜଡ଼ିବୁଟି ବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହିଁ ରୋଗ ହେଇପାରିବନି କି ରୋଗ ତାର ରୋଗର ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ଆମର ରୋଗ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆମର ରୋଗ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଥିବାରୁ ରୋଗ ସହଜରେ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଏଫେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ କିଛି କାମ ଦେଉନି।
0: ଯୋଉ ପଟେଲ ଜୀ କହି ରହେ ହୈ ଦୋସ୍ତୋ, ଓ କିତନା ସୁନ୍ଦର ହୈ, ଉନ୍ହୋନେ ହିନ୍ଦୀ କି ହି ଏକ ବାତ କୋ ଆଗେ ରଖି, ଦେଶ କି ମିଟି ଦେଶ କା ହୱା ଦେଶ କା ପାନି ଦେଶ କା ଦବା। ତୋ ଉନକେ ହିସାବ ସେ अगर पटेल साहू जी के अनुभव को हम समझें तो वो कह रहे हैं कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहां की मिट्टी, वहां की पानी, वहां के आबो हवा में ही आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन्नत करने का, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का सारा मटेरियल होता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम देसी जो साधन हमारे पास होते हैं उनसे हम खुद को थोड़ा विमुख कर लेते हैं, और नतीजा हमारे सामने होता है कि हम खुद को कमजोर पाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति में हर वो साधन जो मौजूद है वो हमारे जीवन की संवर्धना के लिए है, हमारे जीवन के संरक्षण के लिए है। लेकिन अगर हम प्रकृति को न समझे और अगर हम प्रकृति का प्रॉपर सम्मान न करें तो हम हमारे समस्याओं से उलझे रहेंगे, कभी उससे बाहर नहीं आ सकते। तो पटेल जी, आज तो आपके सामने बहुत ऐसे लोग होंगे जो जानते ही नहीं है कौन सा पौधा क्या है, उसकी क्या बेनिफिट है, उसका क्या नीड है, मेरे जीवन में उसका क्या फायदा है। तो इस अज्ञानता को कम करने का क्या तरीका है? आपको क्या लगता है कैसे ये अज्ञानता को हम कम कर सकते हैं?
1: युवा पीढ़ी को मुझे गोटे कथा कहबी आग को कमी परिवेश मान सृष्टि करके बचे रखे बर्तमान भी जंगल मानकर पूरा संपूर्ण निहा फिया लगे देखिए नष्ट कर देले जदि आगामी पीढ़ी पाई जदि आम एवं जदि चेष्टा न करवा युवा पीढ़ी पाई बहुत मान कष्टदायक हम आउ मान उत्ताप बढ़ बर्षा समय बर्षा हेनी शीत समय शीत हेनी जोटी बर्षा हवा कथा ସେଇଠି ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ହେବ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତ ଏଣୁକରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରଖାଯିବ ଏଣୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ଏବେଠୁ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଏଇଟା କିଛି ମାନେ କିଛି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ଏଣୁକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ନଷ୍ଟ ତ ହେଇଛି ହଁ ଏଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଗାମୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
0: दोस्तों, पटेल साहू जी ने अपने इस उत्तर में न केवल एक ज्वलंत समस्या का जिक्र किया जो कि है क्लाइमेट चेंज या परिवेश का जो बदलना है, आबो हवा का बदलना, उसके बारे में जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक अनुरोध भी किया हमारे युवा पीढ़ियों से। उन्होंने कहा कि जिस रीति से आज हम दोहन कर रहे हैं हमारे प्रकृति का, हमारे साधनों का, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जहां वृष्टि होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए, वहां पर सूखा पड़ेगा, जहां सूखा होना चाहिए वहां बाढ़ आ रहा है। मतलब इस प्रकार का जो असंतुलन है जो कि प्रकृति में, परिवेश में हम देख रहे हैं, उसके कारण ये समझ में आता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती। इसलिए पटेल जी का विशेष रूप से सभी युवा साथियों से, सभी जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, हमसे इनका ये अनुरोध है कि अपने आसपास के परिवेश को, अपने आसपास की प्रकृति को सम्मान करें, अपने आसपास में इस प्रकार का एक परिवेश तैयार करें, एक वातावरण तैयार करें जिसके द्वारा न केवल प्रकृति की सेवा हो रही है लेकिन प्रकृति की सेवा के द्वारा आने वाली पीढ़ी की भी सेवा हो रही है। क्योंकि अगर आज हम प्रकृति की पालना नहीं करें, उसका संरक्षण, उसकी संवर्धना न करें, तो कल देख पाना मेरे लिए, आपके लिए मुश्किल है, और आने वाली पीढ़ी के लिए कल का सोच पाना भी बहुत मुश्किल होगा। पटेल जी, आप और भी कुछ कहना चाह रहे थे?
1: तो इसलिए हम सारा विश्व को आज सचेतन के लिए बता रहा हूँ कि जो पेड़ पौधे संपूर्ण नष्ट हवा बसीची सेटा केमती बचे के रही पार जमती कि सारा माने विश्व रो डायनासोर संपूर्ण लुप्त हो गला गुड़ाए एमती बहुत किसी पेड़ पौधे मध्ये नष्ट हो गले जोटा कि असाध्य रोग चिकित्सा करा असाध्य रोग कैंसर महामारी ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା କୋଭିଡ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରାତନୀ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସବୁ ରହିଛି ଋଷିମୁନି ମାନେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ପେଡ଼ ପୌଡ଼ା ଖୋଜିକି ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବା ତାହେଲେ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇ ମା ମାଟି ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନିରୋଗୀ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଚାଷ କରାଯାଉଛି କେମିକାଲ ଦେଇକି, ତ ତାକୁ ନ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲା ପରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଏଣୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କେମିତି ପେଡ଼ ପୌଧା କରିକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା।
0: जो पटेल जी कह रहे हैं वो ये कि आज अगर हम हमारे पेड़ पौधों की रक्षा ना करें तो हमारे लिए भी खतरा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने ये बताया कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में ना जानने के कारण हमने उन पेड़ पौधों को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, और आज हम वंचित हैं उन पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो भी औषधीय गुण होते हैं उनसे आज हम वंचित हो गए हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इनको संरक्षण देना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज जिस प्रकार का भोजन हम कर रहे हैं, जो कि रासायनिक पद्धति से किए गए कृषि से निकल के आता है, इस भोजन को खा करके हम हमारे जीवन को दुर्बल बना रहे हैं, हम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने पूरे उद्यान में, जो उनका हर्बल उद्यान है, उसको जैविक कृषि के माध्यम से उन्होंने उन पौधों का संरक्षण किया है। और वो ये मानते हैं कि जैविक कृषि के द्वारा न केवल हम अच्छा भोजन पाते हैं, लेकिन प्रकृति का और मिट्टी का भी सेहत अच्छा रहता है। और प्रकृति के इस सेहत के लिए अगर हम सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे सेहत पे भी इसका असर जरूर पड़ता है। पटेल जी, आपसे मेरे को एक एग्जाम्पल जानना है। जैसे मान लीजिए आपने बताया कई पेड़ पौधे जो हैं वो आज नहीं हैं, खत्म हो गए हैं, क्या कोई एक ऐसा पेड़ या ऐसा औषधि या जड़ी बूटी आपके दिमाग में आता है जो बचपन में आपने देखा है और आपके दादाजी को यूज करते हुए देखा है लेकिन आज वो नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास?
1: हाँ, उदाहरण है क्योंकि
0: जी बताइए।
1: ଆମର କେତେ ଗଛ ରହିଛି ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କି ଶରୀର ଭିତରେ କୌଣସି ଘା ପାଇଗଲା ରୋଦନ୍ତି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ରାସ୍ନା, ରାସ୍ନା ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଯୋଉଟା 84 ପ୍ରକାର ବାତ ରୋଗର ମହୌଷଧି।
0: एक एक करके, जैसे आपने पहला पौधा जो बताया उसका नाम क्या बताया, कैंसर, ये वाला अगर आप
1: ये
0: हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा
1: कैंसर के
0: रहेगा।
1: लिए ये जो
0: हाँ जी,
1: रोदंती फल
0: अच्छा, तो ये
1: तो
0: वाला अगर आप हिंदी में
1: हाँ
0: बोल सकते हैं तो इतना आप हिंदी में जरूर बोलिए इसका उदाहरण।
1: वो रोदंती फल कैंसर में आता है, टीबी में आता है। रोदंती फल तो हमारा उड़ीसा में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बाहर से मंगा लेते हैं। वो रोदंती का जो मेडिसिन तैयार करके हम रोगी को देखो, 100% सफल भी हो गया। और वो जो रासना जिसके तार साइंटिफिक ना प्लीचुअलिटा, आउ गोटे अच्छे ब्लफारिस्परमम, ये जो 2 प्रकार रासना अच्छी संपूर्ण नष्ट हो गलानी, एटा केमती बंचिबो। आउ इसको तो हमारा उड़ीसा में जो दुष्ट प्रकृति लोग जंगल को निया लगाने से नष्ट कर देते हैं, वो चास कर देते हैं, कोर चास करते हैं, छोटा छोटा जो पेड़ पौधे को काट के न्याय जला देते हैं, इसीलिए ये भी संपूर्ण नष्ट हो गया। और ये जो सीड्स तो अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि तो बड़ा गाछ होने से सीड्स मिलेगा, इसीलिए इसको जैविक को अंगज माध्यम रे पेड़ पौधे को कलमी माध्यम रे जो हम कलेक्शन किया, अनुसंधान भी किया। ये तो बहुत किसी मेडिसिन हमारा भारत जन माटी लुप्त हो जा रही, एणुक केमती ये गुड़ाक बटिक रखी हम तार कोशिश हमें चल रही छो।
0: दोस्तों, जो पटेल जी ने दो पौधों का उन्होंने उदाहरण दिया, एक तो जिसका फल जो है वो
1: फल
0: कैंसर, रोडंती फल, जो कैंसर और कितने ही टीबी जैसे बीमारियों के लिए बहुत ही पावरफुल दवाई क्रिएट कर सकता था, आज वो उड़ीसा के जमीन से खत्म हो चुका है। ऐसे उन्होंने फिर कासना फल के बारे में, पौधे के बारे में भी बताया, जिसके द्वारा उन्होंने पहले उड़िया में बोला था कि लगभग 80 प्रकार के जो पेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बात रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये बताया, इसका कारण ये है कि लोग चूंकि अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं कौन से पौधे से क्या बेनिफिट मिलता है, वो उन्हें काट देते हैं, जला देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। दूसरा, जब वो उन पौधों को इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो बहुत नन्हे होते हैं तभी वो उनको काट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर पौधा बढ़ेगा ही नहीं तो फल कैसे आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज कैसे आएगा, और अगर बीज नहीं होगा दोस्तों तो फिर आगे की पीढ़ी उस पौधे की बढ़ेगी कैसे। तो इसलिए आज इनमें से कई पौधे जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। दुर्लभ तो थे ही, लेकिन साथ में आज वो खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीज ही नहीं है। तो ऐसे कई पेड़ पौधों को पटेल साहू जी ने अपने उड़ीसा के छोटे से गांव में पनाह दी है, जहां पर वो ये पौधे पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, संरक्षण पा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। साहू जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी कोई एक बीमार व्यक्ति आता है और वो अपने बीमारी के बारे में बताता है, तो आप उसके इलाज के लिए जब कोई पेड़ पौधा इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए किसी पेड़ की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्टली जाकर के पेड़ों से लेकर क्या के इसको यूज करते हैं, या उसको पहले से तैयार करके रखते हैं, या आपको कितना टाइम लगता है किसी पौधे को पहचान करके उसका इस्तेमाल करने में?
1: चिन्हवा पाई कम समय लागे काई कि ना तो मो जो ओजा थिले से तो से केमिति गछ चिन्हट करा जो ता सूत्रटा से मते बते दिगि जाई चंती तो जते पेशेंट गुडा गा ऑप्शन ता हम एटा करो समान को समय रे चेहरा मध्ये दउचू तो एबे जने महिला रो गुटी छुआ है छि खिरो होनी गोरी छुआटा से आधुनिक औषध खाई पारिबो रे तो आमर जो संग्रहालय जो पेड़ पौधे रही छि सेठी 7-8 दिन रो कोर्स आकरे जा चेरो फेरो दो जो जोटा सतावरी तो सतावरी आमे उन्नत किस्म सतावरी गुडा जोटा हिमालय रे प्राय होए आमे एठी जो सतावरी जे निकृष्ट से हिमालय सतावरी गुडा का आमे एठी सेंती जगा बना कर बंची के रखी छु सेठा मध्ये से प्रसूति समय रे से माँ को क्षीर वृद्धि पाई मतलब सतावरी मध्ये दिया जाए ए भलिया गुडा उदाहरण रही छि।
0: तो जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि उनके जो दादाजी हैं उनसे सीखा हुआ ज्ञान और लंबे समय तक का जो उनका अनुभव रहा है, उसकी वजह से वो बहुत कम समय में ही पेड़ पौधों को पहचान करके औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया जैसे शतावरी है, शतावरी जो उड़ीसा में होता है वो एक अलग प्रकार का है, और जो हिमालय में शतावरी होती है वो एक दूसरे प्रकार की शतावरी होती है। तो उन्होंने हिमालय वाले शतावरी को भी यहाँ पर ला करके जगह दी और उसमें से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पटेल जी, जैसे आपको तो ज्ञान है, आपने अपने दादाजी से सीखा है, लोग जानते नहीं है, और जहां तक हमने पता किया है आपने एक किताब भी लिखी है, आपका जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को आपने उस किताब में सीमित समाहित करने का प्रयास किया है, तो उस किताब को आपने क्या उड़िया भाषा में लिखा है, या कैसे दूसरे लोग कैसे उस किताब तक पहुंच सकते हैं?
1: हम ओडिया भाषा लिखी साइंटिफिकेशन ना गुडा दिखाई कितने इंग्लीश किसी आम लिखीच कहीं ना बोले मुटा जो पुरातन आयुर्वेद कॉलेज मानक जोटा से इंग्लीश दर्शाई प्राय मझी मझी मत डाकती तो तांकर जेन डॉक्टर स्टूडेंट मानक नहीं किया प्रैक्टिकल पाए मध्ये विभिन्न जंगल मध्ये तांको बोले कि गछ चिन्हट कर दिखे सेठी प्रैक्टिकल मध्ये करा जाउची और एटा एई गछ संपूर्ण नष्ट होबार बसी एर साइंटिफिकेशन नाम एटा एटा केमती बंचिके रहिबो ए बोले सेमानको मध्ये ता साइंटिफिकेशन ना दिया होची संस्कृत ना दिया होची ओ ओडिया ना बता होची कोउ जागारे मिलिबो समुद्र पत्तन रो केते माने उपरे गछटा हबो एटा डिटेल सेमानको तथ्य दिया होची ए भलिया ଆମର ଯୋଉ ବଟନିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖଉଛୁ।
0: तो जो पटेल जी ने कहा वो ये कि उन्होंने स्टूडेंट्स के सहायता के लिए और जो लोग पढ़ाई करते हैं औषधीय पेड़ पौधों के बारे में, उनके लिए इस किताब में इंग्लिश में जो साइंटिफिक नेम होता है, उनका वैज्ञानिक नाम होता है, वो भी रखा है, संस्कृत का जो आदि नाम है वो भी रखा है, जो उड़िया भाषा में बोला जाता है वो नाम भी रखा है। तो उन्होंने अपनी किताब में इंग्लिश और उड़िया दोनों के माध्यम से लोगों तक ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ दोस्तों, जब ये किताब प्रकाशित हो जाएगी और जब ये अवेलेबल होगी आपके और मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ ये समाज का बहुत बड़ा उद्धार करेगी, बहुत मदद करेगी। जाते जाते पटेल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप भारत देश में रहते हैं, भारत भूमि के लिए आपको इतना प्यार है, भारत में जो पेड़ पौधे हैं, जो संसाधन है औषधीय पेड़ पौधों का, उसको आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं। आप पूरे भारत के लिए अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो हम भारत को संदेश कैसे पेड़ पौधे चिरदिन के लिए आमर आगामी पीढ़ी पे केमती आम बचे रखू सेटा मुझे संदेश दौर आओ निज घर बाड़ी पारंपरिक स्तर 15-20टा उदाहरण स्वरूप 15-20 पेड़ पौधे जमी औषधीय गच लगे रखे जमती कि उदाहरण स्वरूप ये गोटे उदाहरण दौर जन लोक काश है ताकू गोटे औषध दिया चंद्रामृत रस एटा कफ रोग नाशक ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ୟାକୁ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ସରସରେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବଟିକା ଦୁଇ ଥର ଦେଲେ 5-7 ଦିନ ଧରି ଇଏ ଯୋଉ କାଶ ରୋଗ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବାସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବାସା ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ବାସା କହନ୍ତି ତ ଇଏ ଏଗୁଡାକ ଯଦି କରାଯିବ ଏ ଗଛ ଗୁଡା ଖାଲି ମାନେ ଏ ବଟିକା ଖାଇଦେଲେ ତ ହେବନି ନା, ସେଠି ରୋଗ ଛାଡ଼ିବନି। ଅନୁପାନ ଭେଦରେ ଯଦି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁପାନ ଭେଦରେ ଔଷଧଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରୁହେ। ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୈଦ୍ୟ ସଂଘ ଗଠନ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
0: जो पटेल जी ने कहा वो ये कि पूरे भारत के लिए उनका यही संदेश है कि अपने आसपास के पेड़ पौधों का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हमारे ही आसपास में हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा साधन छुपा हुआ है। उन्होंने बोला कि हर घर में कम से कम छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत हर्बल गार्डन जरूर होना चाहिए, एक पारंपरिक उद्यान जैसा जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने दो पौधों के नाम लिए, अगर ये दो पौधे शास्त्रों के हिसाब से भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके जो छोटे मोटी बीमारियां होती हैं इनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज उन्होंने ये कहा कि गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप छोटा छोटा संग्रहालय बनाते हैं जहां पर कि पेड़ पौधों को आप संग्रहित करते हैं, ये उस पर्टिकुलर पूरे गांव के लिए भी बहुत सुविधा और बहुत सहज हो जाता है संरक्षण करने का और अपने लिए भी। पटेल जी, अगर आपको कोई ऐसे 5 पौधों के नाम लेने हो जो कि मान लीजिए आज हमारे श्रोता सुन रहे हैं और उनको लगता है कि अच्छा मैं अपने घर की बालकनी में या अपने घर के आंगन में थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाना चाहूंगा, तो कौन से ऐसे 5 पौधों के आप नाम बताएंगे जो कि उनको लगाना भी सहज हो और उससे उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होंगे? तो कौन से वो ऐसे 5 पौधे होंगे अगर आप वो बता सके, हिंदी में बताएंगे तो भी चलेगा।
1: तुलसी, बासम, बासा, नीम, अग्निमंथा और निर्गुंडी।
0: तो पहला
1: ये
0: था
1: हाँ
0: तुलसी, दूसरा है बासर, तीसरा है
1: बासम,
0: अग्निमंथ, चौथा है
1: हाँ
0: नीम और पांचवा
1: नीम, निर्गुंडी,
0: निर्गुंडी। तो तुलसी के
1: हाँ
0: कुछ फायदे बता दीजिए। तुलसी के फायदे तो खैर लोगों को बहुत सारा पता ही है, लेकिन कोई एक ऐसा फायदा तुलसी का जो लोगों को नहीं पता और आपको ही पता है?
1: ओ जो घरे तुलसी अच्छी सेठी माने ये जो बिजुली बिजुली ताको एफेक्ट करिवानी पुराना तुलसी का सेठी जो अच्छी बिजुली होची वर्षा समय रे ये ताको एफेक्ट करिवानी।
0: अच्छा,
1: तापर
0: तो
1: तुलसी
0: पटेल जी का
1: का
0: कहना है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर बिजली जो गिरती है, जो बरसात के समय तेज बारिश के समय जो बिजली होती है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उस घर पे कम पड़ता है। बहुत अच्छा। और तुलसी के कुछ और फायदे?
1: और तुलसी यदि घरे अच्छी माने ये जो मशा जो मलेरिया जो वाहक से माने मध्य साहस करेंगे तो
0: मच्छर
1: अपन
0: से, मच्छरों को आप अपने घर से दूर रख सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास तुलसी का पौधा है। अच्छा, दूसरा जो आपने दूसरे पौधे बताए जैसे कि नीम, नीम तो बड़ा पेड़ होता है, अगर उसको छोटे साइज में भी कोई अपने घर के बालकनी में लगाता है तो उसका कुछ बेनिफिट होता है उसको?
1: ଲିମ୍ ପତର ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଡାଇବେଟିସ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଗରିବ ଆଦମୀ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଲିମ୍ ପତର ଚୋବେଇକି ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯୋଉଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ତ ନିମ୍ବ ଗଛର ତା ଯୋଉ ଇଏ ଚେର, ଚେରର ଛାଲିରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଆଁରେ ତାର ଧୂଆଁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ସେ ସେ ଧୂଆଁରେ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଡାଏ ଆମର ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଶସ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଟା ନିମ୍ବ ପତ୍ରର କୁଆ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ
0: तो एक
1: ରଖାଯାଇପାରିବ।
0: नीम,
1: ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି।
0: तो पटेल जी कह रहे हैं एक नीम के कितने ही फायदे हैं। वैसे तो नीम जो है वो जगन्नाथ जी के आकृति को तैयार करने के लिए नीम का ही इस्तेमाल किया जाता है। नीम के लकड़ी से ही जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी का निर्माण होता है। तो नीम तो बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पवित्र पेड़ है। लेकिन अगर आप नीम का बहुत बड़ा पेड़ नहीं भी उगा सकते, अगर छोटा मोटा पौधा भी आपके पास है तो वो आपको बहुत फायदा कर सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि नीम के पत्ते, अगर कोई व्यक्ति 5 पत्ते लगभग रोज खाता है और अगर
1: हाँ
0: उसके पास इंसुलिन जैसे महंगी दवाई का पैसा नहीं है, तो वो मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी से निजात पा सकता है, बहुत कंट्रोल कर सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि नीम के जो छाल होते हैं, उन छाल को अगर आप जलाते हैं, सूखे हुए छाल को, तो मच्छर और कई कीट जो हैं वो आपके घर में नहीं आएंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि नीम के पत्ते जो हैं, उसका पाउडर बना करके वो अपने जैविक कृषि में भी इस्तेमाल करते हैं एज ए कीटनाशक।
1: बिल्कुल
0: तो एक नीम के उन्होंने इतने फायदे बता दिए। मैं दोस्तों, मैं समझता हूँ अगर हम उनसे बातचीत करेंगे तो हम हर पौधे के बारे में ऐसे कितने करामती चीजें जान पाएंगे। आपने तीसरा पौधा बोला था चिरकुंडी, चिरकुंडी बोला था, सॉरी
1: निर्गुंडी निर्गुंडी
0: निरगुंडी। निरगुंडी कौन सा पौधा होता है, उसका क्या बेनिफिट है?
1: ओ निर्गुंडी हो जो जो हमारा घर में जो शस्य संग्रहित रखा है वो निर्गुंडी पत्ता सुखा के गुण देने के रखने से वो कीट पतंग से सुरक्षित रहते हैं।
0: अच्छा, तो निरगुंडी एक ऐसा
1: और
0: पौधा है जिसके सूखे पत्तों को अगर आप अपने चावल, दाल
1: बिल्कुल
0: और जो भी आपके साधन है घर में, उनमें अगर आप रखते हैं तो उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऐसे तो आपके पास खजाना है पटेल जी, जिसके बारे में अगर हम सुनना शुरू करें तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक शब्द में पूछना चाहूं आपको, आपने 3,000 से भी ज्यादा पौधों को संरक्षणा दी है, आपके हिसाब से आपका सबसे प्रिय औषधीय पौधा कौन सा है, आपका फेवरेट?
1: ब्रह्म कमल।
0: ब्रह्म कमल। लेकिन ब्रह्म कमल ही आपका फेवरेट क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: हमारा प्रिय पौधा कमल और नागवेल जो जहाँ को आम पानरी बोली कहू से सर्फ आसवनी। तापर आउ गोटे अच्छे दयना, एठी साप जदि आसीबो बोले ନାଗଦୋନ ବୋଲି ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ପ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠି ଯାଇପାରିବନି। ଏମିତି ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଅଗାଧ
0: पटेल पटेल जी
1: ସମୁଦ୍ର
0: पटेल जी ने बोला कि कई पौधे उनके प्रिय हैं, जैसे कि नागदंड है और भी कुछ पौधों के नाम लिए, जो अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में सांप आदि नहीं आते। लेकिन उनका प्रिय पौधा उन्होंने ब्रह्म कमल बोला। तो ब्रह्म कमल आपका फेवरेट क्यों है, आपको सबसे अच्छा वो क्यों लगता है?
1: ब्रह्म कमल तो ये एक मैंने सौभाग्य सौभाग्य कवच के बारे में हम व्यवहार किया है। तो ब्रह्म कमल जो चेर हमारा पास था तो हमारे पास कोई कुदृष्टि नहीं आया, इसीलिए हम ब्रह्म कमल को अच्छी मान रहे हैं।
0: तो ब्रह्म कमल जो है उनके लिए बहुत दिल के करीब है, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म कमल जो है बुरी दृष्टि से आपको बचाता है और आपको गुड लक या आपके लिए सौभाग्य लाता है। इसलिए आज वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनका जो ज्ञान जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया, वो आज वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं और उसके द्वारा पूरे भारत देश की सेवा कर रहे हैं। पटेल जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे जानने को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथी जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी आपसे आज जानने को बहुत कुछ मिला है। हम उम्मीद करेंगे कभी आप माउंट आबू आए हमारे बीच में, हमारे सभी श्रोता साथियों से मिले। साथ ही साथ हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को, सभी पेड़ पौधों को संरक्षण देते रहें, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े युवाओं तक को, सबको सिखाएं, सबको समझाएं, और सबके द्वारा माँ प्रकृति की सेवा कैसे की जा सकती है, इस सेवा में सबको लगाएं। आप खुद सदैव सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, सुखी रहें, ये हमारी सबकी आपके प्रति शुभकामना है। रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से, हमारे सभी श्रोता साथी हमारे परिवार हैं, तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से इतना निस्वार्थ सेवा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यशस्वी भारत के वो यशस्वी पुत्र हैं जो न केवल भारत भूमि की लेकिन पूरे प्रकृति की बहुत सेवा कर रहे हैं। आपका आज हमारे साथ हमारे बीच समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तव में
1: जी
0: भारत का यशस्वी मणि है, वो चमकता सितारा है जिसकी वजह से भारत भारत बनता है। धन्यवाद।
1: जी नमस्कार।
0: दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे पटेल साहू जी को, जो कि हमारे बीच में कालाहांडी ओडिशा से जुड़े थे, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पटेल जी के प्रयास ने लगभग 3,000 से भी ज्यादा औषधीय पेड़ पौधों को संरक्षणा दी है, और इनमें से कई ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं जिन्हें आज ये बचा रहे हैं। ये एक पारंपरिक चिकित्सक हैं और ये पारंपरिक चिकित्सा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, कोई उससे मूल्य नहीं लेते। उनका पूरा परिवार उनकी सेवा भावना से जुड़ा हुआ है और लोग प्यार से जो भी उन्हें लाके देते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, किसी से वो पैसे नहीं लेते। आज की दुनिया में दोस्तों इस प्रकार का एक त्यागी तपस्वी चिकित्सक देख पाना बहुत दुर्लभ हो जाता है। मैं समझता हूँ जैसे पटेल जी कई औषधीय पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, इस प्रकार की सेवा भावना जिन लोगों में होती है उन लोगों को भी बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास में कोई ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर सेवा की बहुत सुंदर भावना है, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका सम्मान, उनको संरक्षण, उनको सुरक्षा, उनको संसाधन पहुंचाना अगर आपके बस में है तो जरूर करें। और पटेल जी ने जो दो बातें हमें शेयर की, एक कि अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ पौधों का सम्मान करें, और दूसरा अपने घर के आंगन में, बालकनी में, छत पे, कुछ नहीं तो कम से कम 5 औषधीय पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों, जाते जाते उन्होंने हमें एक और बहुत सुंदर बात बताई कि हर पेड़ हर पौधे में कोई ना कोई गुण बहुत गुह्य रूप में छुपा हुआ होता है, उसके साथ समय बिताएंगे तो उस गुण का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक नीम के बारे में ही उन्होंने कितना कुछ बता दिया, एक तुलसी के बारे में कितना कुछ बता दिया। हमने तो एटलीस्ट मुझे तो, मैं नहीं समझता, शायद आप में से कईयों को ये पता था कि तुलसी का पौधा अगर घर पे हो तो बिजली का प्रभाव कम पड़ता है या नहीं होता है। ऐसी कई चीजें हमारे भारत देश में छिपे हुए इन रत्नों के पास में हैं, जिनसे हम बार बार मिलते रहेंगे। यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ।

0: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहाँ हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जीवन में फुल स्टॉप का महत्व। मैं इस पर आपसे अपना चिंतन शेयर करूंगी। हमारे जीवन की गति निरंतर चलने वाली होती है, कभी यह तेज दौड़ती है तो कभी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में फुल स्टॉप का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है? आम तौर पर हम इसे एक वाक्य को समाप्त करने का संकेत मानते हैं, परंतु यदि इसे गहराई से देखा जाए तो यह जीवन में ठहराव, आत्म मंथन और संतुलन का प्रतीक भी है। जीवन में ठहराव का क्या महत्व है? आज की आभाग दौड़ भरी जिंदगी में हम निरंतर आगे बढ़ने की होड़ में रहते हैं। हम बिना रुके, बिना सोचे समझे बस चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। यह रुकावट हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। फुल स्टॉप हमें यह सोचने का समय देता है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और किन गलतियों को सुधारना चाहिए। आत्म मंथन इंट्रोस्पेक्शन में फुल स्टॉप का क्या महत्व है? फुल स्टॉप केवल किसी बात को समाप्त करने का संकेत नहीं होता, बल्कि यह हमें आत्म मंथन करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में रुकते हैं और सोचते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने में सहायता करता है। फुल स्टॉप का हमारी मानसिक और शारीरिक शांति में क्या योगदान है? लगातार भागते रहने से हमारा शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। जब तक हम अपने लिए एक ब्रेक नहीं देते, तब तक हम अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। जीवन में फुल स्टॉप का महत्व यह भी है कि हम अपनी ऊर्जा को पुनः संजोए और एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़े। क्या फुल स्टॉप का रिश्तों में भी कोई महत्व है? बिल्कुल, हमारे जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व होता है। कई बार हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय ही नहीं दे पाते। फुल स्टॉप हमें यह एहसास कराता है कि हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी समय बिताना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर होता है जब हम रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। फुल स्टॉप से सफलता को कैसे पाया जा सकता है? हर किसी के जीवन में सफलता और असफलता आती है। जब हमें असफलता मिलती है तो हमें एक पल रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसी तरह जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो फुल स्टॉप हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी इस सफलता को कैसे बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आज के चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि फुल स्टॉप का महत्व केवल व्याकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सोचने, ठहरने, आत्म मंथन करने और संतुलन बनाने का अवसर देता है। इसलिए हमें समय समय पर अपने जीवन में फुल स्टॉप लगाकर यह देखना चाहिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आगे बढ़ना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
0: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथ ही

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन
1: ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: थैंक यू सो मच.
2: इतने दिन से हम जो बात कर रहे थे तो मैंने बोला इसको ट्राई करते हैं, लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो. तो मैंने पहले सोचा था लेट गो मतलब ठीक है इसको हटा दो, लेकिन अंदर से वाकई सच में मैं पहले डिस्कस किया अपने आप से, ठीक है उसके अच्छे भी गुण हैं, इतना अपने आप को समझा के लेट गो करके दो दिन से ट्राई किया. यू नो व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट टुडे मॉर्निंग. बहने कह रही थी अरे आप तो आपका तो चेहरा बदल गया, आप तो खुश लग रहे हो, यू लुक डिफरेंट, यू नो द वाइब्रेशन. उसके ऊपर मुझे वहां से एक चीज भी आ गई पढ़ने के लिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू स्टार्ट, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर जो अब इस वक्त मेरे लिए है. आई एम सो हैप्पी टुडे. वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर इज व्हेन यू फाइंड द करेज टू लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट चेंज. द करेज टू लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट चेंज.
3: सो ब्यूटीफुल.
2: तो मैंने सर चेंज भी क्यों करूं? मैंने तो ये बोला, मैंने बोला फिर दूसरे को मैं क्यों चेंज करूं, अपने को करूं ना.
3: दूसरे को क्यों चेंज करूं, नहीं
2: कर भी नहीं सकता.
3: चेंज कर ही नहीं सकते.
2: तो मैंने उल्टा अपना अपने ऊपर ही वर्क किया एंड आई एम द हैप्पीएस्ट टुडे.
3: वेरी गुड. सी एंड इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज व्हाट वी थॉट इट वुड बी.
2: जी
3: इट्स वेरी सिंपल. अब इसका फायदा क्या होगा? नॉर्मली क्या होता था, जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं करते एंड हम उसको यहाँ पकड़ के रखते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम उस व्यक्ति से मिलते हैं या नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन में जाते हैं, तो हमारी पास्ट की जो थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो ऑलरेडी उस व्यक्ति की एक पिक्चर पेंट कर देते हैं.
2: जी.
3: एंड वो पिक्चर यहाँ पेंट होती है, राइट? एंड देन वी सी दैट पर्सन थ्रू दैट पिक्चर ओनली. सपोज पास्ट में कोई एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ हुआ एंड मैंने यहाँ एक रजिस्टर किया, ये ऐसे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू, मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है. एंड क्योंकि मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है, आप थोड़ा सा कुछ भी कहेंगे या करेंगे, मेरा यहाँ जो रजिस्टर है वो इंडोर्स कर देगा. मैं कहा हाँ देखा, ये तो है ही ऐसे. एंड देन आई विल नेवर बी एबल टू सी यू इन अ डिफरेंट वे एंड वी कैन लिव इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. द अदर पर्सन ऑल्सो कुड हैव चेंज्ड but we will never be able to see that change in the other person
2: because we are seeing through
3: the past labels and the images that we have created
2: and that colored chashma jo aap kehte hain
3: and that's very risky to ab jab ki hum us past memory ko let go karenge jab hum next time unko milenge hum ek fresh nazariye se milenge ek fresh nazariye se ki today new beginning A new way of being with them.
2: आपने एक एपिसोड में मुझसे कहा था कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे कि आप उसको पहली बार जीवन में मिल रहे हो.
3: मतलब उसके साथ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको हटा के अब हमें उसको मिलना है. ये एक बहुत बहुत बहुत पावरफुल टूल है. इसको हमें रोज करना है. रोज के जो अनुभव भी हुए, जो अनकंफर्टेबल थे अनप्लेजेंट इंटरेक्शंस थी, रात को सोने से पहले तो एटलीस्ट उनको लेट गो करना है, क्लीन करना ही है उसको बैठ के. एंड उसके लिए बहुत सिंपल है. जब हम रात को मेडिटेशन करने बैठे या दिन में कभी भी बैठे, रियली पॉज. वो थॉट सारी आ रहे हैं, जो वो वाली बातें भी आ रही है, लेकिन उसमें कॉन्शियसली एक थॉट, आई एम अ पावरफुल सोल. I have the power to not get affected by anybody. मेरे पास है वो शक्ति. हम अभी तक अपने आप को वो बता भी नहीं रहे कि मेरे पास वो है वो शक्ति. जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना, हनुमान जी को वो शक्ति भूल गई अपनी. तो शक्ति याद दिलानी पड़ती है. तो ऐसे हमें भी अपने आप को वो शक्ति याद दिलानी पड़ती है. तो ये सारी थॉट्स आ रही हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचो, उनको भी रिजोल्व नहीं करना, नहीं करो. जस्ट बीच में साइलेंटली अपने माइंड को एक नई थॉट दो. मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ पावरफुल सोल. आई हैव द पावर टू रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एंड एनीथिंग अराउंड मी। ये एक थॉट भी उस ग्रूव को एक नए तरफ से लेके जाना शुरू कर।
2: मैं इतना ही कहूँ, आपका जो इसका टाइटल है आई एम शक्ति
3: बस,
2: और जो शक्ति को कौन क्या, अभी इलेक्ट्रिसिटी को करंट लगा सकता है
3: नहीं, अब इसमें धीरे धीरे हम एक सेकेंड थॉट क्रिएट करते हैं कि वो जो सामने वाला है ना, वो भी एक आत्मा ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज सोल कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। धीरे धीरे ये थॉट क्रिएट करते करते माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साइलेंट होने लगेगा, फिर बड़े प्यार से सामने वाले को भी लेकर आए, एंड एक ब्यूटिफुल थॉट, वो भी तो एक प्योर आत्मा है। जो भी रीजन होगा, अभी उस आत्मा को भी उसके लेबल्स, उसके जो इमेजेस हमने क्रिएट किए उसके थ्रू नहीं देखना है अब हमें, वो भी ये आत्मा है। भले उस टाइम कोई भी और थॉट आए, हम अपने माइंड को कहेंगे नहीं, वो भी एक प्योर आत्मा है। जैसे आपने पिछली बार कहा था ना, बच्चा कुछ करेगा, हम कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, बच्चा कहेगा लेकिन ये नहीं ऐसे नहीं, यस, ये अपने मन के साथ करना है। मन कहेगा नहीं वो ऐसे है, वो ऐसे है, वैसे नहीं, वो भी एक प्योर आत्मा है।
2: जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं इस मन बच्चे को प्यार से सिखाता हूँ, हाँ। तो वही चीज मुझे वहां भी करनी पड़ेगी, वहां भी तो मन बच्चा है,
3: वहां भी मन बच्चा है। जैसे ही आप अपने अंदर एक थॉट क्रिएट करेंगे ना, वो भी एक प्योर आत्मा है, फिर मन यहाँ से 10 थॉट्स भेजेगी, नहीं नहीं ऐसे ऐसे, लेकिन है प्योर आत्मा, लेकिन ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, प्योर आत्मा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। फिर भी धीरे से उसको बड़ी असर्टिवली,
2: लेयर्स वाली बात,
3: हाँ असर्टिवली उसको कह,
2: प्योर आत्मा है लेकिन लेयर्स कितने लेके आई है,
3: नहीं छोड़ दो, हाँ। सिर्फ असर्टिवली उसको, जैसे आपने कहा ना, बच्चे बच्चा हाँ। देखो कितनी लाइंस बोलता है, नहीं ये करना, आप उसको सिर्फ एक लाइन बोलते हैं धीरे से, नहीं ऐसा नहीं करना।
2: मैं तो शब्द रिपीट करता ही जाता हूँ, दिस इज नॉट अ टॉय, नॉट अ टॉय, बोलते है, बोलते है, मतलब वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता, फिर ट्राई करते कि मेरा कंप्यूटर खींचू, ये खींचू,
3: एक छोटी लाइन बोलते है ना,
2: बस उतना,
3: विद एनर्जी इज कन्विक्शन एंड असर्टिवनेस, यही लाइन अपने मन को भी बोलनी है, वो भी प्योर आत्मा है, वो भी प्योर आत्मा है, वो भी प्योर आत्मा है। ये थॉट क्रिएट करते करते वहां कौन सी वाइब्रेशंस चली जाएंगी, ये देखो कितना फर्क है।
2: आत्मा को आत्मा की वाइब्रेशन जाएगी कि तुम एक प्योर सोल हो,
3: वो आत्मा को हमारी तरफ से रिस्पेक्ट और प्योरिटी की वाइब्रेशन मिलेगी,
2: और उसकी जागृति भी जागेगी, भी
3: वो होगी, लेकिन अभी तक हम उनको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे थे,
2: बेकार।
3: सपोज मैं आपके बारे में चिंतन करूँ, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो कौन सी एनर्जी जा रही है, वो जा रही है और वो ये एनर्जी आ रही है। अब मैंने जो मेरी तरफ से जो एनर्जी है उसको कॉन्शियसली फोर्सफुली अटेंशन से चेंज करना है।
2: सिस्टर एक बात, आपसे बात करते करते मुझे एक पॉइंट याद आया कि जैसे मैं किसी को पसंद नहीं किया और उसके नेगेटिव टेस्ट आ गया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, हर्ट कर दिया था, कुछ सिखाने गया तो डांट दिया, मैं घर का बड़ा हूँ और मुझे ये हो गया, और दर दर दर दर दर, और मैं अंदर फुल हूँ, मैंने समझो अपनी बेबी को बोलना शुरू कर दिया, एक दिन बोला, दूसरे आज ही हुआ, फिर दूसरे आज ही हुआ, तो उसका वो इरेज करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो उसको उसी तरह देखने लगेगी जैसे मैं उसका माइंड भर दिया। तो ये मैं सोच रहा था, ये कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट कर देता हूँ मैं, अगर
3: यही तो हम करते हैं ना, हमारी वाइब्रेशन से भी वो चीज फैलती है।
2: नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसको डांटे के बदले या दिल हल्का कर लो, एक पॉइंट है, लाइफ की बात है, सभी करते हैं घर में, और लोग बड़े कहते भी है, एक दूसरे से दुख बांटो जो भी,
3: राइट,
2: वॉट एवर, आई मीन नॉर्मल लाइफ में। लेकिन ये मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि कितना बड़ा कार्मिक कर्मा है, बैड कर्मा है ये, कि दूसरे को पोल्यूट किया, उसको पॉइजन किया।
3: अब अगर मन हल्का करना है, क्योंकि मन में कोई बात चल रही है, मुझे किसी से बात करनी है, आई वॉन्ट टू टेक इट आउट, ठीक है, इट्स गुड नॉट टू सप्रेस, अंदर सप्रेस नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारी बीमारियां इसलिए भी हो रही है, और मन भी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि सप्रेस किया है। तो अगर हम अपने आप उसको अंदर खत्म कर सकते हैं, बात को समझ के, अपने को समझा के, लेट को कर सकते हैं, देन वी डोंट नीड टू टॉक टू एनीबडी, तो हमें किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं।
2: अगर लिख लें तो,
3: हाँ, मतलब अपने आप से अगर कर सकते हैं,
2: डायरी में लिख दें,
3: डायरी में लिख लें, तो भगवान को लिख हुआ ना।

0: वो तो अपना ही हुआ, लेकिन अगर हम अपने आप से नहीं खत्म कर सकते हैं तो हम किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन बात की इंटेंशन और बात का डायरेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मैंने अगर वो बात को सिर्फ अपनी वाइफ से शेयर किया, राइट, हल्का करने के लिए किया, लेकिन क्या शेयर किया? शेयर हमने दर्द भी शेयर किया, दैट्स ओके, लेकिन क्या शेयर किया? ये शेयर किया उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोलते हैं, वो है ही ऐसे, ऐसे भी कोई होता है।
1: इंग्लिश में कहते हैं पॉइजनिंग द माइंड।
0: पॉइजनिंग द माइंड, क्यों पॉइजनिंग द माइंड? क्योंकि जो नेगेटिविटी हमने क्रिएट की दूसरे के व्यवहार से, उस नेगेटिविटी को हमने किसी और के मन में भी डाल दिया। रिजल्ट क्या निकला?
1: वो भी नेगेटिव सोचने लग गए,
0: और मेरा इतना बोलने से मेरा भी ग्रूव और भी पक्का हो
1: अच्छा,
0: गया।
1: ये पॉइंट भी है,
0: जितनी बार हम बात को बोलेंगे, जितनी बार हम बातों को बोलेंगे,
1: दिस इज शॉकिंग,
0: सोचते हैं तो भी ग्रूव पक्का होता है, लेकिन जितनी बार बोलते हैं ना उसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: इसीलिए लोग एक चीज को इतनी बार बोलते हैं क्योंकि पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है। मैंने बोला एक औरत है, अपने हस्बैंड को हमेशा वो क्रिटिसाइज करती है, एक को किया, दो को किया, तीन, मैंने ठीक है अभी इसको भी किया, उसको भी किया, वो मर गया फिर भी करती है, मतलब कितना आपकी बात में
0: सिर्फ आपको नहीं कर रही है, वो बहुत लोगों को कर रही है, मतलब बहुत लोगों के सामने अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज कर रही है।
1: इसका मतलब इतना ग्रुप पक्का हो जाता है?
0: बोलने से तो बहुत पक्का हो जाएगा,
1: बाप रे बाप।
0: इसीलिए वो ही बात को बार बार बोलना नहीं चाहिए। कई बार पुरानी बात को भी बार बार, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन फिर पहले भी ऐसे किया था, फिर ऐसे भी किया था, फिर एक को नहीं बोलते ना आप, एक को बोलो और वर्कआउट करो तो भी ठीक है, जो मिला उसको, फिर फ्रेंड मिला उसको, रिश्तेदार मिला उसको, पड़ोसी आया घर उसके सामने, बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर हम उस चीज को पक्का कर रहे हैं, उस आत्मा को कितना हम वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं। जितने लोगों को हम उसके बारे में बताएंगे,
1: उन लोगों की भी वाइब्रेशन
0: भी उस आत्मा की तरफ भेज जाएगी। प्रकृति में जो हम कहते हैं वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। अच्छा, अगर आपने चार लोगों को बताया तो वो चार लोग और चार लोगों को बताते हैं। इतने सारी आत्माएं जब उस आत्मा के बारे में ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी, आपको लगता है वो संस्कार चेंज हो सकता है?
1: मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बड़े चक्की का पीसा हुआ बच सकता है, लेकिन ऐसे जो थॉट्स और दांतों का पीसा हुआ कभी नहीं बच सकता है, क्योंकि एक दांत से दूसरे को, दूसरे को, मतलब इतना पहुंचता है।
0: होता क्या है, आप चार लोगों को बताते हैं, चार लोग और चार लोगों को अपनी भाव और भावना मिक्स करके बता देते हैं,
1: और दो चार लाइन और ऐड कर लेते
0: हैं, वही तो भाव और भावना अपनी और ऐड कर दी ना उसमें, क्योंकि नेचुरली दे विल ऐड व्हाट दे फील, फिर वो और दो, बात कुछ थी, बात कुछ और बन जाती है, कहीं ना कहीं उस आत्मा तक पहुंच भी जाती है, वो तो फिर कई बार अनरिपेरेबल डैमेज है, लेकिन वाइब्रेशन भी अगर सिर्फ पहुंच जाए तो उस आत्मा की आपके प्रति थिंकिंग पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती अब इसके बाद, क्योंकि आप निमित्त बने हैं 10 लोगों की नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए।
1: सिस्टर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर जिंदगी में जिसके बारे में इतना मैंने बुरा बोला बोला बोला, हजार लोगों को बोला, वो मेरी लाइफ में या इस जन्म या अगले जन्म में टकरा जाए मुझे, या मेरी पत्नी या पति बन के आए, तो तब मेरा क्या हाल होता होगा?
0: नॉट ओनली चलो अगले जन्म में तो क्या हाल होगा, आप देखो इस जन्म में हमारा क्या हाल है, अभी तो वो आत्मा हमें कुछ नहीं किया, इस जन्म में ही ये करते करते करते हम आज कह रहे हैं मुझे पता नहीं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ।
1: ओके,
0: ये रीजंस हैं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ।
1: शाम को कभी कभी ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाता आदमी,
0: ऐसे ही नहीं हो जाता ना, वो हमने बहुत लीकेज कर दी है। मैं निमित्त बना, एक पत्थर मैंने यहाँ फेंका तो हलचल हुई, मन शांत था, मैंने थॉट एक क्रिएट की, ऐसे है वो, ऐसे है वो, ऐसे करते हैं, हलचल हुई, वाइब्रेशन रेडिएट हुई, फिर मैंने वो पत्थर जाके चार लोगों के मन में भी फेंका, वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उन्होंने भी वैसी क्रिएट की, उन्होंने और चार को दिया, इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद मैं शाम को खुश होऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? आई हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट अशांति इन सो मेनी माइंड्स।
1: ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, एक विक्टिम जो अपने आप को मैं बताता रहता हूँ, बोल बोल के मैं भी वैसे बन ही जाता हूँ, मैं बेचारा,
0: तो मैं बेचारा ही बन जाता हूँ। वो अत्याचार कर रहे हैं मेरे पे, मैं बेचारा, मैंने तो कुछ करना ही नहीं।
1: हाँ, लेकिन मैं कितना कमजोर अपने आप को बोलता जाऊँ तो मैं कमजोर होता जाऊंगा ना। मैं बेचारा हूँ, मैं कमजोर हूँ। जैसे आपने बिगिनिंग में बोला, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, नोबडी कैन टच मी, आई एम शक्ति, वो वाली बात तो खत्म
0: खत्म। लेकिन वो सिर्फ मेरे अंदर नहीं खत्म, वो मैंने अनेकों के अंदर खत्म करके उस बात का मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया।
1: तो व्हाट काइंड ऑफ कार्मिक अकाउंट इज दिस?
0: सो नाउ वी कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप। वन, हमें किसी से भी बात नहीं करनी। अगर किसी एक से बात करनी भी है, एनर्जी और इंटेंशन डिफरेंट है। एनर्जी और इंटेंशन दूसरे को क्रिटिसाइज करने की नहीं, लेकिन किसी के साथ डिस्कस करने की कि वो ऐसा करते हैं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे उनके साथ कैसे काम करना है, मुझे उनके साथ कैसे रहना है। सो द फोकस ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज नॉट टू क्रिटिसाइज समवन एल्स, बट द फोकस ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू वर्क एंड एडजस्ट विद दैट पर्सन। वो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगी।
1: अगर हम किसी साइकाइट्रिस्ट
0: के पास जाके, जनरली हमारी इंटेंशन दूसरे की निंदा करने की होती है
1: 100%, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ निंदा भी करनी है या जो भी मन हल्का करना है तो उससे तो अच्छा साइकाइट्रिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट।
0: मन हल्का होता नहीं ना, लेकिन निंदा करने
1: अच्छा,
0: के बाद
1: का ग्रुप बनता है।
0: मन
1: और
0: हल्का होता नहीं निंदा करने के बाद, मन कई गुणा और भारी हो जाएगा निंदा करने के बाद। मन हल्का सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आप कोई सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये किया ना, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो। यही तो हम साइकाइट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? वो थोड़ी बैठकर किसी की निंदा सुनने वाले हैं हमारे से इतनी देर। वो एक लाइन सुनेंगे, दो बात सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने इसमें क्या करना है। उनका फोकस ये नहीं है कि आप जिस रिश्तेदार के बारे में बताने आए हैं वो सुनेंगे इतनी देर उसके बारे में। वो तुरंत क्या कहेंगे, आपने इसमें क्या करना है। हमारे पास कितने लोग आते हैं, दे वॉन्ट कि वो बताते जाए, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया। व्हाट इज द पॉइंट फॉर अस टू लिसन अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट देयर? वो तो आए नहीं आपके साथ कि हमने उनसे कुछ डिस्कस करना है। तो व्हेन आई नॉर्मली लिसन, आई लिसन फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जैसे अच्छा तो अब हमें क्या करना है। कहते हमें थोड़ी कुछ करना है, वो ऐसे है, उनके बारे में डिस्कस करके
1: वो तो कि उनको बदलो आप।
0: सी, तो हमारी इंटेंशन ही नहीं है कि हमें कुछ चेंज करना है। जब तक वो इंटेंशन नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मन हल्का करना है तो इंटेंशन और एनर्जी मन हल्का करने की होनी चाहिए, और मन हल्का तभी होगा लेट गो। उससे ज्यादा इजी तरीका हो ही नहीं सकता मन को हल्का करने का। तो जैसे आपने कहा, वाइफ से बात की भी तो करना है, लेकिन करना है टू फाइंड अ सोल्यूशन। एंड करने के समय फोकस अपने ऊपर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, रादर देन उन्होंने क्या क्या किया, मुझे इस सिचुएशन में कैसे रहना है, रादर देन वो तो हर टाइम ही ऐसे करते हैं, 2 साल पहले भी ऐसे किया था। एंड व्हाट हैपेंस, हम पास्ट वूंड्स को फिर से खोल देते हैं हर बार डिस्कशन में। हम आज वाली बात नहीं करते सिर्फ, हम बहुत लंबी सारी बातें करते हैं, सारे ग्रूव्स को वापस गहरा कर देते हैं। तो मन हल्का करना है, ये भी एक मंत्र होना चाहिए कि मेरे मन को हल्का रहना है, भारी नहीं रहना। इसीलिए हम पावर टू लेट गो को एक और शब्द भी बोलते हैं, पावर टू पैक अप, कि पैक अप कर दो। और उसका सिंबल एक बहुत प्यारा है कि लगेज को कैसे पैक अप करते हैं। आजकल आप देखो फ्लाइट में हम जाते हैं, पहले 20 kg 25 kg अलाउड था, अब नया रूल बना कि 15 kg अलाउड है। जाते तो फिर भी है, जाते भी उतने दिन के लिए है, लेकिन अब जब हम अपना सामान पैक करते हैं तो एक माइंड में क्लैरिटी रहती है ना कि 15 kg अलाउड है, तो हम ये चीज रखेंगे नहीं, ये नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं, इसके बिना चल जाएगा, ये हो जाएगा इसके बिना। ट्रैवल लाइट, वी नीड टू ट्रैवल लाइट इन लाइफ ऑल्सो। वी आर कैरिंग सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट नीडेड ऑन दिस जर्नी। इतना भारी होकर चलेंगे तो फिर जीवन तो बोझ ही लगेगा ना, इतना बोझ उठाकर चल रहे हैं। परिस्थितियां चैलेंजिंग नहीं है, लोग कहते बहुत चैलेंजेस है, परिस्थिति चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को फेस करने वाला बोझिल होकर चल रहा है। वो इतना बोझ सर पे उठा के चल रहा है, इतने

0: सालों का, कई बार इतने जन्मों का, तो वो एंजॉय कैसे करेगा अपनी जर्नी को? तो अपनी लाइफ का मंत्र ये होना चाहिए, ट्रैवल लाइट, हर रोज जो जो सामान की आवश्यकता नहीं, लेट गो, डिलीट डिलीट डिलीट. दिस इज वेरी पावरफुल. एंड जितना हम लाइट ट्रैवल करेंगे, उसी को तो फिर फरिश्ता और एंजल कहेंगे ना. आपको जो बहनों ने आज कहा कि आपका चेहरा बदल गया, क्यों? आज दुनिया कितनी मेहनत कर रही है अपना चेहरा बदलने के लिए. कितनी मेहनत है, पूरी इंडस्ट्री हो गई है कि कैसे चेहरे को बदलना है.
1: उनको ये नहीं मालूम था मैं लेट गो किया। उन्होंने कहा था कि आप सुबह सुबह नहा धोके फ्रेश, और आज आप डिफरेंट और अच्छे लग रहे हो, बहुत मतलब हैप्पी लग रहे हो ऐसे वक्त।
0: क्योंकि चित से कुछ साफ हुआ है ना, ये बहुत लगती छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है. जितना चित से साफ होता जाएगा, माइंड जितना क्लीन होता जाएगा, चेहरे पे वो निकल कर आएगा. जिसका कहेंगे चेहरे पे नूर है, रूहानियत है, लाइटनेस है, खुशी है, क्योंकि अंदर खुशी है. बाकी अंदर इतना कुछ पकड़ के रखा है, चेहरे पे अलग अलग सर्जरी भी कराएं और अलग अलग मेकअप भी लगाएं, तो भी चेहरे पे वो नूर और वो लाइटनेस नहीं आ सकती है.
1: और ऐसे लाइट बंदे के साथ आप बिना बात के भी खाली बैठने के लिए भी खुश रहते हैं, उसके साथ बैठे रहो बस,
0: वाइब्रेशंस है ना. आप
1: जैसे
0: देखो कुछ
1: महात्मा
0: लोगों
1: होते हैं
0: से
1: साथ।
0: मिलने से
1: हाँ,
0: कितना भारी भारी फील होता है, और कुछ लोगों से मिलने से कितना लाइट फील
1: और
0: होता
1: उन
0: है.
1: लोगों से जिनके साथ लाइट फील करते हो, शब्द भी कम बोलते हैं हम, फिर भी हल्का लगता है। कोई टॉपिक जानबूझ के नहीं छेड़ते हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, बात करने का मन किया तो किया, नहीं किया तो किया, कितना मतलब देयर इज नो, एक बंधन नहीं है एक।
0: क्योंकि दैट सोल जिनसे आप मिलेंगे, या जब अभी आप हैं लाइट फील कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ से ज्यादा कनेक्टेड हैं. आप प्रिटेंशन, आर्टिफिशियलनेस, सुपरफिशियलिटी, जितनी दुनिया में बहुत सुपरफिशियल हो गए हम. आप देखो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मतलब कई बार अननेसेसरी बात करनी है,
1: हाँ,
0: कोई बात है भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बात करना बहुत जरूरी है. लेकिन एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, जो कम्युनिकेशन वाइब्रेशन के थ्रू होता है, वो बातों के थ्रू नहीं होता है.
1: आर्टिफिशियल जो लाइफ आप कह रहे हैं, वो जो एक एक बार आपने एक एपिसोड में कहा था ना, वॉइड, खालीपन को भरने के लिए, वो खालीपन सताता है अगर आप लाइट नहीं हो तो।
0: लेकिन वो जो खालीपन है, वो बातों से नहीं भरेगा कभी भी. आज आप देखो, वो खालीपन को भरने के लिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ, स्टिमुलस की तरफ, अब्यूज, एडिक्शन, सब्सटेंसेस, सब चीजों की तरफ क्यों जा रहे हैं? खालीपन, वो खालीपन को भरना है. वो खालीपन किसी भी बाहर की चीज से नहीं भरेगा. कोई चीज ही नहीं है बाहर जिससे वो खालीपन भर सकता है. वो खालीपन तब भरेगा जो ये भारी चीजें रखी हुई है अपने चित्त पर, इनको हम साफ करते जाएंगे. तो आज सारा दिन में बार बार हमने ये मंत्र करना है, आई एम अ पावरफुल सोल. बार बार बार बार करना है सारा दिन में,
1: ट्रैवल लाइट,
0: आई एम अ पावरफुल सोल. नथिंग कैन इन्फ्लुएंस मी. किसी भी चीज में ताकत नहीं है जो वो मुझे हिला सके. देखो
1: अंगद का पांव,
0: अहंकार में कैसे हम कहते हैं, किसी में ताकत नहीं है जो मुझे कुछ कर सके. बस
1: कोई नहीं हिला सकता है।
0: नहीं कर सकते. तो किसी में ताकत नहीं जो मुझे हिला सके, ये बार बार अपने को कहना है. और फिर उस आत्मा को भी इमर्ज करके, वो आत्मा भी प्योर सोल. फिर आएगा कुछ भी नहीं, लेकिन वो आत्मा भी प्योर सोल. फिर कुछ आएगा, वो आत्मा भी प्योर सोल. ये करते ही जाना है.
1: ये नहीं बोल सकते साथ में उसके भी तो संस्कार
0: नहीं
1: हैं। नहीं,
0: नहीं
1: वो
0: आज
1: ऐसा लगता
0: नहीं
1: है। हाँ,
0: इसमें नहीं.
1: फिर वो होता है कि
0: वो
1: आई एम बिगर देन हर।
0: यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होता है कि उसमें भी संस्कार है ना, ऐसा वो एनर्जी चेंज हो जाती है ना उसमें भी. अब क्या
1: अच्छा,
0: करे.
1: उसको बोलेंगे ही इज अ प्योर सोल, वो भी शक्ति है, वो भी बीइंग शक्ति है,
0: है
1: तो लेट
0: ही
1: मी बी शक्ति
0: वो
1: व्हाट आई
0: है
1: एम।
0: ही. दिस इज सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियसनेस मीन्स आत्मा आत्मा के साथ कनेक्शन. वैसे भी जो हमारा इश्यू आया होगा ना उस व्यक्ति के साथ, वो कोई ना कोई पोजीशन और रिश्ते और लेबल के थ्रू ही आया होगा.
1: करेक्ट,
0: के बच्चा है ऐसे क्यों बात की, बहू है ऐसे क्यों किया,
1: स्टाफ है,
0: पिता
1: ड्राइवर है,
0: है ऐसे क्यों किया मेरे से, वाइफ है ऐसे क्यों बिहेव किया. इट विल ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लेबल और अ रिलेशनशिप. आत्मा है आत्मा है. थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल.
1: आज आपको एक बात और बताऊं कि वो कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से नहीं, मेरे लाइट फील करने से की वजह से आपकी बातें भी ज्यादा समझ आ रही हैं मुझे। और क्लैरिटी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है।
0: मन
1: लेकिन क्या
0: करूँ,
1: अब मेडिटेशन का टाइम हो गया,
0: मन शांत है आज।
1: लेकिन
0: व्हाई दैट कोटेशन विच यू रेड, द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ इज व्हेन यू लेट गो ऑफ समथिंग यू कैन नॉट चेंज। लुक एट वेयर हैप्पीनेस लाइज। हम हैप्पीएस्ट मोमेंट कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? हैप्पीएस्ट मोमेंट इज व्हेन यू लेट गो ऑफ समथिंग यू कैन नॉट चेंज। सो मंत्र ट्रैवल लाइट।
1: चलिए मेडिटेशन करते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।
0: सिट बैक, रिलैक्स। चारों तरफ की परिस्थितियों और बातों से साक्षी होकर बस अपने मन को देखें। मेरा मन एक छोटा सा बच्चा है, इसको मैं प्यार से जो समझाऊं, जो सिखाऊं, वो वैसे ही चलेगा। पुरानी बातें, पिछले दर्द एक घाव की तरह इस पर लगे हुए हैं। ये कई बार रोता है, कई बार चिल्लाता है। इस मन को हील करना ये मुझ आत्मा की ड्यूटी है। प्यार से इसे याद दिलाएं, चाहे कुछ भी हुआ हो, आई एम अ पावरफुल सोल। जो बीत गया इट्स ओवर। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। कोई भी बात, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। दिस इज मी, अ प्योर पावरफुल एनर्जी। ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
2: When we delete the past hurt and image of the person, our mind and intellect is clean. Now we will perceive the person with a new way of thinking and a new behavior. By doing this, we will heal ourselves and heal the relationship by radiating clean, pure vibrations. To heal a relationship, create repeated powerful affirmations. I am a powerful soul. I have the power to remain uninfluenced by their sanskars. I have the power to let go. Today, I am going to interact with a pure soul. We will have a beautiful meeting today. If we keep talking about our negative experiences to people, our inner groove becomes stronger. We become instrument in creating negativity in others' minds, and all this negativity will reach the person we are talking about. This will strengthen their negative sanskar. If we want to share our past pain with someone, the intention should not be to criticize other people. The intention and conversation should be in the direction of preparing ourselves to interact with them in a healthy manner the next time.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on
3: awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्रिय श्रोत्यांनो, आज आपण ऐकली निषद देशाचा राजा नल आणि विदर्भ कन्या दमयंती यांची अमर कथा। संकट कितीही मोठं असलं तरी प्रेम, निष्ठा आणि श्रद्धा याची ताकद सर्वांवर विजय मिळवते हे या कथेतून स्पष्ट होतं। नल दमयंती ही गाथा आपल्याला शिकवते की जीवनात संकटे तात्पुरती असतात, पण विश्वास आणि प्रेम कायम टिकतात। आपल्या जीवनात ही प्रेरणा घेऊन आपण पुढे जाऊया। मी आरजे संजय रेडिओ पुणेरी आवाज वरून तुमचा निरोप घेतो। पुन्हा भेटूया एका नव्या कार्यक्रमात एका नव्या प्रेरणास्वर। आनंदी रहा, आनंदलवटा। चला तर मग ऐकूयात एक सुंदर गीत।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। और आज हम लोग एक ऐसे करियर के बारे में बातें करेंगे जो सम्मानजनक भी है और सेवा प्रदान करियर है। जी हाँ साथियों, मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही सुंदर सम्मानजनक सेवा प्रदान करियर है, दंत चिकित्सा, डेंटिस्ट। जी हाँ साथियों, एक सम्मान और सेवा प्रदान करियर है डेंटिस्ट बनना। जी हाँ साथियों, आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है दांतों की परेशानी झेल रहे हैं, दांतों के अंदर कीड़े लगना, बहुत सारे ऐसे समस्याएं दांतों के साथ हुई है, क्योंकि दांतों को ठीक रखना ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, जिसके कारण आज जगह जगह आप देखेंगे शहरों में गांव में डेंटिस्ट ही जो है क्लिनिक मिलते हैं। दंत चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं जो दांत मसूड़े और जबड़े और मुख्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निदान और उपचार करता है। आज के समय में जहां पर एक हेल्दी टीथ यानी स्वास्थ्य दांत केवल सुंदर मुस्कान का प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसे में दंत चिकित्सक का करियर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है बल्कि सामाजिक सेवा और मानवीय संतोष से भी भरपूर है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग एक अच्छे डेंटिस्ट करियर के बारे में बातें करने वाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी कुछ ही पल में आपके लिए। आप सुना है रिमोट 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं दंत चिकित्सक बनने की योग्यता के बारे में। अब साथियों, एक डेंटिस्ट बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय के साथ पास होना आवश्यक है। इसके बाद NEET यानी नीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में प्रवेश मिलता है। ये कोर्स लगभग 5 वर्षों का होता है।

चार वर्ष की पढ़ाई और एक वर्ष की इंटर्नशिप शामिल होती है। बीडीएस के बाद जो छात्र और अधिक विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं वे एमडीएस मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं। इसमें ऑर्थोडेंटिक्स, ओरल सर्जरी, पीडोडेंटिक्स और बहुत सारे अलग अलग विकल्प, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जैसी कई शाखाएं उपलब्ध है। अब फिर आपकी रुचि के अनुसार आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा एक अच्छे करियर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम लोग अगर समझें तो एक दंत चिकित्सक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है आज के समय में। वे निजी क्लिनिक खोल सकते हैं, सरकारी या निजी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बन सकते हैं या फिर शोध के क्षेत्र में भी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लीमेंटोलॉजी और डिजिटल डेंटिस्ट्री जैसे आधुनिक क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं समाई हुई है। तो आपके लिए क्षेत्र कम नहीं है, क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन आप किस में रुचि रखते हैं उसके ऊपर आप शोध कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा आपको रुचि है उन्हीं चीज़ों को लेकर आप अच्छा जो है शोध कार्य कर सकते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर जीवन कौशल करियर ऑप्शंस कार्यक्रम में डेंटिस्ट करियर के बारे में। तो चलिए, आशा करूंगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट है जो सिर्फ दांतों को इम्प्लांट करते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन वो है, यानी आपके दांत खराब हो जाते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं 70-80 तक पहुंच जाते हैं तो उनके दांत अगर खराब होते हैं तो सारे दांतों को वो इम्प्लांट भी करते हैं। और कुछ जगह पे आप जितनी चाहे उतनी दांत लगा सकते हैं और कुछ जगह पे ऐसा करते हैं कि अगर आपके दांत बहुत ज्यादा खराब है तो पूरे के पूरे एक जो है चेंज कर देते हैं और उसमें नया आपको दांत लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं और कई बार हमारे जो है दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है, तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है और वो चीज़ें समय पर अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है शरीर का हर अंग कितना इम्पोर्टेंट है ये इससे हम समझ सकते हैं। दांतों की सड़न या फिर दांतों की कमी के कारण भी हमारे चेहरे पर मुस्कान कम हो जाती है। तो हमें अगर अपने चेहरे की मुस्कान बढ़ाना है तो दांतों की सफेदी बरकरार रखना, तो इसलिए आज डेंटिस्ट जो है बहुत ज्यादा आपके आसपास में दिखाई दे, क्योंकि इसकी जरूरत आज के समय में बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और 4 से 5 साल अगर आप मेहनत करते हैं पढ़ाई का तो आप लाइफ टाइम के लिए एक अच्छे करियर कौशल को अपना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जहां पर हम डेंटिस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, दंत चिकित्सा। जी हाँ साथियों, एक सफल दंत चिकित्सक बनने के लिए केवल डिग्री की नहीं बल्कि कुछ विशेष कौशल की भी जरूरत होती है। अवश्य जैसे कि मरीजों से अच्छे संवाद की क्षमता। अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, उनके पास अगर आप अच्छे से बात करते हैं, उनको ट्रीट अच्छा करते हैं, तो वो आपके परमानेंट ग्राहक भी बन जाते हैं और साथ ही साथ एक सम्मानजनक जो है भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है धैर्य और संवेदनशील रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दंत चिकित्सा में काफी मशीनरी यूज होती है, तो यहाँ पर धैर्य के साथ आपको काम करना है, संवेदनशीलता आपके अंदर हो। तीसरा हाथों की सफाई और एकाग्रता, क्योंकि मशीन जो है वो स्पीड वाली होती है और बहुत सारे चीजें वायर्स आपके हाथ में होते हैं, प्लस पेशेंट की जो है बहुत ज्यादा निगरानी के साथ देखा जाता है और उन चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। तो हाथों की सफाई और एकाग्रता बहुत जरूरी है और इसके साथ में आती है नवीन तकनीकों को सीखने की इच्छा भी हो और जिससे आपको मरीजों को आसानी से चेक कर सके और उनका इलाज आसानी से कर सके। आखिरी में स्वच्छता और अनुशासन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दांतों की सफाई के साथ साथ आपके आसपास की चीजें भी उतनी ही स्वस्थ स्वच्छ और सुंदर होना बहुत जरूरी है। साथियों यहाँ पर करियर की संभावनाएं जो है बहुत है और एक दंत चिकित्सक के रूप में करियर की संभावनाएं लगातार आज बढ़ती जा रही है। आज लोग मुख्य स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक जागरूक है। शुरुआत में आय सामान्य हो सकती है लेकिन अनुभव और विशेषज्ञता का प्रमाण मिलता है और अपना क्लिनिक स्थापित करने के बाद आय काफी अच्छी हो जाती है। कॉस्मेटिक और इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में तो आय की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं साथियों, आजकल जो है काफी अलग अलग क्षेत्रों में जो है डेंटिस्ट दूर जगहों पर भी रहते हैं तब भी लोग उनके पास जाते हैं। इवन गाँव में भी दांतों के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जिससे ये जागरूकता क्या ही कमाल है कि आज ग्रामीण लोग भी इस दंत चिकित्सा के बारे में जान चुके हैं और वो भी अपने दांतों का इलाज करते हैं। साथियों समाज में दांत चिकित्सा की भूमिका कैसी है? समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेंटिस्ट। वे केवल दांतों का इलाज ही नहीं करते बल्कि लोगों को स्वच्छता, सही खान पान और नियमित जाँच के प्रति जागरूक करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में दंत शिविर लगाए जाते हैं जहां हजारों लोगों को वो मैसेज देते हैं और लोग वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए एक सम्मान का प्रोफेशन है, ये एक अच्छी प्रोफेशन है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर हम कुछ सुंदर कहानियां आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक सफल डेंटिस्ट की कहानी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। डेंटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर ली हमने, अब एक सफल डेंटिस्ट की कहानी भी आपके नाम। यहाँ पर मैं डॉक्टर आरती शर्मा, जो डेंटिस्ट हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर आरती शर्मा की मुस्कान मिशन। जी हाँ साथियों, डॉक्टर आरती शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके गाँव में लोग दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते थे। बीडीएस पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहर में क्लिनिक खोलने का अवसर छोड़कर अपने गांव में ही सेवा करने का निर्णय लिया। शुरुआत में मरीज बहुत कम आते थे, लेकिन डॉक्टर आरती ने हार नहीं मानी और उन्हें इस बात का एहसास भी था, जब लोगों को यह पता चलेगा कुछ लोग ठीक हो जाएंगे तो अपने आप ही दूसरे लोग भी आएंगे। उन्होंने लगातार कंटिन्यू जो है अपने क्लिनिक को चालू रखा और उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को दांत साफ करने की सही विधि बताई और रेगुलर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिविर भी करती रही। महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर भी लगवाए और धीरे धीरे इसके कारण लोगों का भरोसा बढ़ गया डॉक्टर आरती शर्मा पर और आज उनका क्लिनिक न केवल सफल है बल्कि उनके गाँव को स्वास्थ्य मुस्कान गाँव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर आरती मानती हैं कि दंत चिकित्सा केवल पेशा नहीं बल्कि समाज को मुस्कुराने का या मुस्कान देने का माध्यम भी है। तो साथियों, आशा करूंगा डॉक्टर आरती शर्मा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक प्रेरक कहानी है जो हमें एक अच्छा डेंटिस्ट बनने की ओर आकर्षित करती है। तो आइए यहाँ पर जाते जाते एक और सुंदर कहानी आपके लिए, डॉक्टर विवेक मेहता का। जी हाँ साथियों, डॉक्टर विवेक मेहता बचपन से ही तकनीक में रुचि रखते थे और बीडीएस और एमडीएस करने के बाद उन्होंने डिजिटल डेंटिस्ट्री पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने क्लिनिक में 3D स्कैनिंग, लेजर ट्रीटमेंट और दर्द राहित तकनीकों को अपनाया। शुरुआत में लोगों को नई तकनीक पर भरोसा नहीं था, लेकिन बेहतर परिणामों ने सबका मन बदल दिया। आज डॉक्टर विवेक का क्लिनिक आधुनिक दंत चिकित्सा का उदाहरण बन चुका है और देश विदेश से मरीज उनके पास आते हैं। डॉक्टर विवेक का मानना है कि यदि ज्ञान के साथ नवाचार जुड़ जाए तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई जा सकती है। साथियों, डॉक्टर विवेक ने अपनी मेहनत और लगन से नवाचार की राह चुनी और आज सफलता के शिखर पर वो है। चुनौतियां और समाधान। साथियों, हर करियर में कुछ चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन उसके समाधान भी होते हैं। हर करियर की दांत चिकित्सा के पेशे में भी चुनौतियां हैं, जैसे दूसरे पेशे में हैं। शुरुआत में निवेश, मरीजों का भरोसा जीतना और लगातार बदलती तकनीक के साथ काम करना, लेकिन निरंतर सीखने, ईमानदारी से, सेवा भाव से इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर दंत चिकित्सक का करियर उन लोगों के लिए आदर्श है जो विज्ञान, सेवा और सम्मान को एक साथ पाना चाहते हैं। ये पेशा न केवल आर्थिक स्थिति को बनाए रखता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी प्रदान करता है। सही मार्गदर्शन, मेहनत और समर्पण के साथ दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक उज्ज्वल और संतोषजनक भविष्य सुनिश्चित किया जाता है। एक स्वस्थ मुस्कान एक बेहतर जीवन की पहचान और इस मुस्कान के शिल्पकार होते हैं डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। तो साथियों, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर अच्छा बनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए करियर के बारे में बातें करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger. तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: छम छम छम छदि लगे छम छम विद्यालय घम घम छम छम छम छम छम छम
1: मुठिया मुठिया निशा।

मोरिया मूर्खा गोप्या गध्या, मोरिया मूर्खा गोप्या गध्या देते सर्वदम छम छम छम छम छम छम। आई गई छड्डी लगा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओ यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: जैसा अन्न वैसा मन। तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो मनु।
1: हाँ पुराना स्तंभ जी, अपने फोन में ना मैंने बहुत सारे गाने सेव किए हैं, उन्हीं को ना अभी सुनते सुनते आ रही हूँ यहाँ पे।
0: हाँ, और रास्ते में भी अपने एयरफोन को कान में लगाए जोर जोर से संगीत सुन रही होंगी।
1: हाँ बहुत ही मजा आया।
0: शाबाश।
1: और ये शाबाशी किस लिए?
0: अब डांटने से तुम लोग सुनने वाले तो हो नहीं, तो सोचा शाबाशी ही दे दूं। सड़क पर गाने सुनते सुनते चलने और गाड़ी चलाने के लिए।
1: ओ, पर वो एक्चुअली रास्ते में गाने सुनने में मजा आता है ना?
0: और ये मजा कभी कभी सजा भी बन जाता है। रोड सतर्क होकर चलने के लिए है, अपने साथ साथ सड़क पर अन्य लोगों की भी जिंदगी खतरे में डालना सही नहीं। तुमने सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और गाने तो बाद में भी कभी सुन लेना।
1: हाँ बात तो आपकी सही है। सॉरी पुराना स्तंभ जी, अब से ना कभी ऐसा नहीं करूंगी। पर अब संभाजी महाराज की कहानी आगे भी तो सुनाइए।

0: हाँ, तुम्हें बताया था ना कैसे संभाजी ने मराठा साम्राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए युद्ध किए। औरंगजेब की बड़ी सेना भी उन्हें हरा नहीं पाई थी। वे कुशल योद्धा थे, ये तो तुम जान ही गई हो। चलो अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। यसूबाई के वरिष्ठ भ्राता अर्थात संभाजी का बहनोई घाणोजी शिर्के हिंदवी स्वराज्य से बेईमान हो गया। जुल्फिकार खान रायगढ़ पर आक्रमण करने आ रहा है। ये समाचार मिलते ही संभाजी सातारा वाई महाड़ मार्ग से होते हुए रायगढ़ लौटने वाले थे, परंतु मुकर्रब खान कोल्हापुर तक आ पहुंचा।
1: अच्छा,
0: इसलिए संभाजी ने संगमेश्वर मार्ग के चिपलुन खेड़ मार्ग से रायगढ़ जाने का निश्चय किया। संभाजी के स्वयं संगमेश्वर आने की वार्ता आसपास के क्षेत्र में हवा के समान फैल गई। शिर्के के दंगों के कारण उद्ध्वस्त लोग अपने परिवार लेकर संभाजी राजे के पास आने लगे।
1: अच्छा,
0: जनता को परिवार समझकर उनका समाधान करने में उनका समय व्यतीत हो गया एवं संगमेश्वर में 4-5 दिन तक निवास करना पड़ा। उधर राजा को पता चला कि कोल्हापुर से मुकर्रब खान निकलकर आ रहा है।
1: अच्छा,
0: कोल्हापुर से संगमेश्वर की दूरी 90 मील थी और वह भी सह्याद्री की घाटी से व्याप्त कठिन मार्ग था।
1: अच्छा,
0: इसलिए न्यूनतम 8-10 दिन के अंतर वाले संगमेश्वर को बेईमान घाणोजी शिर्के ने मुकर्रब खान को समीप के मार्ग से केवल 4-5 दिन में ही ले आया। संभाजी से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से शिर्के ने बेईमानी की थी और अपनी जागीर हासिल करने के लिए ये कुकर्म किया।
1: अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ?
0: अतः 1 फरवरी 1679 को मुकर्रब खान ने अपनी 3,000 सेना की सहायता से संभाजी को घेर लिया। संगमेश्वर से बहादुरगढ़ की दूरी लगभग 250 मील की है, परंतु मुकर्रब खान ने मराठों के भय से केवल 13 दिनों में ये दूरी पार की एवं 15 फरवरी 1679 को संभाजी तथा कवि कलश को लेकर उसने बहादुरगढ़ में प्रवेश किया।
1: अच्छा,
0: पकड़े गए संभाजी कैसे दिखाई देते हैं ये देखने के लिए मुगल सेना उत्सुक हो गई थी। औरंगजेब की छावनी एक जैसे बड़ा विशाल नगर ही था। छावनी का घेरा 30 मील का था, जिसमें 60 सहस्त्र घोड़े, 4 लाख पैदल, 50 सहस्त्र ऊंट, 3 सहस्त्र हाथी, 250 बाजार पेट और जानवर कुल मिलाकर 7 लाख, अर्थात बहुत बड़ी सेना थी।
1: इतनी बड़ी सेना?
0: इसके पश्चात भी आयु के 24वें से 32वें वर्ष तक संभाजी ने मुगलों की पार्श्विक शक्ति से लड़ाई की और यह योद्धा एक बार भी पराजित न हुआ।
1: वाह, एक बार भी पराजित नहीं हुए थे?
0: संभाजी वास्तव में पकड़े गए ये देख औरंगजेब बहुत आनंदित हुआ। कहते हैं कि जब संभाजी और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो निडर कवि कलश ने ये पंक्तियां कही। यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल रन रंग, जोर विछवि लछत ही खद्योथोत बदरंग, त्यो तुव तेज निहारिते तखत त्यज्यो अवरंग। अर्थात जिस प्रकार रावण की सभा में हनुमान जी को लाया गया था, उसी तरह संभाजी को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित किया गया। जैसे हनुमान जी की देह पर सिंदूर शोभित होता है, वैसे ही भीषण युद्ध में संभाजी राजे की देह रक्त से लहूलुहान थी। औरंगजेब इस हिमाकत से रुष्ट हो गया। औरंगजेब ने संभाजी को जीवित रहने देने के लिए कुछ शर्तें रखी।
1: और वो क्या शर्तें थी?
0: सारे किले जो मराठा साम्राज्य के पास हैं, उन्हें मुगल सल्तनत को दे देना, गुप्त खजानों के बारे में बताना और साथ साथ संभाजी इस्लाम कबूल कर औरंगजेब के लिए काम करे।
1: ओह नो,
0: परंतु छत्रपति संभाजी कहां मानने वाले थे, वो बेड़ियों में बंधे भी अड़िग रहे। इससे क्रोधित औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी और वीर कवि कलश को घोर प्रताड़नाएं प्रताड़ित कर मृत्यु को सौंप देने का कटु निर्णय सुना दिया। इसके बाद संभाजी और कवि कलश को बहुत यातनाएं दी गई। इतिहास खुद भी अपने इन पन्नों पर लज्जित होता है। ये दर्दनाक दृश्य काली घोर अंधियारी रात से भी बदतर और काला था। संभाजी और कवि कलश को इतनी यातनाएं दी गई कि किसी की भी रूह कांप उठे।
1: ओह माय गॉड।
0: परंतु ये दो वीर कभी नहीं झुके। संभाजी और कवि कलश की आंखों में तपती सलाखें घुमाकर उनकी आंखें फोड़ दी गई। तत्पश्चात दोनों की जिह्वाएं भी काट दी गई। उस दिन से दोनों ने अन्न जल का त्याग किया। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष के दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े कर उनके जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु आज भी उनका पराक्रम, धर्म निष्ठा, मराठा साम्राज्य के कुशल संचालन की स्मृतियों और भारत में वीरता की शौर्य गाथा के रूप में हर क्षण जीवित है। तो ऐसे थे हमारे संभाजी महाराज और ये थी उनकी वीर गाथा।
1: संभाजी महाराज ने अंत तक हार नहीं मानी, है ना पुराना स्तंभ जी? सच में मैं भी अपने देश की मिट्टी को मान गई। ऐसे महान आत्माओं को जन्म दिया है इस मिट्टी ने।
0: हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, पर हमने भी तो यही जन्म लिया है ना?
1: हाँ हाँ, मुझे पता है अब आप क्या कहने वाले हैं।
0: अच्छा, क्या कहूँगा?
1: यही कि हमारा फर्ज है अपने शहर, अपने देश की रक्षा करना।
0: हाँ बिल्कुल, पर ये तुम करोगी कैसे?
1: रोड पर गाने न सुन के और गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात न करके देशवासियों की तो रक्षा कर ही सकती हूँ।
0: बिल्कुल सही।
1: थैंक यू पुराना स्तंभ जी, आज की शौर्य और बलिदान से भरपूर कहानी सुनाने के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।

पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक्सपर्ट से चलिए अब सुनते हैं संभाजी महाराज के बारे में कुछ अन्य दिलचस्प बातें।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी,
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के साल भर इसका नशा रहेगा।
1: जो आज मिले मिले, जो आज

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू

0: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं. जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली. घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
2: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी. एक बार आगे बढ़े और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है.
2: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम when we go to work. And nowadays in the offices it is said bring your heart to work. Kyunki ek samay tha jab kaha jata hai ki bring your hands to work sirf, you know, ki yahan par hai intelligence, hum sare ideas denge, top management sare ideas dege, jisko hum pyramid structure kehte the ki jo top ke log hain idea sirf unhi ke honge aur jo lower level par aayenge unko sirf us idea ko implement karna hai. आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क. फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है. और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया, यू नो, लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क. बट देन व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स एंड हेड टू वर्क. अर्लियर वी वर ब्रिंगिंग ओनली हैंड टू वर्क. इट वॉज वेरी सिंपल.

0: एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
1: कई सारे हाथ काम करने वाले,
0: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो करते
1: गए। जरूरत भी शायद वही थी।
0: अब जब सो मेनी हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, यू नो, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे आ गए कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं एज फार एज गिविंग द आइडिया इज कंसर्न। तो जहां इतने सारे हेड्स केम टू वर्क, तो दैट मीन्स हेड अर्थात ईगो, इतने सारे ईगोस केम टू वर्क ऑल्सो, माई आइडिया इज बेटर देन योर आइडिया, या आपका आइडिया क्यों लिया गया, मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया गया, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है। तो जहां सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ईगो प्रॉब्लम कम थी क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आई क्यूज थी, ईगोज थी, वो सारी क्लैश होने लग गई। और जहां इतनी सारी ईगोज क्लैश होने लग गई, तब प्रॉब्लम्स आने लग गई। और फिर हम काम तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो। हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट टू वर्क। क्योंकि हार्ट टू वर्क से क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज, आपकी ईगो सिर्फ नहीं, लेकिन बिलोंगिंगनेस। हार्ट जहाँ है अर्थात क्या, कि बिलोंगिंगनेस है।
1: दिस इज योर ऑफिस।
0: हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं।
1: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए।
0: जहां तक अटैचमेंट की बात आती, तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में। बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस, बट अटैचमेंट इज टू माई इमेज, अटैचमेंट इज टू माई आइडिया। आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है। आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजिशन से ना हो, अपने आइडिया से तो है। मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर। आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज। तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई। अगेन, अटैचमेंट वो जहाँ दर्द है, और बिलोंगिंगनेस वो जहाँ प्यार है लेकिन दर्द
1: नहीं है। और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, वो मुझसे ही रिलेटेड थे।
0: बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट ही है ना। यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा है। इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे? सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे? अटैचमेंट्स। और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए? क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है। बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है, वैसे ये भी मेरा परिवार है। है तो परिवार ही ना। और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं। अब के समय पर जो हम चल रहे हैं, तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने नहीं जाते हैं। यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8:30 बजे हम निकल जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है। तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। तो वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना।
1: वहाँ तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ। वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है। अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे।
0: तो ये डर यहाँ है, ये डर हमें है। क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते जाइए। ऑफिस और घर में क्या फर्क है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है। बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता है, व्हाट विल आई डू?
1: सारी जगह फैलाया जाए।
0: नाउ दैट इज द डिफरेंस, क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई था और ये नहीं है, तो देयर द एटीट्यूड विल बी उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हर एक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो, ये सब किस लिए? बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, ही वॉज माई फैमिली मेंबर, डिफरेंस। यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की, इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन ऑल्सो पुलिंग हिम डाउन, ये गलती की, तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी, तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज व्हाटएवर, गलती की, हेल्प द पर्सन आउट एंड जस्ट कीप इट बिटवीन द टू पीपल, क्या होगा उस रिलेशनशिप में? दिस इज कोऑपरेशन, वो था कॉम्पिटिशन। अब ये जो अगर हमने कर लिया एक बार कि किसी ने गलती की और हमने उसको किसी को नहीं बताया, बिल्कुल किसी को नहीं बताया, जहां तक जरूरत नहीं है रिपोर्ट नहीं की उसकी, और उसको सिखा कर समझा कर सॉर्ट आउट करके बिल्कुल उसको भी हल्का कर दिया, वट यू हैव अ फैमिली मेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट टिल यू आर ओनली इन दैट ऑफिस, यू हैव अ फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट वी डोंट वॉन्ट टू बिल्ड दीज रिलेशनशिप्स बिकॉज वी आर इन दैट बिलीफ सिस्टम, सबको पीछे गिराना है और खुद आगे भागता जाना है। तो अगर ऑफिस में वो जो लोग हैं उनको भी परिवार की तरह भी नहीं, परिवार ही, दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय ऑफिस, दिस इज माय होम, तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे
1: दूसरे परिवार में,
0: दूसरे घर में पहुंच जाएंगे, एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं, एंड मंडे मॉर्निंग You will look forward to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait ki pura office kab aisa ban jayega. No, kyunki wo hone nahi wala. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Wo chahe junior most vyakti ho us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
1: Actually, I can feel the, you know, vibrations. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा attitude, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने office में enter करेंगे।
0: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, यू नो दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं। कोई भी चीज अगर आप इंजॉय करते हैं कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो हल्का कितना लगता है, क्योंकि आप
1: घर पे भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
0: बिल्कुल नहीं लगता, तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है, ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है जब तक वो पिया, चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए, दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन, हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा, तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं, लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है, ना, इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट, नाउ माय चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ, तो टुमारो व्हेन आई गो बैक टू वर्क लेट मी गो बाय दिस थॉट आई एम गोइंग टू माय फैमिली,
1: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
0: इट्स ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
1: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम,
0: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है, सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड, एक ऑरा तो है हर एक का। तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है। तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं। अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
1: मुझ तक नहीं पहुंच
0: रहा, आई एम स्टेबल, आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए, मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ, अब आप मुझे ओवरपावर नहीं कर सकते। तो आप यहाँ नेगेटिव हैं लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी, ये सेकंड स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज थी मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपकी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवरपावर किया। सेकंड स्टेज आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल, नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माय सेल्फ, लीकेज नहीं होने दो सारा दिन। थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी,
1: मेरी आप तक पहुंचेगी, आई ओवरपावर यू,
0: एब्सोल्युटली माय पॉजिटिविटी आपको ओवरपावर करेगी और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है। नाउ व्हाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी, इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी।
1: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं internally or outer, both should be same in sync.
0: Here we are talking only of inner.
1: हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा आस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ ऐसा चलता
0: है। हम एक ऑफिस के ग्रुप में, एक कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए, तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट एंड देन दे सेड फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे, यू नो, एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं उसकी तो लेवल
1: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट,
0: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे। इफ आई चेंज
1: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली, बहुत
0: ओनली इंटरनली, क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए, वो कैसे निकलेगा, यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर, अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए, तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली, लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत
1: के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो, ये माइंडसेट दिमाग में आते ही कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा, यू नो, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी, तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, यू नो, हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वांट टू लीव, आई डोंट वांट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती,
0: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना। देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में, गुस्से में, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है, कोई नहीं जाता। अगले दिन वापस वही, उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ पे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल लेती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस। व्हाई, इट्स ओके, सी कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर, लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है, और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है।
1: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव,
0: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना, तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी है,
1: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माय रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माय रिलेशनशिप टू द ऑफिस, यू नो, माय बिलोंगिंग.

0: फीलिंग कि आई बिलोंग टू दैट ऑफिस, अगर ये माइंडसेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
1: अगेन आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मोटिवेशन या अप्रिसिएशन ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे? उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतना घिरा हुआ है. लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा काम अच्छा नहीं. लेकिन अगर मैंने उसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अब ये रिलेशनशिप है, अ जूनियर एंड अ सीनियर लेट्स से, एंड घर में एक फादर एंड अ चाइल्ड. ओके, अगर एक बच्चा घर में समझ सकता है कि मे भी मेरे पापा किसी बात से परेशान हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसके मन में कंपैशन है, गुस्सा नहीं आएगा कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, कोई बात नहीं मैं कल डिस्कस कर लूंगा. Why can a junior not think the same thing about his senior? कि maybe he is upset about something. वो किसी और conflict में है. क्या बात है जो उन्होंने recognize ही नहीं किया मैंने ये किया. क्या होगा उससे? Immediately आपके यहाँ से एक positive vibration जाएगी. अभी क्या था? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं किया? जान के खींचने चाहिए ये. हाँ, मुझे आगे नहीं. क्या गया?
0: खुद डर गए हैं. सबसे बड़ी बात खुद इनसिक्योर है क्योंकि मैं ज्यादा हूँ. तो हो सकता है आप ज्यादा.
1: दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट. लेकिन ऑफ कोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपनी घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब्ड है. वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबियत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर हैं, और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है. तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा? डू यू थिंक इट वॉज ओके? आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था. वेन विल आई डू दिस? इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू. लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट. तो उससे क्या होगा? हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विड्रॉ हो जाते हैं. अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क. व्हाट इज द चॉइस? क्योंकि आपकी विशेषता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है. और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर. आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं. तो फिर मुझे क्या होना चाहिए?
0: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
1: अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी. आई हैव टू रियली रियली टेक केयर. सी दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट इज हैपनिंग, कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवरपावर हो रही है. ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो.

0: जाए, इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया होता गया होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों. तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी, जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई एंड नाउ ही सिक्योर. अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ, इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई. तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी, एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया, किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा. आई गेव इन, आई यू नो आई गेव इन टू दैट पावर. दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया. अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन, वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है. तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा?
1: मैं खुद.
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन. व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट? जब मेरे को ये समझ में आ जाए, आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एम आई हैप्पी विद इट?
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है. जहां पावर ही खत्म हो जाती है, तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर पीछे जाना शुरू कर देते हैं. आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे. एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब, लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट, लर्निंग, वर्किंग हार्ड, गोइंग ऑन, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा. लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता. ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ. तो उसको गिव अप नहीं करे. इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं. लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं. सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है. सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड.
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ न्यू, रियल न्यू डायमेंशन. शिवानी, अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर. हम ये सोचते थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए? लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है, तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में. अब इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान ले कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी. जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज. अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए, एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति स्टूडियो @gmail.com. वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंदित
1: विद ब्रह्मा कुमारीज। इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई, आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे इस सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की। क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन? क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है? किसी ना किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या।
3: यह शब्द में ही वह क्या है, समाया डिप्रेस्ड, किसी को दबाना, नीचा करना। तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि सचमुच डिप्रेस्ड है।
1: जी बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल ही कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहाँ हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
2: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इनेट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर इन आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नजर आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं या वहां से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी है वो स्टेजेस।
3: सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज्यादा नहीं हो रही है। फिर भी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा समय 1-2 घंटा अच्छा लगता है, फिर से 2 घंटा में निराश हो रहा हूं या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि भाई वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, इसी स्टेज वो लंबी चलती है कि दिन में देखो 8 घंटा भी इसी स्टेज चली, 3-4 घंटे आपको अच्छा लगा। और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है सदा के लिए, अच्छा नहीं लगता। जो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहाँ होता है अधिकतर, साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो ना, तो जो आगे की स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया कि हमारे जीवन का हिस्सा है।
2: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है?
3: नहीं, शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि भी थर्ड स्टेज,
1: कभी खुशी कभी गम वाली
3: स्टेज, तब शुरुआत हो गई आपके केमिकल इंबैलेंस।
2: तो मेजोरिटी इसका मतलब देन
1: दिस इज अगेन अ मिथ ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं, ये स्टेज तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं।
3: सचमुच हो सकती है, आज राजयोग भी यही सिखा
1: नहीं, बिल्कुल ये एक इतनी बड़ी गलत फहमी है जिसे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ की जो बात की जाती है टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज या फिर ये कोई और स्टेज?
3: वो ही स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञ होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरल भी आएगी। अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख, मैं जो आत्मा हूं वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूं, नहीं वो एक मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरा एक स्वभाव है,
2: इनहेरेंट कुछ चीज है जो इनहेरेंट है। अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे।
3: हाँ जी,
2: अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, सो इट इज इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी। अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनहेरेंट है, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए, लेकिन वो भूल गई है। जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए, माई नेचुरल नेचर कैन नॉट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई एम इम्यून या आई डोंट कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं,
1: मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीजों को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हमने उस दिन एंजॉयमेंट और सुख की बात की, एक्साइटमेंट की बात की थी और कहीं ना कहीं इधर यू नो इनर्ट जो है
2: और हर्ट और कंपैशन,
1: या
2: दोनों एक है, हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं,
1: उसकी ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकल
2: और ज्यादा अच्छी तरह से।
3: एक बात बहुत अच्छी याद है, जब कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है, तो नहीं कंप्लेन मेरी सास ऐसी ये है ये कर रही है, तो मैं उनको सब हमेशा ये कहता हूँ दो काम करो, देखो एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय अदर थिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग आल्सो व्हाट शी इज डूइंग,
1: एंजॉय द म्यूजिक ऑफ व्हाट शी इज सेइंग,
3: व्हाट टिक टिक करती है ना, कहते हैं आके सारा दिन टिक टिक करती रहती है।
2: बट वन थॉट विच आई हैड जो कहा कि केमिकल इम्बैलेंस, तो इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं?
3: दोनों सही है।
1: ओके,
3: अधिकतर तो ये कहेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अभी दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अचानक डाउन फील कर रहा है, अचानक डिप्रेस्ड हो जा रहा है, तो वहाँ कहेंगे कि भी प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बेलेंस का रोल है।
1: ओके,
2: और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
3: या तो उसके लिए मुश्किल होगा भी उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने के लिए ज्यादा मेहनत करना। जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना।
1: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद, उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया?
3: हाँ जी, नहीं बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ। कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही पड़ा रहो, कोई बीमारी नहीं है, और एक जो बात देखी गई कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा, ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं
4: फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है,
1: लेकिन एक दिन करे तो चलेगा ना? जी, अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब, एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी,
4: एक दिन ठीक है तो भी, इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते हैं आराम से मिल साढ़े
2: रूटीन से ब्रेक करने के,
1: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार,
4: वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे। एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वांट टू जस्ट लेट गो थिंग्स, परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता, नहीं अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है।
1: कहीं ना कहीं सोना भी जुड़ा हुआ होता है, नींद
4: एक पिक्यूलियर है डिप्रेशन में, जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4-5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4, 4:30 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है, और साथ में और भी सिम्टम्स है, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट, और यहाँ और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप,
1: अच्छा ज्यादा सोना
4: भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है अभी भी सो जाऊं, दैट एक्सेस ऑफ स्लीप आल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना, कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, पल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं, अगर प्लानिंग की शुरुआत होगी तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन। एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड।
1: यहां ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी, और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात को?
4: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ही देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं उसको ब्लेम करते हैं कि भी आलसी हो गया।
1: एक ईमेल भी हमारे पास आया है सुधा शिवानी डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज कि शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है? तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
4: काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सिम्टम्स है यहाँ।
1: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज हो जाना,
4: अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन 1 मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
1: नहीं, शी सेज कि 10th में शी वाज अ टॉपर बट 11th तक आते आते शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट,
4: एंड इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, की जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
1: तो ऐसे
4: भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए।
1: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती है अपनी बेटी की?
4: एक तो अभी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कहीं बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जैसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो ये भी सोच ड्रग्स लेने लगे, नहीं सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी, और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
1: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं, स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
2: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर,
1: हाँ, if she can talk.
2: मदर अगर बात करती है, एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: रोल। एक्चुअली पर जिस एज की बात कर रहे हैं उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है।
2: ट्रू,
1: मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही है, तो वो
4: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन डेफिनेटली, एंड दे शुड बी रियली प्रोफेशनल इनफैक्ट, ना आज ना काउंसिलर, एनीबॉडी कैन बी अ काउंसिलर।
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
4: इस प्रकार के स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर आल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना।
1: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है,
2: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं। यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज, स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन।
1: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
2: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही है। एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहां हम अपने डिसीशंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते। ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं। दिस इज दैट पीरियड जहां आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन जस्ट वे यू अवे एंड आपको वो तरफ फिर ले जाता है।
4: सिवन इवन मैं के बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि वे सब कुछ दे देते, पैसा दे
2: बहुत ज्यादा,
4: टाइम,
1: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए, बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें, दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उनके कहते ही तो मिल जाती है चीज़,
4: हाँ वो चीजें मिल जाती है।
2: लेकिन जो डॉक्टर साहब ने
4: बता रहा हूँ, मेरी एक सचमुच राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम एक घंटा रोज दो,
2: और अपने लिए भी,
4: अपने लिए तो देना ही है, अपने लिए देना है लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है।
1: एक्चुअली ये पूरा सफर जो हम तय कर रहे हैं उसमें एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा,
2: हाँ, क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए। बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए।
4: जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते, इनर डेवलपमेंट, ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी।
1: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा है आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है। तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहां भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहां का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहां जा रही है, तो इसका क्या आगे आस्पेक्ट नजर आ रहा है?
4: आपने कहा तो ये बात मुझे याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है कि भले पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी।
1: बहुत इम्पोर्टेंट
4: तो
1: है,
4: सभी को यह देखना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर जो रूलर्स है वही यह सोचे कि भी पर कैपिटा हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना।
1: लेकिन अगर हम वहां देखें तो वहां अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी या इस तरह का पूरा का पूरा आस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है। क्यों?
4: नो, पर फिर भी है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है। सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो। परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है, लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए।
1: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, की डिप्रेशन के उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे।
4: हाँ जी,
1: हर वर्ग में हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है। केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाले स्टेज पर थे, कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे, लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है, स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी। आज उस सिवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम। अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, कई बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पे उतर आते हैं। सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
4: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए। अभी सूरत में ही हुआ था कि भी थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर, सारा परिवार खत्म हो गया।
1: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है, पूरी तरह से बात
2: होपलेसनेस आ गई है ना। तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया, और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
4: इसमें। तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकता है शुरू में, जैसे नहीं बढ़ आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको। नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले मैं देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया, दे वर डिप्रेस्ड। हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ कि माँ ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली।
1: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी। तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त।
2: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकाले। एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
1: और ये भी कि दूसरों का भी हम ले ले।
2: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन। आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, आई माई, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए, तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी, तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है? आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वी विल बी एबल टू चेंज इट, वी विल डेफिनेटली।
1: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम। एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हमें से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को कि चार घंटे अगर मैं खुश हूँ तो चार घंटे दुखी हो भी जाता हूँ, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूँ, तरीका ढूंढ लेता
2: हूँ, क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को। लेकिन जहां वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो चार घंटे नहीं चार मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज। अगर वो बाहर तक था तो वो चार घंटे आ जाएगा, कल आठ घंटे आएगा। When it's inside, then I can change faster.
1: बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को अगर हम समझ लें, इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो चार घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि वॉट आई वॉन्ट, यू नो, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी। एक वो स्टेज डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है,
4: हाँ,
1: जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, वो एक किसी की बात आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता?
4: तो दो चीजें हैं, जो शिवानी बेन ने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। और भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस, दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी।
1: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है?
4: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में, सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की। उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे युंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई। ऐसे ही दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी, परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। और इस पर अमरीका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। और ये देखा गया कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है, कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है। एंड दैट्स इन पावरफुल रिसर्च।
1: तो बिल्कुल, अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में जरूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो उन इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है, किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नटशेल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है

0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह
1: अरे ना ना ना ना ना
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: किसी की एक लाइन मेरी मन फीलिंग्स वर्ड्स एक्शन रिलेशनशिप एंड बॉडी छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: बाबा पृथ्वी सिंह आजाद गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। गदर लहर को शुरू करने और उसके माध्यम से समूचे देश को आंदोलित करने के जुर्म में अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में कालापानी की सजा में तब्दील कर दिया गया। अंडमान जेल में कालापानी की सजा के दौरान उन्हें कई यंत्रणाएं दी गईं, मगर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। बाद में जब उन्हें अंडमान से नागपुर जेल लाया जा रहा था तो वे पुलिस के चंगुल से भाग निकले और 16 सालों तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 1938 में स्वेच्छा से गांधी जी की पहल पर उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बाद में एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्हें छोड़ दिया।

किया गया। वे 20वीं सदी की शुरुआत में देशकाल के लिए समर्पित हुए थे और सदी के अंत तक देश सेवा की खातिर सक्रिय बने रहे। उनके जीवन कथा में थकान और विश्राम नहीं, केवल चलते रहने की व्याकुल लालसा, अन्याय का विरोध करने के लिए मर मिटने की उमंग और अनुध्यात लक्ष्य पर दृष्टि बांधे रखने का दृढ़ संकल्प था।

0: क्या जल्दी से
1: अरे गजबी दादा, अरे हमारी चाय का क्या हुआ, बहुत देर हो गई।
2: हाँ, आ रही है बेटा, थोड़ा इंतजार करो।
3: अरे दादा, और ये कौन सा चैनल लगा दिया, अपुन का चैनल लगाओ ना, ये रोतला गीत नहीं सुनने का।
1: हाँ दादा।
2: अरे बेटा, तुम जिस गीत को रोतला बता रहे हो उसी में जिंदगी का फलसफा भरा है।
3: अच्छा माना फलसफा है पर एंटरटेनमेंट होने का, क्या समझे काका।
1: और वैसे भी दादा, आज मूड अपुन का मस्ती का है।
2: क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, अरे चेहरे से भी बहुत खुशी फूट रही है।
1: अरे दादा, बात तो खुशी की है, रातों रात करोड़पति बनने का फार्मूला जो मिल गया अब उनको।
2: भगवान की दया से अच्छे खासे खाते पीते घर के हो, क्या कमी है जो रातों रात करोड़पति बनने की सोच रहे हो।
1: अरे पैसा दादा, पैसा, आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है इस दुनिया में।
2: हम तो ये जानते हैं बेटा कि रातों रात करोड़पति बिना 420 के नहीं बना जा सकता। और तुम्हारी सुनने के बाद हमें बाबा की बात याद आ गई।
3: कौन बाबा, कोई साधु थे क्या?
2: तुमने तो शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे।
1: क्रांतिकारी? आप उनकी जरूर हमें कोई कहानी सुनाइए ना।
2: हाँ तो सुनो।
1: हाँ सुनाओ।
3: हाँ सुनो।
2: बाबा का पूरा नाम है बाबा पृथ्वी सिंह आजाद।
1: बाबा पृथ्वी सिंह आजाद?
2: आजाद के संपर्क में आने के बाद पृथ्वी सिंह ने अपने नाम के साथ आजाद जोड़ लिया।
1: अच्छा।
2: हाँ तो हम ये बात याद कर रहे थे कि हाँ, उन्होंने अपने अंतिम दिन में आजादी मिलने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था,
4: आज इतने वर्षों बाद मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि आज देश के नौजवानों में अगर कोई भाव भरना है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, कि इंसान इंसानियत की राह पर चले जी, एक दूसरे का विश्वास पात्र बने, एक दूसरे के प्रेम पात्र बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। जहाँ तक धन की बात है, वो 400 बीसी के मार्ग पर जाने के बगैर नहीं मिलता। आज देश के सामने नौजवानों को तपस्वी बन के आने की जरूरत है, वही देश को बचा सकते हैं।
2: तो बेटा तुमने सुना बाबा का संदेश, उनने नौजवानों से क्या उम्मीद बांध रखी थी।
1: दादा, उन्होंने तो नौजवानों से बहुत उम्मीद बांध के रखी थी, पर बाबा के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: हाँ हाँ दादा बताइए ना।
2: तो सुनो, बाबा पंजाब के पटियाला जिले के लालडू गांव में पैदा हुए थे।
1: अच्छा, लालडू में।
2: उनकी जन्मतिथि 15 सितंबर 1892 को बताई गई। उनके पूर्वज जैसलमेर राजस्थान के विस्थापित राजपूत रहे।
1: अच्छा।
2: पर बाबा का बचपन बर्मा में बीता। उनके पिता रोजगार के लिए बर्मा चले गए थे तो वहीं बस गए।
1: तब तो बर्मा भारत का हिस्सा रहा होगा ना।
2: हाँ बेटा, कोई 1907 या 1908 का समय था।
1: अच्छा।
2: सारे भारत में तब देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर लिए गए और लाला लाजपत राय सरदार अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया गया।
1: अच्छा।
2: उन दिनों की बात है, पृथ्वी सिंह जब ठाकुरवाड़ी से मत्था टेक के लौटे तो पिता से बोले,
4: बापू जी, मैंने यहाँ बर्मा में नहीं रहना, मुझे अपनी जन्मभूमि पंजाब जाना है।
5: अरे लाले, अचानक तेरे को अपनी जन्मभूमि की याद कहाँ से आ गई?
4: ओ जी, वो क्या है कि वहाँ देश की आजादी नाल इतना कुछ हो रहा है, मैंने भी कुछ करना है, बस मैंने कह दिया मुझे जी पंजाब जाना है।
5: अरे यहाँ जो इतना कारोबार है, काम है, उसे संभालने के देना है, तो कहता जन्मभूमि पंजाब जाना है। अरे आखिर तेरे हुआ क्या है?
4: ओ बाबू जी, मैंने अभी ठाकुरवाड़ी में रामायण सुनी।
5: हाँ।
4: वो लंका जीतने के बाद रामचंद्र जी से जब सोने की लंका पे राजकरण की बात कही ना। हाँ। तो जानते हैं क्या कहा उसने?
5: क्या कहा?
4: कहा मेरी अयोध्या मुझे सोने से भी ज्यादा प्यारी है, मैं अपनी मातृभूमि जाऊंगा, उसे स्वर्ग बनाऊंगा। सो बाबू जी, मुझे भी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वास्ते पंजाब जाना है।
1: तो गजबी दादा, क्या पृथ्वी सिंह पंजाब लौटे?
2: हाँ, पृथ्वी सिंह पंजाब लौटे तो, पर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें, कैसे करें।
1: अच्छा,
2: वहाँ आर्य समाज का बोलबाला था। वे उपदेश के द्वारा, अपने गाने के द्वारा देश प्रेम का प्रचार करते रहे।
1: अच्छा,
2: बाबा उन सबसे प्रभावित थे, पर अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें, सो फिर लौट के बर्मा आ गए।
3: अच्छा दादा, उस समय बाबा की उम्र क्या थी?
2: ये कोई 15 साल की। बर्मा में तब तक हालात बदल गए थे। पिता को कारोबार में नुकसान हो गया था। पृथ्वी ने नौकरी करने की सोची।
4: बाबूजी,
5: बोलो।
4: वो किया कि जी, अपने कई साथी पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। मेरे मजबूत अट्टे कट्टे बदन को देख के पुलिस अफसर भी मुझ में भर्ती करना चाहते हैं जी। सोचता हूँ मैंने भी भर्ती हो जाने चाहिए।
5: अरे नहीं नहीं नहीं लाले, नहीं, पुलिस की नौकरी सही नहीं है।
4: क्यों बापू?
5: अरे वो मैंने पता है किस किस तरह से रिश्वत ले ले के आदमी ने पते तो हो जाना है। तुम चाहे के भी सदाचारी नहीं रह सकते। नहीं नहीं लाले, नहीं, पुलिस में भर्ती होके तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है।
4: बापू ठीक है जी, आपकी बात मैंने समझ आ गई है जी, मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा।
2: बात आई गई हो गई, पर पृथ्वी के मन को चैन नहीं मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या और कैसे करें। लो बेटा, तुम्हारी चाय आ गई। सुनो, ये चाय आए रख के 3 समोसे वहां लगा दे।
3: हाँ दादा, सुनाओ ना।
2: तो मैं कह रहा था कि पृथ्वी बहुत बेचैन थे।
1: अच्छा,
2: कुछ काम में मन नहीं लग रहा था। तभी पता चला अमेरिका में बहुत हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे हैं।
1: अच्छा,
2: पृथ्वी को राह मिल गई, 100 रुपए जुगाड़े और अमेरिका के लिए चल पड़ा बिना बापू को बताए।
3: अकेले ही, बिना किसी साथी के?
2: हाँ, मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून जो था, बर्मा से रंगून, रंगून से पिनांग, पिनांग से सिंगापुर और फिर हांगकांग।
1: इतनी लंबी यात्रा, तो दादा फिर वो हांगकांग कब पहुंचे?
2: सन 1911 में।
1: अच्छा,
2: वहाँ उनकी मुलाकात लाहौर के कुछ नौजवानों से हुई।
0: अजी तुसी हिंदुस्तानी हो जी?
4: आहो जी।
0: अजी हम सब लाहौर से हैं।
4: असी पटियाला से। ओए होए, इधर कैसे?
0: अजी अमेरिका जा रहे हैं। अजी तुमने देखा वो माचू डायनेस्टी के खिलाफ चीन की धरती पे जो इनकलाब हुआ जी?
4: हाँ देखा। ओ जी, किस तरह एक रात में डॉक्टर सन्यात सेन के कहने पे चीन के सभी मर्दों ने गुलामी की निशानी अपने लंबे लंबे वालों की चोटियां काट भेगी जी। केवल एक रात भर में सारे चीन में चौराहों पर लंबे लंबे वालों के ढेर लग गए।
0: ओ जी, ऐसे ही जज्बात हम हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भरना चाह रहे हैं जी।
4: तो असी भी चाह रहे हैं, पर चाहने भरने से क्या होता है जी?
0: ओ जी, इसी वास्ते हम अमेरिका जा रहे हैं। उत्थे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई जी। उनके कार्यक्रम ऑरेगन स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट और कनाडा सभी जगह चल रहा है जी।
4: अच्छा?
0: हाँ जी, हम भी उसमें शामिल होना चाह रहे हैं जी।
4: ओ जी, फिर तो असी भी तुम्हारे साथ अमेरिका चल रहे हैं। ओए अमेरिका, मैं आ रहा हूँ। ओए सुना।
2: और इस तरह पृथ्वी सिंह, बलवंत सिंह और प्यारा लाल आदि की सहायता से अमरीका जा पहुंचा और लाला हरदयाल की गदर पार्टी में काम करने लगा। अमरीका के रास्ते में मनीला, फिलीपींस, आइलैंड में उन्होंने नौजवानों द्वारा अमरीका के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को भी देखा।
1: अच्छा,
2: उनके मन में देश प्रेम की आग और बढ़ गई।
1: तो अमरीका में गदर पार्टी ने उन्हें कौन सा काम सौंपा था?
2: गदर पार्टी ने एक प्रेस चला के गदर अखबार निकालने की योजना बनाई थी।
1: अखबार का नाम ही गदर था।
2: इस अखबार की सारी बागडोर पृथ्वी सिंह को दे दी गई। उनने बड़ी कुशलता से अखबार चलाया, साथ ही कैलिफोर्निया में योगांतर आश्रम की स्थापना की।
1: अच्छा,
2: उनकी एक ही योजना थी कि हिंदुस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, देश के लिए संगठित हो और भारत में इनकलाब करे।
3: अरे वाह। अच्छा दादा, तो अमेरिका में बाबा कब तक काम करते रहे?
2: पहला विश्व युद्ध शुरू होने तक।
6: विश्व युद्ध शुरू होने पर गदर पार्टी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है, गदर पार्टी के लोग हिंदुस्तान जाके अंग्रेजी राज को खत्म करें, हिंदुस्तानी फौज तैयार करें। आखिर 24 अगस्त 1914 को गदर पार्टी के चुने गए 150 लोग के संग पृथ्वी सिंह प्रिंस कोरिया जहाज से हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े।
1: अच्छा, फिर प्रिंस कोरिया जहाज से बाबा हिंदुस्तान कब पहुंच गए होंगे?
6: प्रिंस कोरिया जहाज तो हांगकांग में ही खत्म हो गया।
1: अच्छा,
6: वहां से वो लोग टोसामारू जहाज से हिंदुस्तान आए।
1: अच्छा,
6: नवंबर 1914 की बात है, लुधियाना के पास लोडोवांग स्टेशन पर क्रांतिकारियों की बैठक में जब पृथ्वी सिंह पहुंचे तो झांसी के पंडित परमानंद ने, जो अमेरिका से उनके साथ ही चल रहे थे, उनसे पूछा,
7: पृथ्वी सिंह जी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? टोसामारू जहाज से उतरने वाले सभी साथी तो कलकत्ता ही में पकड़ लिए गए थे।
8: ओ जी, वैसे ही पहुँचे जैसे आप। जी, हुआ यूँ कि जगत राम जी तो जहाज से ही भेष बदल कर निकले थे और आपने पुरभैये की बाल्टी उठाकर पुरभैया होने का नाटक किया, सो आप दोनों तो बच के निकल गए जी। हम पूरे सूट बूट में थे, सोचा किसी को शक नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ पकड़ा गए जी।
7: अब फिर क्या हुआ?
8: अब फिर सबका नाम लिख लिख हमें गोरखा फौजियों की निगरानी में पंजाब जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी विंडसर स्टेशन पर जब रुकी तो एक नया फौजी अफसर एक सूची लेकर आया और एक एक करके जी उन लोगों का नाम पुकार कर नीचे उतारने लगा जो क्रांतिकारी नहीं थे, उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत थी। पहला ही नाम उसने नत्था सिंह का पुकारा, वो सो रहा था, मैं तेजी से नीचे उतरा और भीड़ में खो गया जी, और अम्बाला अपने साथियों के पास जा पहुंचा।
6: पर शांति पृथ्वी सिंह के भाग में कहां लिखी थी?
1: क्यों?
6: वो 8 दिसंबर का दिन था, पृथ्वी अम्बाला के एक बोर्डिंग हाउस में बैठे थे, तभी उनकी राजपूत जाति के दूर के रिश्तेदार सरदार निहाल सिंह आए।
1: अच्छा, अरे प्रदीप पुत्र, की हाल है? बड़े दिनों बाद दिखे।
8: सत श्रीकाल जी, बैठे, खुशी हुई मिलके।
1: सुनाए, तुसे अमेरिका होके आए हो?
8: हाँ, ओरेगन होके आया हूँ, एग्रीकल्चर सीखने गया सी।
1: अरे वाह पुत्र वाह, यहाँ मैं भी एक एग्रीकल्चर फार्म चला रहा हूँ, शाम को तुम्हें ले चलूंगा, देख के अपनी राय देना। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, थोड़ा काम है, शाम को आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, शाम को चलेंगे? अच्छा, अभी चलता हूँ।
8: गया मंजीते, ये निहाल सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों की वफादारी के कारण ही इसे सरदार बहादुर सिंह का खिताब मिला हुआ है। पता है ये पुलिस स्टेशन क्यों गया है? मेरे बारे में खबर देने वास्ते। देखना, शाम को पुलिस के साथ आवेगा।
5: फिर तूने क्या सोचा?
8: सोचना की है, यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा, सोचना ये है कि कहाँ जाया जाए।
5: अरे तू तो कह रहा था शाम को पुलिस आएगी, ले खुफिया पुलिस का आदमी अभी आ गया। लगता है तेरा निहाल सब कुछ पहले ही सेट करके आया था, अब संभाले से है? मैं तो कह सकता हूँ।
0: अरे सुनिए सुनिए, ये खालसा छात्रावास यही है क्या?
8: नहीं जी, ये खालसा छात्रावास नहीं है, ये तो राजपूत छात्रावास है जी।
0: सुनिए, मुझे खालसा छात्रावास में जाना है जी, नया आदमी हूँ, आपको तकलीफ तो होगी, जरा अगर साथ चल दें, खालसा छात्रावास तक पहुँचा दें तो कृपा होगी।
8: जी बैठिए बैठिए, बताइए खालसा छात्रावास में क्या है?
0: अरे नहीं नहीं, बैठने का समय नहीं है, मैं कहता हूँ हैंड साहब, पृथ्वी सिंह यू आर अंडर अरेस्ट।
8: ओए होए, तो तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो? निहाल सिंह ने खबर दी होगी।
0: तुम्हारा अनुमान सही है पृथ्वी सिंह, अब जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ।
8: कोई बात नहीं, अले पकड़ मेरा हाथ, इंकलाब जिंदाबाद।
6: अरे पृथ्वी सिंह ने हाथ आगे क्या बढ़ाया, लपक के पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया।
1: अच्छा,
6: और झटक के पिस्तौल छीन कर दूर फेंक दी। जासूस ने चाकू निकाल कर पृथ्वी पे कई वार किए, खून के फव्वारे छूट पड़े।
1: अरे बाप रे,
6: पर पृथ्वी ने उस पे काबू पाके चाकू भी छीन के दूर फेंक दिया और जासूस को जमीन पे गिरा के उसकी छाती पे सवार हो गया, उसकी धुनाई शुरू कर दी।
1: अच्छा,
6: पर चाकू के वार से काफी खून बह चुका था,
2: मारते मारते पृथ्वी और जासूस दोनों बेहोश हो गए।
1: फिर क्या हुआ दादा?
2: दूसरे दिन जब पृथ्वी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया। पास के ही पलंग पर जासूस भी पड़ा था।
1: अच्छा।
2: और पूरा कमरा पुलिस की गिरफ्त में था।
3: दादा एक बात समझ में नहीं आई कि जब जासूस के हाथ से पिस्तौल पृथ्वी सिंह ने छीन ली थी तो फिर उसे दूर क्यों फेंक दी और जासूस को वहीं ढेर क्यों नहीं कर दिया?
2: ये बात तुमने अच्छी पूछी। बात यह है कि गदर पार्टी ने यह शपथ ली थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को मारना नहीं।
1: अच्छा।
2: पृथ्वी को अस्पताल से और बाकी 80 दूसरे लोगों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार करके लाहौर में मुकदमा चलाया गया। आरोप लगा लाहौर में बगावत करने की साजिश।
1: ये साजिश उसने कब रची?
2: ये साजिश हुई थी लोडोवान स्टेशन पर एक मीटिंग में।
1: अच्छा।
2: पर उन्हें पता नहीं था कि उनके बीच अमेरिका से कपाल सिंह नाम का जासूस शामिल हो चुका है। वही सब जानकारियां पुलिस को देता रहा और विद्रोह निश्चित 23 फरवरी 1915 को होना था, लेकिन उसके पहले ही सब गिरफ्तारियां हो गई।
3: फिर मुकदमा का क्या फैसला हुआ दादा?
2: गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि 7 लोग विद्रोह की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे और बाकी सबको फांसी की सजा से बचा लेंगे। सो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया, पर अदालत ने 24 आदमियों को फांसी की सजा सुनाई और बाकी को काले पानी की उम्र कैद।
1: दादा एक बात बताओ, ये पृथ्वी सिंह का नाम किस लिस्ट में था?
2: पृथ्वी का नाम तो रहा था फांसी की लिस्ट में।
1: अच्छा।
2: पर जनता ने 24 आदमियों को फांसी देने के आदेश पे भारी विरोध जताया।
1: अच्छा।
2: आखिर वायसराय की काउंसिल ने आदेश बदल दिया और केवल उन 7 लोगों को छोड़ के जिन्होंने जुर्म कबूल कर लिया था, बाकी 17 को काले पानी की सजा दी गई।
1: अच्छा।
2: पृथ्वी इन 17 लोगों में आ गया।
1: जिनको फांसी दी गई वो 7 लोग कौन कौन थे दादा?
2: अवेरे करतार सिंह सराबा, बख्शी सिंह, विष्णु गणेश पिंगले।
1: अच्छा।
2: सुरेन सिंह, ईश्वर सिंह, सुरेन सिंह, भूरा सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह। इन्हें लाहौर की सेंट्रल जेल में 16 नवंबर 1915 को फांसी की सजा दे दी गई।
3: अच्छा दादा, पृथ्वी सिंह काले पानी में कब तक रहे?
2: करीब 6 साल वो अंडमान की जेल में रहे।
1: अच्छा।
2: वहाँ उन पर भारी जुल्म किए गए। इतने की एक बुजुर्ग क्रांतिकारी बाबा भान सिंह की पिटाई के कारण मौत हो गई।
1: अच्छा।
2: इस घटना के विरोध में सारे कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उधर हिंदुस्तान में अंडमान के कैदियों पर हो रहे जुल्मों को लेके भारी आंदोलन शुरू हो गया।
1: फिर
2: आखिर सरकार ने निर्णय लिया इन कैदियों को अंडमान से हटाकर हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए। पृथ्वी को मद्रास की राजामुंद्री जेल में रखा गया। उनके हिस्ट्री टिकट पे लिखा गया, बहुत खतरनाक, सुधरना असंभव, बहुत होशियारी से संभालने की जरूरत। और पृथ्वी ने इसे सिद्ध भी कर दिया।
1: वो कैसे?
2: 2 बार चलती रेलगाड़ी से छलांग लगा के।
1: अच्छा।
2: हुआ यह कि खतरनाक कैदी मान के पृथ्वी को कलकत्ता के जेल में भेजने का निर्णय हुआ। 2 अन्य क्रांतिकारी और 3 सिपाहियों के साथ रेलगाड़ी से रवाना किया गया।
1: अच्छा।
2: रात का समय था, सभी लोग नींद के झोंके झूल रहे थे, सिपाही भी। पृथ्वी ने संडास जाने का बहाना किया। सिपाही ने उनकी हथकड़ी खोल दी, पर पैर में बेड़ियां लगी थी तो मौका पाते ही पृथ्वी खिड़की में से बाहर छलांग लगा गए।
1: और फिर दादा ये दूसरी बार वो कैसे भागे?
2: इसका वर्णन उनकी अपनी डायरी में कुछ इस तरह मिलता है।
1: अच्छा।
2: 16 महीने राजमंद्री जेल में रहे, अब तक चलती ट्रेन से कूदने की चोटें ठीक हो गई थी। और फिरंगियों ने फिर से मुझे चलती ट्रेन से कूदने का दूसरा मौका दे दिया।
1: अच्छा।
2: राजामुंद्री से नागपुर ले जाते समय इस वक्त फेवरेबल चीज ये थी कि न कैदी के कपड़े थे, न बेड़ी थी और हथकड़ी भी नहीं थी।
1: अच्छा।
2: लेकिन उस वक्त जो मैंने एस्केप किया, बहुत ही मिराकुलस एस्केप है।
1: अच्छा।
2: कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। इस बार मैं संडास के वेंटिलेटर से चलती मेल ट्रेन से कूदा और बचा।
3: अच्छा दादा, वो भाग के फिर गए कहाँ? पकड़े तो नहीं गए?
2: नहीं पकड़े गए। पूरे 8 बरस 1923 से 1930 तक वे सौराष्ट्र के भावनगर शहर में गुप्तवास पे रहे।
1: अच्छा।
2: वहाँ जिम्नाजिम चला के नवयुवकों को अपनी तरह हट्टा कट्ठा कसरती बनाते रहे, पर क्रांति के लिए अभी भी उनकी जरूरी भूमिका बाकी थी। सो चंद्रशेखर आजाद के बुलाने पे वो क्रांतिकारी धन्वंतरी के साथ अलाहाबाद जा पहुंचे, जहां दो क्रांतिकारियों के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई।
7: पृथ्वी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि दो बार ब्रिटिश सरकार के गाल पर तमाचे जड़ने के बाद भी आप अपनी छाया भी उसे छूने नहीं दे रहे हैं।
9: भाई जी, इस प्रशंसा और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि हम सभी एक ही रास्ते के पथिक हैं। आज्ञा कीजिए, आपने मुझे किस लिए याद किया?
7: आप तो जानते हैं, हमारे साथी भगत सिंह दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद जेल के अंदर है।
9: हाँ हाँ।
7: फिर हमारे कई साथी कमजोरियों के शिकार होकर सरकार से मिलते जा रहे हैं। अतः लगता नहीं है कि हमारा आंदोलन सफलता से आगे चल पाएगा।
9: तो बहुजी, तो फिर मैंने क्या करना है?
7: भगत सिंह जी चाहते हैं कि अब आतंकवाद टेररिज्म नहीं होगा, अब तो बोल्शेविक मेथड से हिंदुस्तान में क्रांति करनी होगी। इसके लिए एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस जाकर इस क्रांति की स्टडी करके आए और यहाँ आकर इसकी तैयारी कराएं।
9: मैं तैयार हूँ। मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे आप और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जी काम करने का मौका मिलेगा।
7: हमारी पहली भेंट के उपलक्ष्य में मैं 11 गोलियों का एक ये ऑटोमेटिक पिस्टल दल की ओर से आपको भेंट करता हूँ। रूस आप कैसे पहुँचेंगे ये व्यवस्था आपको ही करनी होगी।
9: जी, इस बहुमूल्य भेंट के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इस बात की इजाजत चाहता हूँ कि रूस जाने से पहले जी सरकार के गाल पर एक और तमाचा जड़ता जाऊँ।
7: जड़ते जाओ। जय हिंद।
1: दादा, ये तमाचा क्या था?
2: ये तमाचा बंबई के भीड़ भरे स्थान लेमिंगटन रोड के पुलिस थाने पे धुआंधार गोलीबारी थी।
1: अच्छा, बाप रे, कितना साहसी कदम था उनका।
2: लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
1: अच्छा।
2: और जेल भेज दिया।
1: फिर जेल से कैसे छूटे?
2: वहाँ से वे जादू के जोर से ही छूटे।
1: जादू के जोर से? वो कैसे? क्या वो जादू जानते थे?
2: बेटा, काबुल जेल की कोठरी काल कोठरी के नाम से मशहूर थी।
1: अच्छा।
2: रोज एक दो कैदी मर जाते।
1: अरे बाप रे।
2: पर योग और कसरती बदन के कारण पृथ्वी पे कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था।
1: अच्छा।
2: तो लोगों में ये बात फैल गई कि पृथ्वी बड़ा जादूगर है।
1: ओह।
2: और ये बात जेलर के साले को मालूम पड़ गई, तो पृथ्वी से मिलने जा पहुंचा जेलर का साला।
10: पृथ्वी सिंह जी, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है। लोग कहते हैं मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कुछ कीजिए ना।
2: पृथ्वी ने देखते ही समझ लिया कि ये मानसिक बीमार है।
1: अच्छा।
2: सो उन्होंने जमीन से कुछ दूबा तोड़ के मंत्र पढ़ने का नाटक किया और दूबा साले को देते हुए कहा, इस दूबा को ताबीज में बंद करके गले में पहन लेना।
1: अच्छा।
2: तुम देखना, प्रतिदिन तुम स्वस्थ होते जाओगे।
1: अरे वाह।
2: और दुश्मन जादूगर समाप्त हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जेलर का साला ठीक हो गया।
1: अरे।
2: और उसने पृथ्वी को रिहा कराने में भारी मदद की।
1: अरे वाह। तो इसके बाद क्या हुआ गजबी दादा?
2: इसके बाद की कहानी बिल्कुल सीधी सादी है। वर्धा आश्रम में वे गांधी जी के साथ रहे।
1: अच्छा।
2: 1942 से 1947 तक आजादी के संघर्ष में काम करते रहे। आजाद भारत में भी कोई 25 बरस तक वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे।
1: अच्छा।
2: 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
1: ये तो बड़े सम्मान और बड़े गर्व की बात थी, उनको मिलना ही चाहिए था ये सम्मान तो।
2: 1982 में अपने 90 वर्ष की उम्र में भी वे बुजुर्गों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। अमरीका में 91 वर्ष की उम्र में उन्हें लेडरले पुरस्कार और 93 वर्ष की उम्र में 100 मीटर की दौड़ में कीर्तिमान बनाने के कारण विश्व चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया।
1: अरे वाह।
2: और 5 मार्च 1989 को ये महान क्रांतिकारी देशभक्त दुनिया से कूच कर गया।
11: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव,
12: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
1: ओम शांति.
0: वेलकम टू बीइंग शक्ति.
1: थैंक यू सो मच.
0: इतने दिन से हम जो बात कर रहे थे तो मैंने बोला इसको ट्राई करते हैं, लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो. तो मैंने पहले सोचा था लेट गो मतलब ठीक है इसको हटा दो, लेकिन अंदर से वाकई सच में मैं पहले डिस्कस किया अपने आप से, ठीक है उसके अच्छे भी गुण हैं. इतना अपने आप को समझा के लेट गो करके दो दिन से ट्राई किया. यू नो व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट टुडे मॉर्निंग. बहने कह रही थी अरे आप तो आपका तो चेहरा बदल गया, आप तो खुश लग रहे हो, यू लुक डिफरेंट, यू नो द वाइब्रेशन. उसके ऊपर मुझे वहां से एक चीज भी आ गई पढ़ने के लिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू स्टार्ट, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर जो अब इस वक्त मेरे लिए है. आई एम सो हैप्पी टुडे. वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर इज व्हेन यू फाइंड द करेज टू लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट चेंज. द करेज टू लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट चेंज.
1: सो ब्यूटीफुल.
0: तो मैंने सोचा चेंज भी क्यों करूं. मैंने तो ये बोला, मैंने बोला फिर दूसरे को मैं क्यों चेंज करूं, अपने को करो ना.
1: दूसरे को क्यों चेंज करूं, नहीं
0: कर भी नहीं सकता.
1: तो चेंज कर ही नहीं सकते.
0: तो मैंने उल्टा अपना अपने ऊपर ही वर्क किया. आई एम द हैप्पीएस्ट टुडे.
1: वेरी गुड. सी एंड इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज व्हाट वी थॉट इट वुड बी.
0: जी
1: इट्स वेरी सिंपल. अब इसका फायदा क्या होगा? नॉर्मली क्या होता था, जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं करते एंड हम उसको यहाँ पकड़ के रखते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम उस व्यक्ति से मिलते हैं या नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन में जाते हैं, तो हमारी पास्ट की जो थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो ऑलरेडी उस व्यक्ति की एक पिक्चर पेंट कर देते हैं.
0: जी.
1: एंड वो पिक्चर यहाँ पेंट होती है, राइट? एंड देन वी सी दैट पर्सन थ्रू दैट पिक्चर ओनली. सपोज पास्ट में कोई एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ हुआ एंड मैंने यहाँ एक रजिस्टर किया, ये ऐसे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू, मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है. एंड क्योंकि मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है, आप थोड़ा सा कुछ भी कहेंगे या करेंगे, मेरा यहाँ जो रजिस्टर है वो इंडोर्स कर देगा. मैंने कहा हाँ देखा, ये तो है ही ऐसे. एंड देन आई विल नेवर बी एबल टू सी यू इन अ डिफरेंट वे एंड वी कैन लिव इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. द अदर पर्सन ऑल्सो कुड हैव चेंज्ड but we will never be able to see that change in the other person
0: because we are seeing through
1: the past labels and the images that we have created
0: and that colored chashma jo aap kehte hain
1: and that's very risky to ab jab ki hum us past memory ko let go karenge jab hum next time unko milenge hum ek fresh nazariye se milenge ek fresh nazariye se ki today new beginning A new way of being with them.
0: आपने एक एपिसोड में मुझसे कहा था कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे कि आप उसको पहली बार जीवन में मिल रहे हो.
1: मतलब उसके साथ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको हटा के अब हमें उसको मिलना है. ये एक बहुत बहुत बहुत पावरफुल टूल है. इसको हमें रोज करना है. रोज के जो अनुभव भी हुए, जो अनकंफर्टेबल थे अनप्लेजेंट इंटरेक्शंस थी, रात को सोने से पहले तो एटलीस्ट उनको लेट गो करना है, क्लीन करना ही है उसको बैठ के. एंड उसके लिए बहुत सिंपल है. जब हम रात को मेडिटेशन करने बैठे या दिन में कभी भी बैठे, रियली पॉज. वो थॉट सारे आ रहे हैं, जो वो वाली बातें भी आ रही है, लेकिन उसमें कॉन्शियसली एक थॉट, आई एम अ पावरफुल सोल. I have the power to not get affected by anybody. मेरे पास है वो शक्ति. हम अभी तक अपने आप को वो बता भी नहीं रहे कि मेरे पास वो है वो शक्ति. जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना, हनुमान जी को वो शक्ति भूल गई अपनी. तो शक्ति याद दिलानी पड़ती है. तो ऐसे हमें भी अपने आप को वो शक्ति याद दिलानी पड़ती है. तो ये सारी थॉट सारे हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचो, उनको भी रिजोल्व नहीं करना, नहीं करो. जस्ट बीच में साइलेंटली अपने माइंड को एक नई थॉट दो, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं. आई एम अ पावरफुल सोल. आई हैव द पावर टू रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एंड एनीथिंग अराउंड मी. ये एक थॉट भी उस ग्रूव को एक नए तरफ से लेके जाना शुरू कर.
0: मैं इतना ही कहूँ, आपका जो आज का टाइटल है आई एम शक्ति
1: बस.
0: और जो शक्ति को कौन क्या, अभी इलेक्ट्रिसिटी को करंट लगा सकता है क्या?
1: अब इसमें धीरे धीरे हम एक सेकंड थॉट क्रिएट करते हैं. कि वो जो सामने वाला है ना, वो भी एक आत्मा ही है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस इज सोल कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ. धीरे धीरे ये थॉट क्रिएट करते करते माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साइलेंट होने लगेगा. फिर बड़े प्यार से सामने वाले को भी लेकर आए, एंड एक ब्यूटिफुल थॉट, वो भी तो एक प्योर आत्मा है. जो भी रीजन होगा, अभी उस आत्मा को भी उसके लेबल्स, उसके जो इमेजेस हमने क्रिएट किए उसके थ्रू नहीं देखना है अब हमें. वो भी ये

0: आत्मा है, भले उस टाइम कोई भी और थॉट आए, हम अपने माइंड को कहेंगे नहीं, वो भी एक प्योर आत्मा है। जैसे आपने पिछली बार कहा था ना, बच्चा कुछ करेगा, हम कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, बच्चा कहेगा लेकिन ये
1: दिस
0: नहीं
1: इज नॉट अ
0: ऐसे
1: टॉय, नॉट अ
0: नहीं।
1: टॉय।
0: ये अपने मन के साथ करना है। मन कहेगा नहीं वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे नहीं, वो भी एक प्योर आत्मा है, वो
1: वो
0: फिर
1: जैसे
0: नहीं
1: मैं अपने
0: सुनेगा।
1: आप को बोलता हूँ कि मैं ऐसे मन बच्चे को प्यार से सिखाता हूँ,
0: हाँ,
1: तो वही चीज मुझे वहां भी करनी पड़ेगी, वहां भी तो मन बच्चा है।
0: वहां भी मन बच्चा है। जैसे ही आप अपने अंदर एक थॉट क्रिएट करेंगे ना, वो भी एक प्योर आत्मा है, फिर मन यहाँ से 10 थॉट्स भेजेगी, नहीं नहीं ऐसे ऐसे, लेकिन है प्योर आत्मा, लेकिन ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, प्योर आत्मा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। फिर भी धीरे से उसको बड़ी असर्टिवली,
1: लेयर्स वाली बात,
0: हाँ असर्टिवली उसको
1: प्योर
0: कहना,
1: आत्मा है लेकिन लेयर्स कितने लेके
0: वो भी
1: आई
0: नहीं
1: है।
0: छोड़ दो,
1: हाँ
0: सिर्फ असर्टिवली उसको, जैसे आपने कहा ना, बच्चे बच्चा देखो कितनी लाइंस बोलता है, नहीं ये करना, आप उसको सिर्फ एक लाइन बोलते हैं धीरे से, नहीं ऐसा नहीं करना।
1: मैं तो शब्द रिपीट करता ही जाता हूँ,
0: हाँ
1: दिस इज नॉट अ टॉय,
0: हाँ
1: नॉट अ टॉय, बोलते बोलते मतलब वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता, फिर ट्राई करता कि मेरा कंप्यूटर खींचू ये खींचू,
0: एक छोटी लाइन बोलते हैं ना,
1: बस
0: है
1: उतना ही।
0: ना, विद एनर्जी इज कन्विक्शन एंड असर्टिवनेस, यही लाइन अपने मन को भी भूलनी है, वो भी प्योर आत्मा है, वो भी प्योर आत्मा है, वो भी प्योर आत्मा है। ये थॉट क्रिएट करते करते वहां कौन सी वाइब्रेशंस चली जाएंगी, ये देखो कितना फर्क
1: वो
0: है।
1: आत्मा को आत्मा की वाइब्रेशन जाएगी कि तुम एक प्योर सोल
0: वो
1: हो।
0: आत्मा को हमारी तरफ से
1: हाँ,
0: रिस्पेक्ट और प्योरिटी की वाइब्रेशन मिलेगी।
1: और
0: अभी
1: उसकी
0: तक
1: जागृति भी
0: वो
1: जागेगी भी ना,
0: होगी, वो होगी, लेकिन अभी तक हम उनको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे थे।
1: बेकार
0: सपोज मैं
1: है।
0: आपके बारे में चिंतन करूं, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो कौन सी एनर्जी जा रही है, वो जा रही है और वो ये एनर्जी
1: आ
0: आ
1: रही
0: रही है।
1: है।
0: अब मैंने जो मेरी तरफ से जो एनर्जी है उसको कॉन्शियसली फोर्सफुली अटेंशन से चेंज करना है।
1: सिस्टर, एक बात आपसे बात करते करते मुझे एक पॉइंट याद आया कि जैसे मैं किसी को पसंद नहीं किया और उसके नेगेटिव इतना गया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, हर्ट कर दिया था, कुछ सिखाने गया तो डांट दिया, मैं घर का बड़ा हूं और मुझे ये हो गया, और दर दर दर दर, और मैं अंदर फुल हूं, मैंने समझो अपनी बीवी को बोलना शुरू कर दिया, एक दिन बोला, दूसरे आज ये हुआ, फिर दूसरे आज ये हुआ, तो उसका वो इरेज करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो उसको उसी तरह देखने लगेगी जैसे मैं उसका माइंड भर दिया।
0: वेरी ट्रू,
1: तो ये मैं सोच रहा था, ये कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट कर देता हूं मैं अगर,
0: यही तो हम करते हैं ना, हमारी वाइब्रेशन से भी वो चीज फैलती है।
1: नहीं मैं सोच रहा हूं उसको डांटे के बदले या दिल हल्का कर लो, ये एक पॉइंट है, लाइफ की बात है,
0: यस
1: सभी करते
0: यस,
1: हैं घर
0: सभी
1: में,
0: करते हैं।
1: और लोग बड़े कहते भी हैं
0: हाँ
1: एक दूसरे से दुख बांटो जो भी
0: राइट,
1: वॉट एवर, नॉर्मल लाइफ में,
0: हाँ
1: लेकिन ये मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि कितना बड़ा कार्मिक कर्म है, बैड कर्म है ये, कि दूसरे को पोल्यूट किया, उसको
0: यस।
1: पॉइजन किया।
0: अब अगर मन हल्का करना है, क्योंकि मन में कोई बात चल रही है, मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक इट आउट, ठीक है, इट्स गुड नॉट टू सप्रेस, अंदर सप्रेस नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारी बीमारियां इसलिए भी हो रही हैं, और मन भी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि सप्रेस किया है। तो अगर हम अपने आप उसको अंदर खत्म कर सकते हैं, बात को समझ के, अपने को समझा के, लेट को कर सकते हैं, देन वी डोंट नीड टू टॉक टू एनीबडी, तो हमें किसी से भी बात करने की जरूरत
1: अगर
0: नहीं है।
1: लिख लें तो
0: हाँ मतलब अपने आप से अगर कर सकते
1: नहीं,
0: हैं,
1: डायरी में लिख दें,
0: डायरी में लिख लें, तो वो तो
1: भगवान को
0: अपना
1: लिख
0: ही
1: के
0: हुआ
1: टिक्की
0: ना,
1: डाल दें।
0: वो तो अपना ही हुआ। लेकिन अगर हम अपने आप से नहीं खत्म कर सकते हैं, तो हम किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन बात की इंटेंशन और बात का डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मैंने अगर वो बात को सिर्फ अपनी वाइफ से शेयर किया, राइट, हल्का करने के लिए किया, लेकिन क्या शेयर किया,
1: दर्द
0: शेयर हमने
1: दर्द
0: दर्द भी शेयर किया, दैट्स ओके, लेकिन क्या शेयर किया, ये शेयर किया उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोलते हैं, वो है ही ऐसे, ऐसे भी कोई होता है।
1: इंग्लिश में कहते हैं ना, पॉइजनिंग द माइंड।
0: पॉइजनिंग द माइंड, क्यों पॉइजनिंग द माइंड, क्योंकि जो नेगेटिविटी हमने क्रिएट की दूसरे के व्यवहार से, उस नेगेटिविटी को हमने किसी और के मन में भी डाल दिया, रिजल्ट क्या निकला,
1: वो भी नेगेटिव
0: वो
1: सोचने
0: भी
1: लग गया।
0: नेगेटिव सोचने लग गई, और मेरा इतना बोलने से मेरा भी ग्रूव और भी पक्का हो
1: अच्छा,
0: गया।
1: ये पॉइंट भी है।
0: जितनी बार हम बात को बोलेंगे, जितनी बार हम बातों को बोलेंगे,
1: दिस इज शॉकिंग।
0: सोचते हैं तो भी

0: कोई बात को बार बार बोलना नहीं चाहिए। कई बार पुरानी बात को भी बार बार, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन फिर पहले भी ऐसे किया था, फिर ऐसे भी किया था, फिर एक को नहीं बोलते ना आप, एक को बोलो और वर्कआउट करो तो भी ठीक है, जो मिला उसको, फिर फ्रेंड मिला उसको, रिश्तेदार मिला उसको, पड़ोसी आया घर उसके सामने, बोलते ही गए बोलते ही गए बोलते ही गए। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, हम उस चीज को पक्का कर रहे हैं, उस आत्मा को कितना हम वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं। जितने लोगों को हम उसके बारे में बताएंगे,
1: उन लोगों की भी वाइब्रेशन टुवर्ड्स दैट आत्मा
0: भी उस आत्मा की तरफ भेज जाएगी।
1: बापरे,
0: प्रकृति में जो हम कहते हैं वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। अच्छा, अगर आपने चार लोगों को बताया तो वो चार लोग और चार लोगों को बताते हैं। इतने सारी आत्माएं जब उस आत्मा के बारे में ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी, आपको लगता है वो संस्कार चेंज हो सकता है?
1: मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बड़े चक्की का पीसा हुआ बच सकता है, लेकिन ऐसे जो थॉट्स और दांतों का पीसा हुआ कभी नहीं बच सकता है, क्योंकि एक दांत से दूसरे को दूसरे को मतलब इतना पहुंचता है।
0: होता क्या है, आप चार लोगों को बताते हैं, चार लोग और चार लोगों को अपनी भाव और भावना मिक्स करके बता देते हैं,
1: और दो चार लाइन और ऐड कर लेते हैं।
0: वही तो भाव और भावना अपनी और ऐड कर दी ना उसमें, क्योंकि नेचुरली दे विल ऐड व्हाट दे फील, फिर वो और दो, बात कुछ थी बात कुछ और बन जाती है, कहीं ना कहीं उस आत्मा तक पहुंच भी जाती है, वो तो फिर कई बार अनरिपेरेबल डैमेज है, लेकिन वाइब्रेशन भी अगर सिर्फ पहुंच जाए तो उस आत्मा की आपके प्रति थिंकिंग पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती अब इसके बाद, क्योंकि आप निमित्त बने हैं 10 लोगों की नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए।
1: सिस्टर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर जिंदगी में जिसके बारे में इतना मैंने बुरा बोला बोला बोला, हजार लोगों को बोला, वो मेरी लाइफ में या इस जन्म या अगले जन्म में टकरा जाए मुझे, या मेरी पत्नी या पति बन के आए, तो तब मेरा क्या हाल होता होगा?
0: नॉट ओनली चलो अगले जन्म में तो क्या हाल होगा, आप देखो इस जन्म में हमारा क्या हाल है, अभी तो वो आत्मा हमें कुछ नहीं किया, इस जन्म में ही ये करते करते करते हम आज कह रहे हैं मुझे पता नहीं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ।
1: ओके,
0: ये रीजंस हैं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ।
1: शाम को कभी कभी ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाता आदमी,
0: ऐसे ही नहीं हो जाता ना, वो हमने बहुत लीकेज कर दी है। मैं निमित्त बना, एक पत्थर मैंने यहाँ फेंका तो हलचल हुई, मन शांत था, मैंने थॉट एक क्रिएट की, ऐसे है वो, ऐसे है वो, ऐसे करते हैं, हलचल हुई, वाइब्रेशन रेडिएट हुई, फिर मैंने वो पत्थर जाके चार लोगों के मन में भी फेंका, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे है, उन्होंने भी वैसी क्रिएट की, उन्होंने और चार को दिया, इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद मैं शाम को खुश होऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? आई हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट अशांति इन सो मेनी माइंड्स।
1: ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, एक विक्टिम जो अपने आप को मैं बताता रहता हूँ, बोल बोल के मैं भी वैसे बन ही जाता हूँ, मैं बेचारा ही बन जाता हूँ।
0: वो अत्याचार कर रहे हैं मेरे पे, मैं बेचारा, मैंने तो कुछ करना ही नहीं।
1: हाँ, लेकिन मैं कितना कमजोर अपने आप को बोलता जाऊँ तो मैं कमजोर होता जाऊंगा ना, मैं बेचारा हूँ, मैं कमजोर हूँ। जैसे आपने बिगिनिंग में बोला, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, नोबडी कैन टच मी, आई एम शक्ति, वो वाली बात तो खत्म।
0: लेकिन वो सिर्फ मेरे अंदर नहीं खत्म, वो मैंने अनेकों के अंदर खत्म करके उस बात का मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया।
1: तो व्हाट काइंड ऑफ कार्मिक अकाउंट इज दिस?
0: यस, सो नाउ वी कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप। वन, हमें किसी से भी बात नहीं करनी, अगर किसी एक से बात करनी भी है, एनर्जी और इंटेंशन डिफरेंट है, एनर्जी और इंटेंशन दूसरे को क्रिटिसाइज करने की नहीं, लेकिन किसी के साथ डिस्कस करने की कि वो ऐसा करते हैं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे उनके साथ कैसे काम करना है, मुझे उनके साथ कैसे रहना है। सो द फोकस ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज नॉट टू क्रिटिसाइज समवन एल्स, बट द फोकस ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू वर्क एंड एडजस्ट विद दैट पर्सन। वो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगी।
1: अगर हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास
0: जाके, जनरली हमारी इंटेंशन दूसरे की निंदा करने की होती है,
1: 100%। लेकिन मैं ये कह रहा था, निंदा भी करनी है या जो भी मन हल्का करना है तो उससे तो अच्छा साइकाइट्रिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट।
0: मन हल्का होता नहीं ना लेकिन निंदा करने
1: अच्छा,
0: के बाद।
1: अच्छा, आपने ग्रुप बनता है।
0: मन हल्का होता नहीं निंदा करने के बाद, मन कई गुना और

0: भारी हो जाएगा निंदा करने के बाद। मन हल्का सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आप कोई सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये किया ना कोई बात नहीं, आप ऐसा करो। यही तो हम साइकाइट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? वो थोड़ी बैठकर किसी की निंदा सुनने वाले हैं हमारे से इतनी देर। वो एक लाइन सुनेंगे, दो बात सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने इसमें क्या करना है। उनका फोकस ये नहीं है कि आप जिस रिश्तेदार के बारे में बताने आए हैं वो सुनेंगे इतनी देर उसके बारे में, वो तुरंत क्या कहेंगे, आपने इसमें क्या करना है। हमारे पास कितने लोग आते हैं, दे वॉन्ट कि वो बताते जाए, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया। व्हाट इज द पॉइंट फॉर अस टू लिसन अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट देयर? वो तो आए नहीं आपके साथ कि हमने उनसे कुछ डिस्कस करना है। तो व्हेन आई नॉर्मली लिसन, आई लिसन फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जैसे अच्छा तो अब हमें क्या करना है। कहते हमें थोड़ी कुछ करना है, वो ऐसे है, सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करके वो
1: तो कहेगी कि उनको बदलो आप।
0: सी, तो हमारी इंटेंशन ही नहीं है कि हमें कुछ चेंज करना है। जब तक वो इंटेंशन नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मन हल्का करना है तो इंटेंशन और एनर्जी मन हल्का करने की होनी चाहिए, और मन हल्का तभी होगा लेट गो। उससे ज्यादा इजी तरीका हो ही नहीं सकता मन को हल्का करने का। तो जैसे आपने कहा, वाइफ से बात की भी तो करना है, लेकिन करना है टू फाइंड अ सोल्यूशन। एंड करने के समय फोकस अपने ऊपर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, रादर देन उन्होंने क्या क्या किया, मुझे इस सिचुएशन में कैसे रहना है, रादर देन वो तो हर टाइम ही ऐसे करते हैं, 2 साल पहले भी ऐसे किया था। एंड व्हाट हैपेंस, हम पास्ट वुंड्स को फिर से खोल देते हैं हर बार डिस्कशन में। हम आज वाली बात नहीं करते सिर्फ, हम बहुत लंबी सारी बातें करते हैं, सारे ग्रूव्स को वापस गहरा कर देते हैं। तो मन हल्का करना है, ये भी एक मंत्र होना चाहिए कि मेरे मन को हल्का रहना है, भारी नहीं रहना। इसीलिए हम पावर टू लेट गो को एक और शब्द भी बोलते हैं, पावर टू पैक अप, कि पैक अप कर दो। और उसका सिंबल एक बहुत प्यारा है कि लगेज को कैसे पैक अप करते हैं। आजकल आप देखो फ्लाइट में हम जाते हैं, पहले 20 kg 25 kg अलाउड था, अब नया रूल बना कि 15 kg अलाउड है। जाते तो फिर भी हैं, जाते भी उतने दिन के लिए हैं, लेकिन अब जब हम अपना सामान पैक करते हैं तो एक माइंड में क्लैरिटी रहती है ना कि 15 kg अलाउड है, तो हम ये चीज रखेंगे नहीं, ये नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं, इसके बिना चल जाएगा, ये हो जाएगा इसके बिना। ट्रैवल लाइट, वी नीड टू ट्रैवल लाइट इन लाइफ ऑल्सो। वी आर कैरिंग सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट नीडेड ऑन दिस जर्नी। इतना भारी होकर चलेंगे तो फिर जीवन तो बोझ ही लगेगा ना, इतना बोझ उठाकर चल रहे हैं। परिस्थितियां चैलेंजिंग नहीं है, लोग कहते बहुत चैलेंजेस है, परिस्थिति चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को फेस करने वाला बोझिल होकर चल रहा है। वो इतना बोझ सर पे उठा के चल रहा है, इतने सालों का, कई बार इतने जन्मों का, तो वो एंजॉय कैसे करेगा अपनी जर्नी को। तो अपनी लाइफ का मंत्र ये होना चाहिए, ट्रैवल लाइट, हर रोज जो जो सामान की आवश्यकता नहीं, लेट गो, डिलीट डिलीट डिलीट, दिस इज वेरी पावरफुल। एंड जितना हम लाइट ट्रैवल करेंगे उसी को तो फिर फरिश्ता और एंजल कहेंगे ना। आपको जो बहनों ने आज कहा कि आपका चेहरा बदल गया, क्यों? आज दुनिया कितनी मेहनत कर रही है अपना चेहरा बदलने के लिए, कितनी मेहनत है, पूरी इंडस्ट्री हो गई है कि कैसे चेहरे को बदलना
1: उनको
0: है।
1: उनको ये नहीं मन लेट गो किया, उन्होंने कहा था कि आप सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश, और आज आप डिफरेंट और अच्छे लग रहे हो, बहुत मतलब हैप्पी लग रहे हो, ऐसे बोले।
0: क्योंकि चित से कुछ साफ हुआ है ना, ये बहुत लगती छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। जितना चित से साफ होता जाएगा, माइंड जितना क्लीन होता जाएगा, चेहरे पे वो निकल कर आएगा। जिसका कहेंगे चेहरे पे नूर है, रूहानियत है, लाइटनेस है, खुशी है, क्योंकि अंदर खुशी है, बाकी अंदर इतना कुछ पकड़ के रखा है। चेहरे पे अलग अलग सर्जरी भी कराएं और अलग अलग मेकअप भी लगाएं, तो भी चेहरे पे वो नूर और वो लाइटनेस नहीं आ सकती है।
1: और ऐसे लाइट बंदे के साथ आप बिना बात के भी खाली बैठने के लिए भी खुश रहते हैं, उसके साथ बैठे रहो बस।
0: वाइब्रेशंस है ना, कुछ लोगों से मिलने से कितना भारी भारी फील होता है, और कुछ लोगों से मिलने से कितना लाइट फील।
1: और उन लोगों से जिनके साथ लाइट फील करते हो, शब्द भी कम बोलते हैं हम, फिर भी हल्का लगता है, कोई टॉपिक जानबूझ के नहीं छेड़ते हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, बात करने का मन किया तो किया, नहीं किया तो किया, कितना मतलब देयर इज नो, एक बंधन नहीं है.
0: क्योंकि दैट सोल जिनसे आप मिलेंगे या जब अभी आप हैं, लाइट फील कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ से ज्यादा कनेक्टेड हैं. आप प्रिटेंशन, आर्टिफिशियलनेस, सुपरफिशियलिटी, जितनी दुनिया में बहुत सुपरफिशियल हो गए हम. आप देखो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मतलब कई बार अननेसेसरी बात करनी है.
1: हाँ.
0: कोई बात है भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बात करना बहुत जरूरी है. लेकिन एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस जो कम्युनिकेशन वाइब्रेशन के थ्रू होता है, वो बातों के थ्रू नहीं होता.
1: आर्टिफिशियल जो लाइफ आप कह रहे हैं, वो जो एक एक बार आपने एक एपिसोड में कहा था ना, वॉइड, खालीपन को भरने के लिए, वो खालीपन सताता है अगर आप लाइट नहीं हो तो.
0: लेकिन वो जो खालीपन है वो बातों से नहीं भरेगा कभी भी. आज आप देखो वो खालीपन को भरने के लिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ, स्टिमुलस की तरफ, अब्यूज, एडिक्शन, सब्सटेंसेस, सब चीजों की तरफ क्यों जा रहे हैं? खालीपन, वो खालीपन को भरना है. वो खालीपन किसी भी बाहर की चीज से नहीं भरेगा. कोई चीज ही नहीं है बाहर जिससे वो खालीपन भर सकता है. वो खालीपन तब भरेगा जो ये भारी चीजें रखी हुई है अपने चित्त पर, इनको हम साफ करते जाएंगे. तो आज सारा दिन में बार बार हमने ये मंत्र करना है, आई एम अ पावरफुल सोल. बार बार बार बार करना है सारा दिन में.
1: ट्रेवल लाइट,
0: आई एम अ पावरफुल सोल. नथिंग कैन इन्फ्लुएंस मी. किसी भी चीज में ताकत नहीं है जो वो मुझे हिला सके. देखो अहंकार में कैसे हम कहते हैं, किसी में ताकत नहीं है जो मुझे कुछ कर सके. बस
1: कोई नहीं हिला सकता है.
0: नहीं कर सकते. तो किसी में ताकत नहीं जो मुझे हिला सके, ये बार बार अपने को कहना है. और फिर उस आत्मा को भी इमर्ज करके, वो आत्मा भी प्योर सोल. फिर आएगा कुछ भी नहीं, लेकिन वो आत्मा भी प्योर सोल. फिर कुछ आएगा, वो आत्मा भी प्योर सोल. ये करते ही जाना है.
1: ये नहीं बोल सकते साथ में उसके भी तो संस्कार.
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं,
1: आज
0: नहीं. इसमें नहीं.
1: फिर वो होता है कि आई एम बिगर देन हर.
0: यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होता है कि उसमें भी संस्कार है ना, ऐसा वो एनर्जी चेंज हो जाती है ना उसमें भी. अब क्या करें,
1: उसको बोलेंगे ही इज अ प्योर सोल. वो भी शक्ति है, वो भी बीइंग शक्ति है. तो लेट बी बी शक्ति व्हाट आई एम.
0: दिस इज सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियसनेस मीन्स आत्मा, आत्मा के साथ कनेक्शन. वैसे भी जो हमारा इशू आया होगा ना उस व्यक्ति के साथ, वो कोई ना कोई पोजीशन और रिश्ते और लेबल के थ्रू ही आया होगा.
1: करेक्ट.
0: के बच्चा है ऐसे क्यों बात की, बहू है ऐसे क्यों किया,
1: स्टाफ है,
0: पिता है ऐसे क्यों किया मेरे से, वाइफ है ऐसे क्यों बिहेव किया. इट विल ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लेबल और अ रिलेशनशिप. आत्मा है, आत्मा है. थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल.
1: आज आपको एक बात और बताऊं कि वो कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से नहीं, मेरे लाइट फील करने से की वजह से आपकी बातें भी ज्यादा समझ आ रही हैं मुझे, और क्लैरिटी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है.
0: मन शांत,
1: लेकिन क्या करूं, मेडिटेशन का टाइम हो गया.
0: मन शांत है आज.
1: लेकिन
0: दैट इज व्हाई दैट कोटेशन व्हिच यू रेड, द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ इज व्हेन यू लेट गो ऑफ समथिंग यू कैन नॉट चेंज. लुक एट वेयर हैप्पीनेस लाइज. हम हैप्पीएस्ट मोमेंट कहाँ कहाँ ढूंढते हैं. Happiest moment is when you let go of something you cannot change. So mantra, travel light.
1: Chaliye, meditation karte hain iske upar. Thank you so much.
0: Sit back. Relax. Charo taraf ki paristhitiyon aur baaton se sakshi hokar bas apne man ko dekhe. Mera man. एक छोटा सा बच्चा है, इसको मैं प्यार से जो समझाऊं, जो सिखाऊं, वो वैसे ही चलेगा. पुरानी बातें, पिछले दर्द एक घाव की तरह इस पर लगे हुए हैं. ये कई बार रोता है, कई बार चिल्लाता है. इस मन को हील करना, ये मुझ आत्मा की ड्यूटी है. प्यार से इसे याद दिलाएं चाहे कुछ भी हुआ हो। I am a powerful soul. जो बीत गया, it's over. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई भी बात, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। This is me, a pure, powerful energy. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much, sister. Om Shanti.
2: When we delete the past hurt and image of the person, our mind and intellect is clean. Now we will perceive the person with a new way of thinking and a new behavior. By doing this, we will heal ourselves and heal the relationship by radiating clean, pure vibrations. To heal a relationship, create repeated powerful affirmations. I am a powerful soul. I have the power to remain uninfluenced by their sanskars. I have the power to let go. Today, I am going to interact with a pure soul. We will have a beautiful meeting today. If we keep talking about our negative experiences to people, our inner groove becomes stronger. We become instrument in creating negativity in others' minds, and all this negativity will reach the person we are talking about. This will strengthen their negative sanskar. If we want to share our past pain with someone, the intention should not be to criticize other people. The intention and conversation should be in the direction of preparing ourselves to interact with them in a healthy manner the next time.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रिया, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रिया, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: धक धक
1: जैसे
0: धक धक
1: चेहरा करे सावन बरसे।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा कि हम देखते हैं शरीर की सुंदरता पर लोग उसकी खूबसूरती के आधार पर उसके आंतरिक भी गुणों का पता करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुंदर है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर तो होते हैं कर्म में। तो एक दिन हम देखते हैं कि गुब्बारे वाला लाल पीले हरे गुब्बारे काले गुब्बारे बेच रहा था। कभी कभार वह एक दो गुब्बारे हवा में छोड़ देता था ताकि बच्चे आकर्षित हो। एक सांवरे रंग का छोटा बच्चा गुब्बारे वाले के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अपने सांवरे रंग की वजह से उस बच्चे को कई बार अवमानना का सामना करना पड़ता था। बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो वह भी आसमान में उड़ जाएगा। गुब्बारे वाला सोच में पड़ गया, उसकी नजर बच्चे पर गई तो दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसने बड़े प्यार से बच्चे को जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो गैस है उसकी वजह से आसमान की ओर जाता है। हम भी बाहरी दिखावे या बाहरी संपत्ति के कारण नहीं, अपितु अपने दिव्य गुणों, श्रेष्ठ व्यवहार, उत्तम विचार, मीठे बोल, दया और करुणा आदि के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं, सुंदर होते हैं कर्म। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र, जिसके जीवन में ये सुंदरताएं हैं वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जमाना भी उसी का दीवाना है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। सुंदर मन के बिना सुंदर चेहरा कांच की उस आंख जैसा होता है जो चमक तो सकती है लेकिन किसी चीज को देख नहीं सकती। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, परंतु चरित्र की सुंदरता मृत्यु के बाद भी स्मरण रखी जाती है। अतः हम देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कर्म करे तो जीवन सुंदर बन जाएगा। अच्छी सोच जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जिंदगी में उन लोगों की जो पसंद है उन्हीं लोगों को आप पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। जिस शरीर को आप सुंदर कहते हो जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखाई देगी कि इसके अंदर क्या है। भीतर तो बस रक्त मल रोग और कचरा भरा पड़ा है। जिस शरीर को की अदाओं पर हम मर मिटते हैं, रात रात करवटे बदलते हैं, मृत्यु के बाद वह आकर्षण कहाँ चला जाता है। लोग इसी सुंदर शरीर की मृत्यु के बाद उसे जितना जल्दी हो सके घर से निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं सड़ने न लगे। यह शरीर मिट्टी बन जाता है, फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? सुंदरता शरीर में नहीं होती, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा में है, जो न मरती है न जलती है न कटती है और न ही गलती है। तो देखा आपने, सुंदरता शरीर में नहीं आत्मा में है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और इसी तरह हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। जैसा हम देखते हैं कि हीन भावना अक्सर लोगों पर हावी होने लगती है, ध्यान रहे अपने ऊपर हीन भावना का विचार हावी ना होने दें। अक्सर हम सामान्य से कुछ कम दिखने या प्राप्त होने की स्थिति में हीनता के विचार में डूब जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं के नकारात्मक विचारों का समर्थन न करें और सकारात्मक पहलू पर ध्यान देकर स्थिति चाहे जैसी है उसे स्वीकार करें। आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं, शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है। सुंदर से सुंदर देह से भी एक दिन सुंदरता छूट जाती है। जगत की व्यर्थता को पहचाने ताकि हम भीतर की सीढ़ियां उतरने लगे। सुंदर होने का अर्थ सौंदर्य प्रसादनों से उसके उपयोग में नहीं है। ध्यान, योग, मेडिटेशन हमें सुंदर बनाता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे भीतर एक अपूर्व सौंदर्य लहराने लगेगा। दया भावना से हमें देखना है।

रहे हम अधिक युवा कैसे बने रहेंगे। आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है। वर्तमान समय युवा पीढ़ी आकर्षण बने रहने के लिए आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का अधिक उपयोग कर रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती यह असली खूबसूरती नहीं है। दूसरों के लिए सदा दया की भावना रखने से हम अधिक युवा और आकर्षक बने रहेंगे। ब्रेन भी सदा एक्टिव रहेगी, क्योंकि आंतरिक खूबसूरती ही बाहरी सुंदरता उपलब्ध कराती है और यही सुखी जीवन जीने का भी सबसे शक्तिशाली उपकरण है। दूसरों से सदा सहानुभूति रखेंगे तो उदासीनता या नापसंद को भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दयालुता का भाव बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास जरूरी है। मेडिटेशन से दया की भावनाएं चारों तरफ फैलती है। तो देखा आपने कैसे हमें मेडिटेशन से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो इसे हम आगे अपने जीवन में जारी रखें, इसकी हम सब कोशिश करेंगे और आप सभी कोशिश करें कि मेडिटेशन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसे बनाना है, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बना रहे और हमारी आंतरिक खूबसूरती जो है वो भी बनी रहे। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। तो ओम शांति, नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हा हा गैया गाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत देन चलैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग।
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ।

0: नमस्ते है सबको।
1: नमस्ते बाबू चाचा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। द मॉर्निंग रेज़ आर कमिंग।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगर

0: करके चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदे, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगड़ी से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदे, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी।
1: पुणे की आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: छोड़ दो मुझे।
1: क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
0: नहीं करती।
1: क्यों नहीं करती?
0: नहीं करती।
1: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
0: नहीं आता।
1: नहीं?
0: हाँ नहीं।
1: मेरी कसम। प्यार सिखा दूं?

लाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने की हरी सुनरिया बनकर।

जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। इंद्र की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल ठहर गया था जिसे वो आरती के नाम से पहचान सकता था। रात गुजर रही थी लेकिन वो एक पल सारी रात पर भारी था। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

डोले कुछ दर में शोले ही शोले दिल है आखिर कैसे न डोले हाय कुछ दर में शोले ही शोले।

0: हिंदुस्तान का मेरा तू।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी प्रीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: मत बोल, आ नहीं जा रहा।
1: देखो आँख मारे।

0: एक प्रयासम के पुस्त्र गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
1: सामने आओ। अनारकली मेरी है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
0: अनारकली जान सलीम।

0: चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना नहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना

बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।